ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के वैशाख माह की 28वीं तिथि, तदनुसार 18 मई सन 2026, दिन के 11:58 हुए हैं। हमारी पहली प्रसारण सभा आरंभ होती है।

एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। दोपहर के 12 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

हिमेश रेशमिया और श्रेया घोषाल की आवाज़ में अभी आपने सुना आशिक बनाया आपने फिल्म के इस गीत को। इस गीत को लिखा समीर ने, संगीत से सजाया हिमेश रेशमिया ने।

0: कृष्णा और सलीम मर्चेंट की आवाज़ में अभी आपने सुना चक दे इंडिया फिल्म के इस गीत को। इस गीत को लिखा जयदीप ने, संगीत से सजाया सलीम सुलेमान ने। अगले गीत से पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: शंकर महादेवन और श्रेया घोषाल की आवाज में अभी आपने सुना चांदनी चौक टू चाइना फिल्म के इस गीत को। इस गीत को लिखा रजत अरोड़ा ने, संगीत से सजाया शंकर एहसान लॉय ने। अगले गीत से पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

श्रेया घोषाल और बेनी दयाल की आवाज़ में अभी आपने सुना गदनी फिल्म के इस गीत को। इस गीत को लिखा प्रसून जोशी ने, संगीत से सजाया ए आर रहमान ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो की आवाज में अभी आपने सुना हम तुम फिल्म के इस गीत को। इस गीत को लिखा प्रसून जोशी ने, संगीत से सजाया जतिन ललित ने। श्रोताओं, इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। FM बैंड 101.8 MHz पर ही आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। दोपहर के 12:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: पढ़े तो हो जाए सब दंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओं, शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत विचार से जिसे हमें भेजा है ग्रामपुत की कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
3: लिखते हैं, मुश्किलों को कुछ यूं हराते हैं, चलो आज थोड़ा मुस्कुराते हैं।
1: वाह, बहुत सुंदर विचार, मुश्किलों को कुछ यूं हराते हैं, चलो आज थोड़ा मुस्कुराते हैं। जी हाँ श्रोताओं, मुस्कान वो रोशनी है जो अंधकार और निराशा से भरे किसी भी हृदय को उजाले से भर सकती है। याद रखिए,
3: आपकी मुस्कान किसी के जीवन का सबसे खूबसूरत उपहार बन सकती है। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
1: तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है जेल रोड जालंधर से, रोशन जहां, मन्नत जहां और इशरत जहां का।
3: केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास जी का।
1: और डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, अजिज्ञासा के साथ विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया।
3: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, राजेश साबले पाटिल, शेख अल्लाह बख्श।
1: और नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फजिलका पंजाब से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदनलाल वर्मा।
3: हार्दिक आभार आपके संदेशों के लिए और जो आपने प्रश्नों के उत्तर भेजे उनके लिए भी हार्दिक आभार।
1: आप सबका हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में। साथियों, गर्मी का मौसम है और पूरे भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है।
3: हमें आपकी चिंता है और चाहते हैं कि ऐसे मौसम में आप अपना और आपके अपनों का जरूर ख्याल रखें।
1: जी,
3: तो इस सप्ताह हमारी चर्चा का विषय रहेगा कैसे रखें अपना ख्याल इस गर्मी के मौसम में। तो आइए अजीत जी आपसे शुरुआत करते हैं।
1: जी विमलेश जी, तो श्रोताओं सबसे पहली बात, ऐसे मौसम में सबसे पहली सलाह ये दी जाती है कि 12 बजे से 4 बजे तक बाहर ना निकले।
3: लेकिन अजीत जी, हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि 12 बजे से 4 बजे तक के समय में ऐसा क्या होता है जिसके कारण ये सलाह दी जाती है।
1: विमलेश जी, ऐसे तो गर्मी के मौसम में हमें हर समय अपना ख्याल रखना ही चाहिए, लेकिन ये समय खास हो
3: जी,
1: क्योंकि सुबह से तो गर्मी पड़ती ही है लेकिन पृथ्वी की परिक्रमा की स्थिति के कारण 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण इस समय तापमान अपने चरम पर होता है।
3: जी, और जब तापमान अपने चरम पर होता है तो इस समय लू लगने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है, जिसके कारण उल्टी, चक्कर आना, बेहोशी, मतिभ्रम और कभी कभी जान को भी खतरा हो सकता है।
1: लेकिन विमलेश जी, एक बार फिर से मैं उसी प्रश्न पर आता हूँ, क्या पृथ्वी का गर्म होना और 12 बजे सूर्य की किरणों का सीधा पड़ना ही एकमात्र कारण है या इस समय कुछ और विशेष भी होता है?
3: जी, बहुत अच्छा प्रश्न है अजीत जी। इसे हमें ये जानना भी बहुत जरूरी है कि सूर्य की किरणों के सीधे पड़ने का प्रभाव पृथ्वी के धरातल पर क्या पड़ता है,
1: तो इसे जरा विस्तार से बताइए।
3: अजीत जी, गर्मी के मौसम में सुबह से सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती हैं तो भूमि गर्म हो जाती है, या दूसरे शब्दों में वो गर्मी को सोख लेती है
1: जी।
3: और 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं जो बाद में धीरे धीरे तिरछी होने लगती हैं, इसलिए उसका तापमान पृथ्वी पर थोड़ा कम होने लगता है। लेकिन इस दौरान भूमि अपनी गर्मी धीरे धीरे छोड़ती है, जिसके कारण गर्मी और अधिक बढ़ जाती है। इसे थर्मल लैग कहते हैं।
1: क्या कहते हैं?
3: थर्मल लैग।
1: अच्छा, तो शायद यही कारण है कि हमें गर्मी 12 बजे से अधिक 1 से 4 बजे के दौरान महसूस होती है
3: जी।
1: तो क्या हम थर्मल लैग को बोलचाल की भाषा में भभक उठना या भभका कह सकते हैं?
3: जी बिल्कुल कह सकते हैं। उस समय ऐसा लगता है जैसे भूमि से गर्मी निकल रही है, ऊपर से सूर्य का ताप और नीचे से पृथ्वी का ताप, यानी एक तरह से दोहरी मार।
1: जी यही बात है, एक तरह से दोहरी मार, बिल्कुल सही कहा। तो ऐसे समय में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
3: देखिए, कहा जा सकता है कि यदि बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकलें।
1: लेकिन विमलेश जी, यदि निकलना ही पड़े तो?
3: यदि निकलना ही पड़े तो सर पर टोपी या कोई कपड़ा जरूर रखें, और हाँ, प्यास लगे या न लगे थोड़ा थोड़ा पानी जरूर पिए। ऐसे में नींबू पानी, नारियल पानी और ORS बहुत लाभकारी होते हैं
1: जी।
3: और हाँ, कोशिश करें जहाँ कहीं छाया मिल जाए वहाँ थोड़ी देर जरूर सुस्ता लें।
1: जी हाँ श्रोताओ, ऐसे समय में बहुत जरूरी ये भी है कि हल्के और ढीले कपड़े पहनें
3: जी।
1: कोशिश करें कि हल्के सूती कपड़े हों और उनका ज्यादा गहरा रंग ना हो।
3: जी,
1: सफेद कपड़ों और हल्के रंगों के कपड़ों की सलाह दी जाती है क्योंकि वे सूर्य की किरणों को परावर्तित करने में सक्षम होते हैं।
3: प्रयास करें कि त्वचा ढकी हुई हो क्योंकि सनबर्न का खतरा भी बना रहता है। और धूप का चश्मा जरूर पहने क्योंकि सूरज की तेज किरणों का असर हमारी आंखों पर भी पड़ सकता है।
1: जी तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी जिसके द्वारा हमने बताया कि कैसे रखें अपना ख्याल गर्मी के इस मौसम में। हम तो फिर से कहेंगे कि अपना
3: और अपने अपनों का ख्याल जरूर रखें, खासकर बच्चों और बुजुर्गों का। तो अब सुनिए आज का प्रश्न है,
1: थर्मल लैग किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
3: थर्मल लैग किसे कहते हैं?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
3: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है आग बरसाती धूप।
3: इस कार्यक्रम में एक नाटक के द्वारा गर्मी से बचाव के उपायों के बारे में बताया गया है और विशेष रूप से चर्चा की गई है कि गर्मी के मौसम में बच्चे अपना ध्यान किस प्रकार से रखें।
4: आग बरसाती धूप।
5: विद्या, क्या है? आम के बाग में चलते हैं।
6: क्यों?
5: वहाँ बहुत सारे आम हैं।
6: अच्छा, तुमने खुद देखे?
5: हाँ।
6: अच्छा, तो फिर चलते हैं, जल्दी चलो।
5: धीरे से, माँ उठ जाएगी।
6: हाँ हाँ, धीरे से चलो ना।

0: वाह, कितने ढेर सारे आम हैं।
1: अब तो मजा आ जाएगा।
2: हाँ, पर कितनी तेज धूप है और हवा भी गर्म चल रही है।
1: छोड़ो भी, वो रहे आम।
2: हाँ,
1: आ चलो खाते हैं। अरे, यहाँ पर तो बहुत सारे आम गिरे हुए हैं। लो विद्या, एक तुम भी खाओ, एक मैं खाता हूँ।
2: आहा, इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। वाह, मजा आ गया, कितना मीठा आम है।
1: हाँ, पर गर्मी भी कितनी हो रही है।
2: हाँ मोहन, गर्मी तो मुझे भी कितनी लग रही है। देखो ना, कितना पसीना आ रहा है मुझे।
1: चलो नदी में नहा कर आते हैं,
2: फिर तो मजा आ जाएगा और गर्मी भी कम हो जाएगी। आओ जल्दी चलें।
3: कितनी तेज धूप है, जैसे आग बरस रही है। आज तो आधा खेत भी नहीं जोत पाया। अरे, इन दोनों बच्चों को देखो, कहां भागे जा रहे।
2: मोहन, और तेज दौड़ो। देखो, मुझे छू सकते हो।
1: कोशिश करता हूँ।
2: अरे मोहन, मोहन क्या हो गया तुझे? अरे अरे, तो गिर पड़ा। अरे मोहन, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मोहन मोहन,
3: मैं पहले कहता था ना कि इन बच्चों को कुछ होकर रहेगा। भला ये भी कोई घर से निकलने का टाइम है? लगता है कुछ गड़बड़ है, चलूं देखूं। अब भागना मत मेरे हीरा मोती, मेरे बैलों की जोड़ी, मैं अभी आया। यही पेड़ की छांव में रहना। हाँ।
2: अरे मोहन मोहन, क्या हो गया तुझे? तो कुछ बोलता क्यों नहीं?
1: विद्या विद्या,
2: अरे ये तो बेहोश हो गया। मोहन मोहन मोहन, कुछ बोल मोहन।
3: क्या बात है बेटे, क्या बात है?
2: देखो ना हामिद काका, मोहन को क्या हो गया?
3: लगता है इसे लू लग गई है। बेटा चलो जल्दी से उठाकर इसे छांव में ले चलते हैं।
2: इसे डॉक्टर के पास ले चलिए काका।
3: हाँ, हाँ, डॉक्टर के पास ही चलते हैं। मैं उठाता हूँ। हाँ, ऐसे चलो।
2: हाँ हाँ, चलिए चलिए।
3: आ गया डॉक्टर साहब का घर। इसे छांव में खाट पर लिटाते हैं
2: जी।
3: तब तुम जरा डॉक्टर को आवाज दो बेटा।
2: डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब।
4: कौन है भाई, अभी आया?
3: इसका जरा कपड़ा उतार दू। लीजिए, डॉक्टर साहब भी आ गए। आइए आइए डॉक्टर साहब, जल्दी आइए।
4: क्या बात है हामिद भाई, क्या बात है?
3: डॉक्टर साहब, लगता है इसे लू लग गई है।
4: ओहो, अच्छा इसके कपड़े उतार दीजिए हामिद भाई।
3: हाँ, हाँ।
4: और इसके बदन पर ठंडा पानी डालिए। ये लीजिए।
3: हाँ।
4: इस लोटे में ठंडा पानी है, तब तक मैं थर्मामीटर लेकर आता हूँ।
3: अच्छा डॉक्टर साहब।
4: और विद्या बेटी, इस पंखे से तुम हवा करती रहो।
2: जी।
4: लो, अब ये थर्मामीटर लगा देते हैं, बुखार चेक कर लेते हैं। अरे हामिद, इसकी टांगे जमीन से एक फुट ऊपर उठाकर रखो।
3: हाँ जी,
4: ऐसे। लो, अब जरा बुखार देख लेते हैं। हाँ, बुखार कम हो गया। भाई अब ठंडा पानी डालने की जरूरत नहीं है
3: जी।
4: इसके शरीर का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आ गया है। भाई अब घबराने की जरूरत नहीं है।
2: ये लू क्या होती है डॉक्टर साहब?
4: बेटा, बहुत तेज गर्म हवा को लू कहते हैं। तेज गर्मी के मौसम में गर्म हवा के प्रभाव से शरीर की ताप नियंत्रण व्यवस्था काम करना बंद कर देती है
2: जी।
4: जिसके कारण शरीर का तापमान अचानक बाहरी तापमान के अनुसार बढ़ने लगता है।
2: इससे क्या होता है?
4: भाई तापमान बढ़ने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है और पसीना आना बंद हो जाता है और मरीज बेहोशी की हालत में चला जाता है।
3: डॉक्टर साहब, कैसे बच सकते हैं इससे?
4: भाई सावधानी ही असली बचाव है। ज्यादा तेज धूप और गर्मी में बाहर नहीं निकलना चाहिए, और अगर निकलना बहुत जरूरी हो तो छतरी या सर पर कपड़ा रखकर निकलना चाहिए। लगातार पानी वगैरह पीते रहना चाहिए।
3: डॉक्टर साहब, नींबू पानी, गन्ने का रस और कच्चे आम को उबालकर बनाया गया पन्ना भी तो फायदेमंद होता है।
4: हाँ हाँ हामिद भाई, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा वगैरह मौसमी फल भी खूब खाने चाहिए। और साधारण दिनों से पानी 3 गुना ज्यादा पीना चाहिए।
3: जी,
2: और अगर लू लग जाए तो
3: प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए?
4: भाई, लू लगे व्यक्ति के शरीर के तापमान को जल्दी ही नीचे लाने का प्रयास करना चाहिए। ठंडा पानी या बर्फ आदि से शरीर को पोंछकर तापमान को 38 डिग्री सेल्सियस तक लाने का प्रयास करना चाहिए।
2: जी।
4: और डॉक्टर की सलाह भी तुरंत लेनी चाहिए।
2: मोहन को होश आ गया डॉक्टर साहब, मोहन को होश आ गया।
4: अभी लेटे रहो मोहन बेटे, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है।
3: डॉक्टर साहब की बताई बातें याद रहेंगी कि नहीं?
2: जी।
3: अब तो नहीं घूमोगे कड़ी धूप और गर्मी में?
2: नहीं काका, मुझे सब याद है जो डॉक्टर साहब ने बताया।
4: कोई बात नहीं, चलो एक बात फिर बता देता हूँ। गर्मी के दिन घर में बिताओ, खीरा ककड़ी तरबूज खाओ, नींबू पानी लस्सी पियो, 3 गुना पानी पियो, गन्ने का रस, आम का पन्ना गर्मी में मत करो मना, तेज धूप में कभी न खेलो, गर्मी के दिन घर में बिताओ, गर्म हवा से रहे हम दूर, ठंडक में खेले भरपूर।
3: गर्म हवा से रहे हम दूर,
5: ठंडक में खेले भरपूर।
3: ठंडक में खेले भरपूर।
4: आग बरसाती धूप।
6: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आग बरसाती धूप, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम लांस नायक अल्बर्ट इक्का।
7: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के वीर योद्धा लांस नायक अल्बर्ट इक्का के जीवन और सन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके पराक्रम और शौर्य की रोमांचक गाथा बताई गई है। अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया।
6: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है प्रेरक गाथाओं की श्रृंखला
8: इन्हें हमारा सलाम।
6: तो आइए इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट इक्का। नमस्कार साथियों।
9: नमस्कार
6: साथियों, भारत रणबांकुरों और वीरांगनाओं की भूमि है। यहाँ की माटी ने ऐसे ऐसे वीरों को जन्म दिया है जिन पर सिर्फ देश ही नहीं विश्व इतिहास भी हमेशा गौरव का अनुभव करेगा।
9: जी हाँ, इन वीरों ने समरांगन में अपने रक्त से जिस वीरता की गरिमामय गाथा लिखी वो कभी भी भुलाई नहीं जा सकती। सच तो ये है कि इन वीरों की गाथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी विश्व के इतिहास पटल पर गुंजायमान रहती हैं।
6: तो आज हम एक ऐसे ही वीर की गाथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका पराक्रम याद किया जाता रहेगा। भारत माता के वह वीर सपूत थे लांस नायक अल्बर्ट इक्का।
9: लांस नायक सुनकर ही आप समझ गए होंगे कि अल्बर्ट इक्का भारतीय स्थल सेना से संबंध रखते थे।
6: जी हाँ साथियों, लांस नायक एक सैनिक पदवी है। लांस नायक अल्बर्ट इक्का ने सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पूर्वी मोर्चे पर ऐसे असीम शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया जो अतुलनीय है।
9: उनकी बहादुरी ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए और दुश्मन को भारी पराजय का सामना करना पड़ा,
6: और इस वीरता के कारण उन्हें सैनिक सम्मान परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।
9: उनके शौर्य को देखकर एक यूनिट कमांडर ने कहा था, ऐसा लगता था जैसे स्वयं महाकाल शत्रुओं के विध्वंस के लिए प्रकट हो गए हैं।
6: इतना ही नहीं साथियों, शत्रुओं के खेमे में भी उनकी बहादुरी की चर्चा बड़े सम्मान से की जाती थी। तो आइए सुनते हैं अल्बर्ट एक्का की कहानी।
9: साथियों, भारत संघ का एक सुंदर पूर्वी राज्य है झारखंड। यहाँ के पर्वतीय स्थल, सदाबहार जंगल, कलकल करती पहाड़ी नदियाँ और सीधे सादे आदिवासी और उनका कर्णप्रिय आदिवासी संगीत अनायास ही लोगों का मन मोह लेता है।

0: नाम से ही विदित होता है साथियों, जैसा अभी कहा गया झारखंड, झार यानी झाड़ या पेड़। तो झारखंड का अर्थ हुआ ऐसा भूखंड जो वृक्षों या जंगलों से भरा हुआ हो। झारखंड राज्य एक पठार पर बसा है जिसे छोटा नागपुर का पठार कहते हैं।
1: इस राज्य में वन और खनिज संपदाओं की भरमार है।
0: इसी झारखंड राज्य का एक जिला है गुमला, और इस जिले में एक प्रखंड या ब्लॉक है डुमरी। इसी डुमरी ब्लॉक के जरी नामक गांव में 27 दिसंबर 1942 को एक आदिवासी परिवार में अल्बर्ट एक्का का जन्म हुआ था।
1: इनके पिता का नाम जूलियस एक्का था और माँ का नाम मरियम एक्का। माता पिता शुरू से ही पढ़ाई लिखाई के विषय में बहुत जागरूक थे, इसलिए ठीक समय पर उन्होंने बेटे अल्बर्ट को पढ़ाई के लिए स्कूल भेजा।
0: उनकी प्रारंभिक शिक्षा उसी जिले के एक स्कूल में हुई। आदिवासी होने के कारण तीर धनुष चलाने और शिकार खेलने में उनकी विशेष रुचि थी। संभवतः इसी रुचि ने उन्हें आगे चलकर बेहतर सैनिक बनने में उनकी सहायता की।
1: उन दिनों भारत में हॉकी का खेल बहुत ही लोकप्रिय था। अल्बर्ट एक्का हॉकी के भी अच्छे खिलाड़ी थे। अपने स्कूली दिनों में वे खेल के मैदान में घंटों अभ्यास करते थे और पसीना बहाते थे। उनकी नेतृत्व में स्कूल ने कई टूर्नामेंट जीते।
0: झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है और सेना में जाने का प्रचलन वहां के युवाओं में आम बात है। अल्बर्ट भी आसपास के गांव में जवानों को सेना में भर्ती होते देखते थे। जब वे जवान छुट्टियों में गांव आते थे तो अल्बर्ट अक्सर उनसे बातें करते। उन्हें सेना का जीवन बहुत भाने लगा था, और फिर ऐसा हुआ कि धीरे धीरे उन्होंने सेना में जाने का मन बना लिया।
1: और ठीक अपने जन्मदिन पर 27 दिसंबर 1962 को, यानी 20 वर्ष की आयु में वे भारतीय सेना में भर्ती भी हो गए।
0: उन्होंने फौज में बिहार रेजिमेंट से अपना कार्य शुरू किया। बाद में जब 14th गार्ड्स का गठन हुआ, तब अल्बर्ट अपने कुछ साथियों के साथ वहां स्थानांतरित कर दिए गए। उन दिनों उनकी यूनिट बिहार रेजिमेंट में थी।
1: अनुशासन, श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन और निष्ठा के कारण वे धीरे धीरे सिपाही से लांस नायक की पदवी तक पहुंच गए।
0: और फिर आया सन 1971 का साल। भारत के पूर्वी हिस्से में युद्ध के बादल मंडराने लगे। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो बंगाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहते थे और ये अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है।
1: जब यहाँ की स्थितियाँ बिगड़ने लगी तो भारत को मानवीय आधार पर युद्ध में उतरना पड़ा।
0: 3 दिसंबर 1971 का दिन भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच भीषण युद्ध शुरू हो चुका था।
1: उनकी यूनिट को गंगा सागर के पाकिस्तानी गढ़ पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। इसे जीतना भारत के लिए सामरिक तौर पर बहुत जरूरी था।
0: इसे जीतना इसलिए जरूरी था कि इसके बिना भारतीय फौज ढाका तक नहीं पहुंच सकती थी।
1: दुश्मन अपनी पूरी तैयारी के साथ बैठा था। यहाँ एक जगह है अखौरा। पाकिस्तानी सेना ने यहाँ अपना पूरा जमावड़ा लगा दिया था।
0: सेना दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ी, जिनमें से एक यूनिट की कमान थी लांस नायक अल्बर्ट एक्का के पास।
1: शत्रुओं द्वारा टैंक विरोधी मिसाइलों को तैनात कर दिया गया था ताकि भारतीय सेना की बढ़त को रोका जा सके। सामरिक दृष्टि से पाकिस्तानी सेना बहुत बेहतर स्थिति में थी।
0: और तो और, वहां पाकिस्तानी सेना के जवान भी बहुत भारी संख्या में तैनात थे। कुल मिलाकर गंगा सागर गढ़ पर कब्जा करना एक दुस्साहस और मौत को गले लगाने के अलावा कुछ नहीं था।
1: लेकिन लांस नायक अल्बर्ट एक्का के नेतृत्व में यूनिट आगे बढ़ती रही। उन्होंने तय कर लिया कि वे अपना मिशन पूरा करके ही रहेंगे। वे आगे बढ़े ही थे कि दूसरी ओर से गोलियों की भयंकर बौछारें आने लगी।
0: वो जगह माइंस से पटी हुई थी, इस कारण भी बहुत से भारतीय सैनिक हताहत होने लगे। दुश्मनों की मशीन गने बंकरों से लगातार गोलियां बरसा रहे थे। भारतीय सैनिक रेंगते हुए इंच इंच करके आगे बढ़ रहे थे।
1: लांस नायक एल्बर्ट इक्का को समझ में आ गया था कि जब तक पाकिस्तानी मशीन गनों को शांत नहीं किया जाएगा, भारतीय सैनिक बहुत बड़ी संख्या में हताहत होते रहेंगे।
0: और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले हथगोलों से पाकिस्तानी बंकरों को निशाना बनाया। इसमें उन्हें थोड़ी सफलता भी मिली, लेकिन यह काफी नहीं था। एक पाकिस्तानी बंकर से अभी भी लगातार गोलियों की बौछार आ रही थी।
1: और अब समय था इतिहास रचने का। अल्बर्ट एक का लगातार आगे बढ़ते गए। उनके पास हथगोले थे। गोलियों की बौछारों से बचते बचाते वे किसी तरह उस बंकर के पास पहुंच गए और उस बंकर में बने एक छेद से अंदर हथगोला फेंक दिया।
0: जब वहां पर हथगोला फटा और कई पाकिस्तानी सैनिक उसी समय काल कलवित हो गए, लेकिन अभी भी कुछ सैनिक बचे थे जो बंकर के अंदर से लाइट मशीन गनों से गोलियों की लगातार बौछार कर रहे थे।
1: फिर क्या था, लांस नायक एल्बर्ट इक्का अकेले ही उस बंकर में कूद गए
0: और फिर शुरू हुआ आमने सामने का युद्ध। एल्बर्ट इक्का काल बनकर दुश्मनों पर टूट पड़े। अपने बंदूक की संगीन और बट से उन्होंने दुश्मनों पर प्राण घातक हमला किया और उन सैनिकों को भी मौत के घाट उतार दिया। उस बंकर में दुश्मन के सारे सैनिक एल्बर्ट इक्का की बहादुरी के कारण मारे जा चुके थे।
1: लेकिन इस युद्ध में एल्बर्ट इक्का को गंभीर चोटें भी आईं और वे देश के लिए वहीं शहीद हो गए। उनकी आंखें बंद हो चुकी थीं, लेकिन उनकी इसी वीरता ने भारत के लिए ढाका पहुंचना आसान कर दिया और भारत की जीत सुनिश्चित कर दी।
0: इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप दुनिया के मानचित्र पर एक नया देश उभरा, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं।
1: इस कल्पनातीत शौर्य, पराक्रम और बहादुरी के लिए लांस नायक एल्बर्ट इक्का को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: इतना ही नहीं, बांग्लादेश ने भी इस महापराक्रमी योद्धा को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर ऑनर से नवाजा।
1: भारत के सैन्य इतिहास में संभवतः लांस नायक अल्बर्ट एक का अकेले वह युद्ध नायक हैं जिन्हें दो राष्ट्रों ने दो अलग अलग सम्मानों से अलंकृत किया।

0: परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक का। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम।
1: अकादमिक परामर्श राजेश कुमार निमेश, वाचन अजीत होरो और वंदना अरिमर्दन, तकनीकी निर्देशन बटिल्यांग लिंदो, ध्वनियांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग सौम्या मलिक, आवरण सज्जा अमित कुमार और कुसुमलता, आलेख अजीत होरो, निर्माण परामर्श वंदना अरिमर्दन और विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन निर्देशन एवं निर्माण तनु गुप्ता,
0: तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत। लांस नायक अल्बर्ट एक का। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और अब इसी के साथ हम अपने आज के उमंग प्रसारण को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो तब तक के लिए अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उमंग FM बैंड 101.8 MHz पर ही आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। दोपहर के 1 बजने को है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की अपनी दो दिन की यात्रा के बाद नॉर्वे के लिए रवाना हो गए। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति देंगे। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने की कवायद में ये चर्चाएं अत्यंत सार्थक रही। भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना की व्यापक रूपरेखा का उद्देश्य अगले 5 सालों में द्विपक्षीय आर्थिक आदान प्रदान को दोगुना करना है। इस यात्रा में प्रधानमंत्री श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किया गया। ये स्वीडन का किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। कांग्रेस नेता वी डी सतीशन ने आज केरलम के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में हुए समारोह में उनके साथ मंत्रिपरिषद ने भी शपथ ली। राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर ने मुख्यमंत्री और कैबिनेट को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पार्टी ने 14 मई को श्री सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया है। राज्य विधानसभा के 75वें स्थापना वर्ष के उपलक्ष्य में आज विधानसभा के नए लोगों का विमोचन किया गया। विधानसभा परिसर में आयोजित समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने लोगों की लॉन्चिंग की, साथ ही विधानसभा के चारों द्वारों के नामकरण की पट्टिकाओं का अनावरण किया गया। इन प्रवेश द्वारों को राजस्थानी संस्कृति के अनुसार नए नाम दिए गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने इस नवाचार की

0: पहल की। गौरतलब है कि डिजिटल पेपरलेस व्यवस्था सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक दीर्घाओं, डिजिटल संग्रहालय सहित अन्य नवाचारों से राजस्थान विधानसभा को देश में अनूठी पहचान मिली है। हाड़ौती अंचल के बुनकरों की हस्तकला कोटा डोरिया की वैश्विक पहचान मजबूत करने के प्रयास तेज किए जा रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय और जिला प्रशासन के साझा प्रयासों से कैथून कस्बे के बुनकरों के हुनर को संवारने की कवायद शुरू की गई है। हाल ही में केंद्रीय सचिव संजय जाजू के दौरे ने इस मुहिम को नई गति दी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस विरासत को सहेजने और इसके आधुनिकीकरण के लिए स्थानीय कॉमन फैसिलिटी सेंटर को सशक्त किया जा रहा है।
1: इस मुहिम का सबसे खूबसूरत पहलू है एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक। पूर्वोत्तर का प्रसिद्ध एरी सिल्क अब कैथून के पीटलूम पर कोटा डोरिया के धागों के साथ बुना जाएगा। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में शुद्धता की गारंटी के लिए यहाँ पंच गौरव अभियान के तहत जरी टेस्टिंग मशीन भी लगाई जा रही है। इससे बिचौलियों का खेल खत्म होगा और स्थानीय बुनकरों को उनके हुनर का सही वैश्विक मूल्य मिलेगा। यकीनन पूर्वोत्तर के सिल्क और हाड़ौती के हुनर का यह मेल कोटा डोरिया को सात समंदर पार लेकर जाएगा। आशीष मेहता, आकाशवाणी समाचार, कोटा।
0: प्रदेश में दिन के साथ अब रातें भी काफी तपने लगी है। कल 45.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ बाड़मेर प्रदेश में सबसे गर्म शहर रहा। इसके अलावा बीकानेर, जैसलमेर, फलौदी, चित्तौड़गढ़, कोटा और श्रीगंगानगर सहित कुछ अन्य शहरों में तापमान 44 डिग्री से ऊपर मापा गया। उधर चित्तौड़गढ़ और हनुमानगढ़ में रात का पारा 33.2 डिग्री पहुँचने से गर्म रातों का दौर शुरू हो गया। कोटा में भी रात का पारा 32 डिग्री सेल्सियस तक उछल गया। राजधानी जयपुर में भी लगातार तीसरे दिन तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। यहां दिन का पारा 42.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के 19 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला आज शाम 7:30 बजे सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। ये मैच हैदराबाद के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। रैंकिंग में सनराइजर्स हैदराबाद तीसरे और चेन्नई सुपर किंग्स पांचवें स्थान पर है। वहीं कल दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। इसके साथ ही दिल्ली कैपिटल्स ने प्ले ऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीदें बरकरार रखी हैं। दिल्ली में खेले गए मैच में कल 194 रन के लक्ष्य के जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने 20वें ओवर में 5 विकेट पर 197 रन बनाकर मैच जीत लिया। इस जीत के साथ ही दिल्ली कैपिटल्स तालिका में 8वें से 7वें स्थान पर पहुंच गई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: FM 101.8 MHz पर आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। दोपहर के 1:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं महिलाओं का कार्यक्रम मुमल।

मोमल कार्यक्रम सुनने वाली मेरी सभी प्यारी प्यारी सखियों को आप सबकी रेडियो सखी प्रीति का प्यार भरा नमस्कार। जी बहनों, गर्मी बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए। और सबसे ज़्यादा बस गर्मी में यही है कि जितनी ज़रूरत हो या ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें। अगर ज़्यादा ही ज़रूरी हो तो ही जाए, नहीं तो घर पर ही रहें। और वैसे तेज़ गर्मी का जो समय होता है वो होता है 12 से लेके 4 साढ़े 4 बजे तक का होता है। तो उस बीच अगर कोई ज़रूरी काम है तो टाल सकते हैं तो टालें, और उसके बाद आप जा सकते हैं। शाम को ठंडा मौसम हो जाता है, उस समय आप बाहर जाकर अपने काम कर सकते हैं, क्योंकि जो नियमित काम होते हैं वो रुकते नहीं हैं, उसके लिए तो बाहर जाना पड़ता है। लेकिन अगर हमें लग रहा है कि टाइम के अकॉर्डिंग हम वो काम कर सकते हैं तो आप उस समय वो काम कीजिए। अब एक चीज़ ये भी होती है बहनों की, बच्चों की समर की छुट्टियाँ अभी होती हैं, अब छुट्टियां अभी होती है, गर्मी अभी होती है, तो बच्चों को कहाँ लेकर जाएं, कैसे करें, समझ नहीं आता। बच्चे घर में बोर हो जाते हैं, कितना उन्हें गेम खेलने के लिए दें, होमवर्क मिलता है स्कूल से तो वो भी बच्चे कर लेते हैं, उसके बाद में भी कहा जाए, क्योंकि छुट्टियां एक ऐसी चीज होती है जो बच्चों को लगता है कुछ चेंज होना चाहिए लाइफ में। वही रूटीन होता है कि वही अगर हम कहीं नहीं जा रहे तो वही बस ठीक है, उन्हें हम घर पे हैं तो कुछ अलग अलग तरह के ब्रेकफास्ट बना के खाना बना के खिला सकते हैं, लेकिन बच्चों को चाहिए कि वो बाहर जाएं। एक इफेक्ट बात होती है, जो गर्मी हमें लगती है वो बच्चों को लगती नहीं है। अगर आप बच्चों को बोलो ना कि जाओ बाहर खेलो तो वो आराम से खेलेंगे, जब तक बुलाए ना वो घर में नहीं आते हैं। ये तो माता पिता को लगता है कि उन्हें गर्मी लग रही होगी, प्यास लग रही होगी, ये चिंता रहती है। लेकिन बच्चों को घूमने का शौक होता है, खेलने का, उनके पास ये छुट्टियां ही होती है। और कई बार ऐसा होता है कि छुट्टियां ऐसी होती है कि आस पास के उनके फ्रेंड्स सब चले जाते हैं अपने अपने यहाँ जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, कई सर्विस के चक्कर में आए हुए रहते हैं पेरेंट्स से, लेकिन जब छुट्टियां होती है तो अपने अपने जैसे कोई दादा के पास कोई नाना के पास चले जाते हैं, तो हम बच्चे जो लोकल होते हैं वो कहीं जा ही नहीं पाते, कहाँ जाएं, तो ऐसे चीज़ों में बोर हो जाते हैं। तो एक चीज़ होती है बहनों, जैसे हम बच्चों को छुट्टियों में जहाँ हमें लगे कि गर्मी भी ना लगे और बच्चों का मन भी लग जाए और कुछ सीखने को मिले, तो वहाँ हम बच्चों को लेके जाएं। जैसे हम बच्चों को ले जा सकते हैं कहीं संग्रहालय पर भ्रमण करने के लिए, विजिट करवाने के लिए। तो वहाँ पे ऐसा होता है कि ये चीज़ें जो होती है वो धूप में तो होती नहीं है, ये तो हवेलियाँ वगैरह जो होती है वहाँ होती है। तो संग्रहालय में हम बच्चों को ले जा सकते हैं और बच्चों को वहाँ ले जाके कुछ चीज़ें सीखने को भी मिलती है, उनके कोर्स से जुड़ी होती है, कुछ नई जानकारियाँ मिलती है और कुछ वो इतिहास से जुड़ जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो होती है ना, हम उन्हें कहानियों के जरिए बताते हैं, लेकिन वो उन्हें वो सामने देखते हैं चीज़ों को वगैरह, तो और ज़्यादा उनके अंदर एक जिज्ञासा जागृत होती है संग्रहालयों में घूमने की, चीज़ों को लिखने की, समझने की, पहचानने की। तो ये चीज अच्छी है कि हम बच्चों को कहीं संग्रहालय ले जाकर वहां घुमा भी सकते हैं, बच्चों का मन भी लग जाए, धूप भी नहीं लगती है। फिर 99% संग्रहालय हवेलियों के अंदर होते हैं जहाँ धूप नहीं होती। और आजकल तो ये भी हो गया कि सब जगह कंडीशनर एसी लगे होते हैं, ठंडियों की वजह से भी वो थोड़े से बचाव, गर्मी से बचाव कर सकते हैं। तो हम बच्चों को संग्रहालय की भ्रमण करने के लिए ले जा सकते हैं, लेकिन संग्रहालय में अगर हम जा रहे हैं तो हमें कुछ चीजों की पूरी जानकारी भी होनी चाहिए, कुछ चीज़ों के बारे में हमें पूरा पता भी होना चाहिए, और एक सारणी बनाकर चलें। ऐसे थोड़ी ही जब मन करा तभी हमने लिया और चल दिया, भाई आज मन कर रहा है सुबह उठे तो आज चल, नहीं। अगर हमें किसी संग्रहालय का भ्रमण करने जाना है तो पहले हमें उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, और सबसे बड़ा ये देखना चाहिए कि वो किस वक्त खुलता है किस वक्त बंद होता है। सबका एक टाइम होता है, हो सकता है समर के हिसाब से थोड़ी गर्मी होती है तो थोड़ा लेट खुल रहा हो या जल्दी खुल रहा हो, जल्दी बंद हो रहा हो, तो उसके अनुसार जाए। और ये भी देख ले कि किस दिन छुट्टी है, बाई चांस हम चले गए और वहाँ उस दिन छुट्टी हुई तो सारा हमारा जाना व्यर्थ हो जाएगा। और वैसे भी आजकल हमें किस संग्रहालय घूमने जाना है वहाँ पे हम आजकल ऑनलाइन सब चीज़ें देख सकते हैं कि किस टाइम घूमना है, किस टाइम वहाँ पर खुले रहेगा, क्या क्या सब चीज़ें वहाँ की, जाके क्या टिकट है, किस हिसाब से है, कि छोटे बच्चों का है कि नहीं है, बड़ों का कितना, ये सारी जानकारी उस पर आ जाती है। और एक होता है कि हम कितनी दूर जा रहे हैं उस हिसाब से हमें खाना क्या लेना है, उस खाने का भी होना चाहिए, कि घूमते घूमते भूख तो लग ही जाती है। अगर हम सुबह निकले दोपहर तक हो गया तो लंच का टाइम हो गया, अगर हम शाम को निकले हैं तो रात के डिनर तक का टाइम हो गया, तो हमें उस हिसाब से अपने खाने का भी पूरी व्यवस्था करके जानी चाहिए, पानी की बॉटल वगैरह। वैसे तो आजकल नॉर्मली है कि सभी जगह कैंपर रखे होते हैं पानी के, लेकिन फिर भी अपने घर से पूरी व्यवस्था कर कर चलना चाहिए कि कहीं किसी चीज़ की दिक्कत ना हो। बड़े बच्चे होते तो समझते, अगर हमारे साथ छोटे बच्चे भी जा रहे हैं तो उनके लिए पानी की खाने की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। एक ये भी होना चाहिए कि आप जहाँ जा रहे हैं जैसी जगह पे उस हिसाब से, क्योंकि संग्रहालयों के अंदर लगभग देखा गया कि जूते चप्पल अलाउ नहीं होते, अगर अलाउ होते तो आप आरामदायक पहन के जाओगे, क्योंकि संग्रहालय के अंदर घूमना बहुत पड़ता है, तो आप उसी के अनुसार जूते चप्पल अपने कपड़े भी उसी हिसाब से पहन के जाओ, क्योंकि अगर आप
जा रहे हैं और कंफर्टेबल आपने कुछ शूज वगैरह नहीं पहने, आपको अच्छा नहीं लगता, आप ज्यादा घूम नहीं पाओगे, फिर आपको लगेगा कि अपने साथियों के साथ फैमिली के साथ अगर गए हो तो आप लास्ट में बोलोगे कि तुम घूम के आओ, मैं यहाँ बैठा हूँ या बैठी हूँ, तो वो मजा नहीं आता है। इस तरह से फिर अपने कंफर्टेबल चीजें लो जो आपको कंफर्टेबल लगती है, आपको चलने में पहनने में भी, कपड़े भी आप थोड़े गर्मी के हिसाब से ही पहने। हमें कई बार ऐसा लगता है कि हम थोड़े से ज्यादा हैवी पहन लेते हैं कि अच्छा लगेगा, फोटो अच्छी आएगी, सेल्फी अच्छी आएगी, लेकिन सेल्फी के चक्कर में हम अपना पहनावा इस तरह का पहन लेते हैं कि फिर हमें वो आरामदायक नहीं लगता है। इसलिए अपने कपड़ों का भी चयन जब आप करें तो इस हिसाब से करें कि आपको समर में क्या सूट होगा। और एक होता है कि अगर हम जा ही रहे तो हमें पूरी जानकारी बना लेनी चाहिए, अगर हमें वहां जाके कुछ सीखने को मिल रहा है, बच्चों को कुछ सिखाने को

तो अपनी पेन डायरी साथ में लेके जाए, उसको नोट करके लेकर आए। एक होता है कि हम जा ही रहे हैं देखने के लिए संग्रहालय वगैरह, तो वहां की जानकारियां पूरी हमें पता हो, नहीं हो अगर हम जा रहे हैं तो ठीक है, नहीं हो तो हमें एक अच्छे गाइड को ज्वाइन कर लेना चाहिए जो कि वहां की सारी जानकारी बता सके। अगर आप लोकल हैं वहां पर, अगर कुछ महल है हवेलियां है तो ठीक है, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आपको एक अच्छे से गाइड को ज्वाइन कर लेना चाहिए जो आपको वहां की सारी जानकारी दे सकता है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है जो हम सारणी बनाकर चलते हैं ना तो ज्यादा बेटर रहता है। तो हम क्या करते हैं कि जब सारणी बना के जाएंगे तो हमें किसी चीज की कोई तकलीफ नहीं होगी और वो चीज हम आराम से घूम सकते हैं। नहीं तो कई बार ऐसा होता है हम बिना सारणी के, बिना बस मन करा कि आज सुबह उठे हैं, ये है कि हम यहाँ चल रहे हैं फटाफट फटाफट चलते हैं, तो बिना सारणी के या बिना किसी तैयारी के अगर चलते तो बहुत परेशानियां आती है। अगर हम ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं तो हमारे पास अगर टिकट नहीं है तो वहां पे भी दिक्कत आएगी, इतनी गर्मी में बिना टिकट के या बिना रिजर्वेशन के जाना भी बहुत परेशानी कर देता है। इसलिए हम जब भी जा रहे हैं तो उस हिसाब से जाए। और एक होता है कि अगर हम पहुंच गए संग्रहालय तो ये भी देख ले कि, क्योंकि हर जगह होता है कि हम अपने कैमरे में हर फोटो शूट करना चाहते हैं कि उसको यादें बनाकर बाद में बताने के लिए घर में जो मेंबर नहीं जाए उनको, तो वहाँ ये भी देख ले कि क्या कैमरा वगैरह वहाँ अलाउ है कि नहीं है। अलाउ है तो आप ले जा सकते हैं, नहीं है तो उसका भी आप पहले से कुछ सोच कर जाए, प्रबंध करके जाए कि कहाँ रखेंगे। वैसे तो आजकल हर चीज का होता है, केबिन वहाँ आप रख सकते हैं, टिकट ले सकते हैं उसका, लेकिन फिर भी अगर नहीं है तो आप उसकी क्या व्यवस्था कर रहे हैं, उस हिसाब से पूरी सारणी बना के चलिए। बच्चों को घर से ही समझा के रहिए कि नॉर्मली जो होता है संग्रहालय में ज्यादा शोर शराबा नहीं होना चाहिए, आराम से चलिए, देखिए हर चीज को देखिए, उसके बारे में जानकारी लीजिए, लेकिन शोर शराबा ना करिए। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है जो बहनों हमें ये अपने घूमने का मजा दुगना कर देती है। अगर हमें भी किसी की जानकारी नहीं है और हमने किसी के लोगों के मुंह से सुना है, तो आप उस लोगों के मुंह से जब कुछ सुनते हैं वहां जाकर कुछ देखते हैं तो कुछ अलग डिफरेंट लगता है, कुछ डिफरेंट अलग लगे उसे अपने कैमरे में कैद करिए, उसको बताइए। जो बच्चे नहीं जा पा रहे या फिर फैमिली के कुछ मेंबर जैसे बड़े बुजुर्ग ज्यादा घूम नहीं फिरते फिर सकते, तो उनको वहाँ ले जा वो आप फोटो वगैरह वहाँ का जो सूट है वगैरह उनको दिखा सकते हैं। तो मतलब बस यही है कि आप जब भी कहीं जाए तो थोड़ा सा अपनी एक समय सारणी बनाकर जाए, और जाए जरूर ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ बच्चों को कुछ सीखने को मिलता है, हो सकता है उनके कोर्स से कुछ चीजें जुड़ी भी होती है। अगर आप लोकल है तो ठीक है, नहीं है तो आप बाहर गए हैं तो बच्चों को बाहर ले जाइए दिखा के लाइए, क्योंकि छुट्टियां जो होती है ना ये समर में ही और गर्मी में ही होती है, और गर्मी में ही ऐसा लगता है कि कहाँ जाए बाहर, लेकिन बच्चों के लिए जाना थोड़ा सा जरूरी होता है कि बच्चों के लिए थोड़ा सा इन्वायरमेंट चेंज होना चाहिए। वही माहौल में होता है तो बच्चे थोड़े से बोर टाइप हो जाते हैं, फिर तो वही होता है कि पूरे साल बच्चों को जब स्कूल खुलती है तो पूरे साल वही एग्जाम, वही ट्यूशन, वही कोचिंग, वही पढ़ाई, वही होमवर्क, सब वही हो जाता है। तो थोड़ा सा ये होता है कि थोड़ा सा समय निकालकर बच्चों के साथ बच्चे बनिए, उन्हें घुमा के लाइए और इंजॉय करिए, क्योंकि कुछ पल ऐसे होते हैं जो बच्चे शायद ये चाहते हैं कि वो खुद भी जिए। हालांकि हम बच्चों की हर डिमांड पूरी करते हैं, लेकिन छुट्टियां एक अलग होती है, वो उनपे उनका हक होता है, और हम क्या करते हैं गर्मी गर्मी करके वो हक उनसे छीन लेते हैं, बस घर में वो सारी चीजें अवेलेबल कर देते हैं जो होनी चाहिए। आप गर्मी से बचाव करके जा सकते हैं, अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो अपने हिसाब से आप जैसे गूगल से टोपी है ये सब लेके जाइए, तो बच्चों से बचाव भी करिए, पानी की मात्रा है थोड़ी ज्यादा लेके जाइए, जबकि टाइम टाइम उन्हें बच्चों को पानी पीने के लिए कहते रहिए, तो इस तरह आपका भ्रमण भी हो जाएगा, बच्चे बीमार भी नहीं होंगे, और आपका देखिए बच्चे भी कितने खुश होते हैं, आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी। तो बहनों आपके साथ मेरी चर्चा इस विषय पर यूं ही जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं। कागज
1: तो बहनों हम बात कर रहे थे संग्रहालय को लेकर। जी हाँ, जो संग्रहालय के लिए हमने जो बात की है कि आप कहीं घूमने जाएं तो अपनी पूरी व्यवस्था के साथ जाएं, सारणी संबंध बनाकर जाएं और भ्रमण के दौरान थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखें। और सबसे बड़ी होती है कि एक जैसे हम कहीं घूमने जा रहे हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं तो उनसे एक दूरी बनाकर रखें। आजकल हर चीज़ कैमरे में नज़र आती है, कई बार बच्चे उस चीज़ को छू लेते हैं। वहाँ पे साफ लिखा होता है कि कई भी चीज़ों को छूना मना है। बच्चों को एक शौक़ होता है कि हाथ में लेकर देखें, उसके साथ सेल्फी खिंचाएँ, तो वहाँ हो सकता है उस चीज़ की अनुमति ना हो, तो इस चीज़ का भी आप पूरा ध्यान रखें। और एक अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो थोड़ी सी अपनी सुरक्षा भी रखिए, क्योंकि भीड़ भाड़ में हम देखते हैं ना कि थोड़ा सा लोग हाथ साफ कर देते हैं, मोबाइल है या पर्स है या कोई और चीज़ें महंगी चीज़ें हैं, तो वो थोड़ा आप बचाव करके रखिए। अगर आप भ्रमण के लिए जा रहे हैं तो वैसे तो ये एक चीज़ कि आप सोना चांदी वगैरह ना ही पहन के जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि आप भ्रमण पर जा रहे हैं ना कि कोई शादी ब्याह में जा रहे हैं। आप नॉर्मली जैसे घर में पहनते हैं नॉर्मल चीज़ें वही आप पहन के जाइए, क्योंकि घूमने में आप सोने चांदी का कोई काम नहीं होता। फिर अगर कोई बात से दुर्घटना हो जाती है, कोई चीज़ खो जाती है, तो हमारा घूमना वो बिल्कुल व्यर्थ हो जाता है। फिर हमें घर आके ऐसा था कि मैं क्यों गया, क्यों ऐसे गई, मेरा ये नुकसान हो गया। नुकसान से बचें, इसलिए आप घर कहीं घूमने जा रहे हैं तो अपने महंगे आभूषण घर पर ही रख कर जाएं। जी हाँ बहनों, इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि आजकल अपनी सुरक्षा अपने हाथ होती है। हम इसके लिए दूसरे को क्लेम नहीं कर सकते, कहीं घूमने गए हैं कोई चीज़ खो गई तो इसमें कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं होगा, उसके जिम्मेदार हम खुद होंगे। हम खुद समझदार हैं, हमें पता है भीड़ भाड़ वाली जगह पे अपनी महंगी चीज़ों को ना ले जाएं, पर्स में ज़्यादा पैसे वगैरह ना लें, ATM कार्ड ना रखें, मोबाइल है तो उस मोबाइल को अपने हाथ में रखें, क्योंकि पर्स में से कोई भी चेन खोल के निकाल सकता है, कर सकता है, तो ये चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम घूमने में रह जाते हैं, मोबाइल अगर सबके पास है तो हम सोचते हैं कि आप सबके मोबाइल निकाल के

आभूषण चोरी कर ले, इसलिए थोड़ा से अपनी सुरक्षा को आप अपने तक रखें और अपनी सुरक्षा को अपने साथ लेकर चलें। जी हाँ, आपकी सुरक्षा आपके हाथ है, दूसरे के हाथ नहीं है। ठीक है, हम पुलिस को शिकायत कर सकते हैं, पुलिस मौके पर पहुंचती है, उससे पहले ही अगर कुछ गलत हो जाता है, कोई नुकसान हो जाता है, तो उसमें पुलिस भी क्या करेगी। तो बहनों, अपनी सुरक्षा अपने हाथ, चर्चा आपके साथ ऐसी जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले सुनते हैं प्यारा सा गीत।

बहनों, अभी आपने जो प्यारा सा गीत सुना, फिल्म थी दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। गीत को आवाज दी थी कुमार सानू, लता मंगेशकर ने। हम बात कर रहे थे अपनी सुरक्षा अपने हाथ। जी हाँ, कि हमारी सुरक्षा अपने हाथ है। ये तो एक थी, जैसे कोई चोरी हो जाती है या कभी कोई चीज खो जाती है, तो हम उसका जिम्मेदार किसी को, पहले हम खुद सावचेती से कहीं घूमने जाएं। एक चीज इसी में यही जुड़ी है कि हमारी सुरक्षा अपने हाथ है। जी हाँ, अगर हमें कहीं जा रहे हैं या हमारे संग कुछ हमें लग रहा है कि गलत होने वाला है, हमने पुलिस को इत्तला कर दी है, लेकिन उससे पहले जरूरी होता है कि हम खुद मजबूत बने। जी हाँ, पुलिस मौके पे पहुंचती है, लेकिन थोड़ा सा तो उन्हें भी समय लगता है, लेकिन वो जो समय लगता है, उस बीच का जो समय होता है, उसमें हमें अपने दिमाग से काम लेना चाहिए और अपनी सुरक्षा खुद करनी चाहिए। आजकल ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने लिए कहाँ तक शक्ति प्रदान कर सकते हैं, या फिर अपने लिए कहाँ से, एक कहते हैं ना, शक्ति ऊर्जा ला सकते हैं, वो आपको लानी पड़ती है और वो में होनी भी चाहिए। ये होती है सबसे ज्यादा व्यक्तिगत सुरक्षा। जी हाँ, व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए सबसे पहले हमें खुद ही सतर्क और जागरूक रहना चाहिए। बाहरी मदद तो मिलती है, जैसे पुलिस आएगी करेगी, वो तो मिलेगी जो मिलेगी, लेकिन खुद की समझदारी उस वक्त कहाँ तक काम आती है, ये जरूरी है। जैसे आपातकालीन संपर्क और त्वरित सहायता। भारत में किसी भी आपात स्थिति में तुरंत 112 डायल करें। महिलाओं की सुरक्षा के लिए 1091 पर महिला हेल्पलाइन पर संपर्क करें। मतलब हर चीज के लिए सुविधा दे रखी है सरकार ने, कि अगर आप कहाँ किस जगह फंस गए हो, आपके साथ कुछ गलत होने वाला है, तो आप इन नंबरों पर तुरंत डायल करके इतला दे सकते हो और अपनी सुरक्षा कर सकते हो। अगर आपातकालीन कोई जरूरी पड़ गया उस वक्त, तो आप 1112 पर तुरंत कॉल कर सकते हो। और महिलाओं को अगर जरूरत है तो अपनी सुरक्षा के लिए, तो 1091 पर वो संपर्क कर सके, अपना लाइव लोकेशन भेज सकती हैं। जी हाँ, उसकी भी सुरक्षा है। रात के समय यात्रा करते समय कैब में हो या हमेशा किसी करीबी को अपनी लाइव लोकेशन जरूर भेजनी चाहिए। मतलब ये चीजें होती है, आपकी एक समझदारी बताती है कि आप कितने समझदार हो। हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि कुछ गलत होगा नहीं, होने के लिए तो कुछ भी नहीं होता है और होने में पल में बहुत कुछ हो जाता है, तो आप उस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि हमारी जो बहनें हैं, महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, अधिकतर जॉब कर रही हैं, और जॉब का जो समय होता है वही होता है सबका, कि 10 से 5, 10 से 6, या किसी का ज्यादा होता है। तो आप घर आ रहे हैं, आप कैब में बैठे हैं, तो आपको कैब में बैठते ही अपनी लोकेशन घर वालों को भेज देनी चाहिए। कोई खास आपकी जान पहचान का, तो उसको भेज देनी चाहिए, क्योंकि आपके संग कभी कुछ गलत दुर्घटना ना हो। इन सब से बचाव के लिए आपको अपनी खुद की सुरक्षा करनी चाहिए, आपको अपनी समझदारी दिखानी चाहिए। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं ना कि बहुत ज्यादा ऐसा क्राइम होने लगा इन चीजों को, तो इन क्राइम से बचने के लिए आप अपनी खुद की सुरक्षा कर सकते हैं। और कुछ होता है कि मजबूत पासवर्ड रखें। जी हाँ, अपने सभी ऑनलाइन खातों के लिए कठिन और अलग अलग पासवर्ड का उपयोग करें। मतलब एक तरह से कह सकते हैं, हर चीज के लिए अलग अलग सुरक्षा बना रखी है। जी हाँ, आप हर चीज में अपनी सुरक्षा रखें। अब चाहे वो महिलाओं की सुरक्षा हो, चाहे चोरी की हो, चाहे साइबर धोखाधड़ी हो। हाँ जी हाँ बहनों, साइबर धोखाधड़ी से भी आप बच सकते हैं। जैसे अपना ओटीपी गोपनीय रखें, किसी को बताएं नहीं। सड़क पर और यातायात पर सुरक्षा, हमेशा यातायात के नियमों का पालन करके चलें। जी हाँ, अपनी ये सोच में ना चलें कि अपनी मस्ती में आप गाड़ी चला रहे, कुछ नहीं होगा। नहीं, आप यातायात के पालन करेंगे तो आप भी सेफ रहेंगी, अगर आपके संग कोई जा रहा है तो वो भी सेफ रहेगा। अगर देखिए, आपने देखा होगा जब आप गाड़ी चला रहे, तो जगह जगह बोर्ड लग रहा होता है कि घर पे कोई आपका इंतजार कर रहा है, तो ये बिल्कुल सही होता है कि हम कई बार सोचते हैं कि क्या होगा, देखा जाएगा, वो देखा जाता है, कुछ नहीं है। चोट लगने वाले को तो लग जाती है, लेकिन घर वालों को कितनी परेशानी होती है, कितना दुख होता है, ये हम नहीं समझ पाते। इसलिए उस समझदारी को समझने के लिए ज्यादा जरूरी है कि आप यातायात के नियमों का पालन करें, और अपनी जो ओटीपी वगैरह है वो अनजान व्यक्ति के साथ शेयर ना करें। कई बार ऐसा होता है, हम बस में, ट्रेन में कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, तो हम बहुत जल्दी दोस्त बना लेते हैं और अपना बहुत पासवर्ड बताना, ओटीपी बताना फटाफट कर लेते हैं। हम पल में किसी को नहीं पहचान सकते, इसलिए आप बस एक लिमिट तक किसी को फ्रेंड बनाइए, ठीक है, जो आपके खास। आजकल तो जो घर वाले होते हैं उनको भी नहीं बताते, क्योंकि आजकल का समय इतना ज्यादा धोखाधड़ी वाला चल रहा है, तो कोई किसी को अपना नहीं पासवर्ड बताता है। इसलिए आप इस चीज की, मतलब हर तरह से अपनी सुरक्षा कीजिए, आपकी सुरक्षा आपके हाथ है। तो
आपके साथ हमारी चर्चा ऐसी ही जारी रहेगी। लिंक सुनते जरूरी संदेश।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं। कागज
1: तो बहनों, ये तो थे हमारे कुछ जरूरी संदेश। अब चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में और सुनते हैं प्यारा सा गीत।

बहनों, अभी आपने जो प्यारा सा गीत सुना, फिल्म थी देवदास। गीत को आवाज दी थी कविता सुब्रमण्यम श्रेया घोषाल ने। जो इतनी तेज गर्मी चल रही है, भरपूर गर्मी चल रही है, इस गर्मी में सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है बहनों, वो होती है पानी की। जितनी ज्यादा गर्मी होती है, उतनी पानी की किल्लत ज्यादा बढ़ जाती है। और पानी ऐसी चीज है यार कि जिसके बिना हमारा जीवन संभव ही नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज होती है कि पानी बचाओ। अभी आप देख रहे हैं बहनों कि पर्यावरण सप्ताह चल रहा है। जी हाँ, पर्यावरण सप्ताह में हम बहुत सारी चीजों पर बात करेंगे, चर्चाएं करेंगे, जिसमें से एक है पानी बचाओ। जी हाँ, परी प्लस आवरण, जो हमारे पास का आवरण है वो हमेशा स्वच्छ रहना चाहिए, जिससे हम अपना कह सकते हैं कि अच्छा जीवन जी सकें, अच्छी हवा ले सके, अच्छा पानी पी सके। ये सब जब जरूरी है, जब हम इस पे थोड़ा सा अपना सहयोग देंगे, पानी को बचाएंगे, पेड़ों को लगाएंगे, प्लास्टिक के थैलों का यूज कम करेंगे, कचरा जो है कम से कम सोचते हैं कि कम से कम घर में कचरा हो, अगर हो तो तुरंत उसको जब कचरे वाली गाड़ी है तो उसमें फेंके, आसपास ना फेंके, आसपास सफाई रखें। ये सब चीजें आती है पर्यावरण सप्ताह के अंदर, तो उसी में से एक है पानी बचाओ। जी हाँ, पानी संरक्षण सबसे ज्यादा जरूरी है, इसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। तभी कहते हैं कि जल ही जीवन है। पानी एक चीज होती है, लेकिन इसके लाभ बहुत सारे होते हैं। आप किसी भी चीज में देख लिया, अगर बिना पानी के कोई काम होता हो तो हम ये नहीं कह सकते कि पानी के बिना हमारा जीवन चल जाएगा। एक दिन हम शायद बिना खाने के रह सकते हैं, लेकिन बिना पानी के इस भरपूर गर्मी में नहीं रह सकते। जल का हम समझे मोल, मिले सहज पर है अनमोल। जो शिक्षा होती है ना, वो हमारा ज्ञान बढ़ाती है, हमें जीवन का रास्ता दिखाती है। लेकिन जो पानी होता है ना, वो जान बचाता है। तो दोनों चीजें कितनी जरूरी है, कि जीने का रास्ता देखना है या जीवन का रास्ता देखना है, तो शिक्षा पाइए, लेकिन जीवन बचाना है तो पानी बचाइए। और एक सबसे बड़ी बात होती है कि पानी को, अब जैसे हम स्टोर करके रख रहे हैं, तो वो साफ भी होना चाहिए। आप उसमें फिटकरी डाल कर रखिए, उसको समय समय पर बॉईल करते रहिए, उसमें जो कीटाणु होंगे नीचे बैठ जाएंगे। तो पानी को साफ सुथरा रखें और स्वस्थ जगत की निशानी बनाएं। एक सबसे बड़ा किसी ने कहा है कि आप पानी बचाओ, पानी आपको बचाएगा। ये सब चीजें क्या है कि पानी बचाने की क्रिया है, और ये समझने की बातें हैं कि पानी हमारे लिए कितना जरूरी है। जल के बिना हम कुछ नहीं है। बचाओ जल तो बचेगा कल। आज हमने अगर जल को बचा लिया ना, तो हो सकता है कल हमारा बच जाए। क्योंकि अगर पानी नहीं होगा तो जीवन कैसे आगे बढ़ेगा? जीवन तो कैसे बढ़ ही नहीं सकता। तो हमें भी यही सोचना चाहिए कि शायद हमारा जीवन वहीं समाप्त है जहाँ पानी समाप्त है। जो पानी की जो इतनी किल्लत होती है, वो क्यों होती है? क्योंकि पहले हम इसका स्टोर नहीं करते, पहले हम इसको बचाते नहीं है, और बाद में हम कहते हैं कि पानी की कमी हो गई है। ये होती कहाँ से शुरू है? ये हम ही से शुरू होती है और हम ही पे आकर खत्म होती है। इसलिए जितनी जरूरत हो उतना ही पानी का यूज में लें। नहीं यूजे, अगर हमें लग रहा है कि हमारा काम हो चुका है, हमारे पानी के कैंटर सारे भर गए, तो पानी को बंद कर दीजिए। फिजूल में ये नहीं है कि अगर ज्यादा आज पानी आ गया है तो ये धोवा धाई करी, वो धो लिया, ये धो लिया, बाहर डाल दिया, गर्मी बहुत है, पानी को छिड़काव कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं करें। आज बचाएंगे तो कल हमारा जीवन बचेगा। एक दो तीन चार, पानी से ही है संसार। आज तुम जल बचाओ, कल तुम्हें वो बचाएगा। आओ हम संकल्प करें, जल बचत का क्रम करें। बूंद बूंद है सागर बने। जी हाँ, बूंद बूंद से ही सागर बनता है बहनों। इसलिए पानी की बचत कीजिए, पानी को बेफिजूल ना गिराएं। पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा, जिससे मिलाओ उस जिसमें मिलाओ लगे उस जैसा। पानी एक ऐसी चीज है, जिसमें मिलाओ वो उस रंग में ढल जाता है, यानी कि वो हर चीज में सेट हो जाता है। तो सोचिए, हमारे जीवन में तो कितना जरूरी है कि उसके बिना तो हम अपना जीवन जी नहीं सकते हैं। पानी बचाओ, भविष्य बनाओ। पानी खत्म तो जीवन हजम, जल की बचत कल के लिए सुखद। मग्गा बाल्टी गिलास, पानी बचत के पैमाने चार। जी हाँ बहनों, अगर हम नहाने भी जा रहे हैं, तो अगर हम देख रहे हैं कि अगर हमें पानी की थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो आप शावर से ना नहाएं, बास्केट बाल्टी में पानी भर कर नहाएं,
लग रहा है जरूरी है तो अपनी जो फोर व्हीलर गाड़ियां हैं, टू व्हीलर गाड़ियां, उसको साफ कपड़े से पोंछ दीजिए, ना कि उसको पाइप लेकर धोएं। जब हमें लग रहा है कि हम पानी की बचत नहीं करें तो पानी हमें कैसे बचाएगा? पहले हम दूसरों की इज्जत करें, तब अपनी इज्जत करवाएंगे ना। इसलिए हम पहले ये समझ जाएं कि हम पानी को बचाएं तो कल पानी हमारा जीवन बचाएगा। शावर से नहाएं, गाड़ियों को गीले कपड़े से पोंछ दें, पानी से धोएं ना। हाँ, अगर हमारे पास लग रहा है कि हमें थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा मिल रहा है तो पशुओं के लिए पानी भर कर रख दीजिए। कोई कंटेनर है आपके पास में या कहीं कंटेनर बने हुए हैं तो उसमें आप पानी ले जाकर रख दीजिए, क्योंकि उनके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है पानी पीना, जानवरों के लिए भी। तो ये आप एक बचत कर कर उनके लिए आप उनका जीवन सेव कर सकते हैं। तो बहनों, आपके साथ हमारी चर्चा ऐसे ही जारी रहेगी, लेकिन सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

बहनों, अभी आपने जो प्यारा सा गीत सुने, फिल्म थी फिजा, गीत को आवाज दी थी कुमार सानू, अलका याग्निक ने। बहनों, हम फिर चलते हैं अपनी चर्चा की तरफ। हम बात करेंगे कीमती चीजों का रख रखाव। जी हाँ, हमारे पास बहुत सारी कीमती चीजें होती है, लेकिन हमें कई बार उसका रख रखाव नहीं पता होता कि हम उसको कैसे सहेज के रखें, संभाल के रखें, किस चीज के साथ रखने से कौन सी चीज खराब हो जाती है। जैसे इलेक्ट्रिक चीजें हैं या सोने के आभूषण हैं, हीरे के आभूषण, उनको किस तरह उनका रख रखाव रखें कि वो सुरक्षित भी रहें, उनकी चमक भी ना जाए और ज्यादा लॉन्ग लाइफ तक वो चल सके। जी हाँ बहनों, कीमती चीजें जैसे घड़ी है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, प्राचीन वस्तुएं, इन सब का रख रखाव उनकी प्रकृति पर निर्भर करता है, ये हम सब जानते हैं। उन्हें हमेशा धूल, नमी, सीधी धूप से बचाएं। इलेक्ट्रॉनिक सामानों को उचित तापमान पर रखें। अब जैसे आभूषण और घड़ियां हैं, अलग अलग रखें। सोने चांदी और हीरों के आभूषणों को आपस में रगड़ने से बचाएं और अलग अलग मखमली डिब्बों में रखें। चांदी के गहनों को काले होने से बचने के लिए एयर टाइट बैग में रखें। परफ्यूम, मेकअप और स्प्रे के बाद ही आभूषण पहने। जी हाँ, अगर आपने परफ्यूम वगैरह लगा लिया, आभूषण अगर परफ्यूम

लगता है तो वो खराब हो जाते हैं, उन पर निशान पड़ जाते हैं ब्लैक कलर के। इसलिए जब आप परफ्यूम वगैरह लगा लें उसके बाद ही अपने आभूषणों को पहना करें। घड़ियों का रख रखाव, ऑटोमेटिक घड़ियों को वॉच पाउडर में रखें और नियमित अंतराल पर उनकी सर्विसिंग करवाते रहे। कई बार हम चीजें यूज में नहीं लेते तो उन्हें रखी रह देते, नहीं अगर आप यूज में नहीं भी ले रहे हैं और ले रहे हैं तो भी उसको आप सर्विसिंग करवाते रहिए। धूल और पानी से बचाएं, जैसे लैपटॉप कैमरे और फोन को वाटर प्रूफ पाउच में रखें। साफ सफाई के लिए माइक्रोफाइबर कपड़े का इस्तेमाल करें। बैटरी का ध्यान रखें। चमड़े के सामान जैसे धूप से बचाओ, लेदर बैग्स और जूतों को सीधी धूप में ना रखें वरना वो फटने लगते हैं। नमी से सुरक्षा, फफूंद लगने के का खतरा रहता है, इसलिए लेदर को हमेशा हवादार जगह पर रखें और समय समय पर लेदर कंडीशनर पर इस्तेमाल करें। जी हाँ बहनों, ये तो हमारी चीजों का रख रखाव। एक हमारी योजना है, सरकार समय समय बहुत सारी योजना बनाती है, एक है अटल पेंशन योजना। जी हाँ, इसकी में अटल पेंशन योजना भारत सरकार की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जो मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र में श्रमिक के लिए, इसके तहत 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 1,000 से 5,000 तक की गारंटी न्यूनतम पेंशन मिलती है। योग्यता ये है 18 से 40 वर्ष के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक जिसका बैंक या डाकघर में बचत खाता है। आवेदन आयकर दाता नहीं होना चाहिए। पेंशन राशि आप अपने योगदान के आधार पर 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 प्रति माह निश्चित पेंशन चुन सकते हैं। जी हाँ, पति पत्नी के लिए प्रावधान, ग्राहक की मृत्यु के बाद उनके जीवन साथी को वह पेंशन मिलती है। पति पत्नी दोनों की मृत्यु होने की स्थिति में जमा की विपुल राशि लगभग 8.5 लाख तक का नॉमिनी को वापस कर दिया जाता है। मतलब अगर कोई नॉमिनी है तो उसको वो राशि कर दी जाती है। तो समय समय पर सरकार बहुत सारी योजनाएं बनाती हैं जिसका हमें पता नहीं होता है, लेकिन आजकल हम ऑनलाइन सारी चीजों को

पर जो भी योजनाएं होती है हम आपको बताते रहते हैं, जिससे आप आगे से आगे उसको बताएं लोगों को और लोगों को जागरूक करें और इसका फायदा उठाएं। बस ये योजनाएं इसलिए होती है कि आपको कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आप अपने जो दैनिक जीवन में जो चीजें काम में आती है, जो दैनिक जीवन चलता है, आप उसका फायदा खुद उठा सकते हैं और अपने दैनिक जीवन में जो भी चीजों की जरूरत है उसकी पूर्ति आप खुद कर सकते हैं। इसलिए आप अपने दैनिक जीवन में जो भी चीजें चाहिए आप खुद लेके आए और उसके मालिक स्वयं बने, किसी के औरों के श्रम पर आप ना जिए। तो आपके साथ हमारी बातें ऐसे ही चलती रहती, लेकिन करें क्या, समय की घड़ी की सुइया हमें अपना प्रोग्राम यहीं रोकने के लिए कह रही है। आपकी सेवा में आपकी सखी प्रीति फिर हाजिर होगी। तब तक लीजिए नमस्कार।

एफएम बैंड 101.8 MHz पर ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। दोपहर के 2 बजने को है। अब से कुछ ही देर में अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: prior to the elections. The cabinet, under the leadership of Chief Minister Yogi Adityanath, today also cleared metro expansions in Agra and Lucknow, a 2,799 crore rupee power grid upgrade in Mirzapur, and an 855 crore rupee hospital complex at Aramel. The Election Commission has announced the schedule for the biennial elections to 16 seats of the Maharashtra Legislative Council. According to the Commission, the notification will be issued on the 25th of this month and the polling will be held on the 18th of June. The counting of votes will take place on the 22nd of June. The Model Code of Conduct has come into force with immediate effect in the concerned constituencies. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back to the Midday News. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah today flagged off a fleet of state-of-the-art Dial 112 emergency response vehicles and modern forensic mobile vans at a state-level function held in Raipur, Chhattisgarh. Chief Minister Vishnu Deo Sai, Deputy Chief Minister Vijay Sharma and State Assembly Speaker Raman Singh were also present on the occasion.
1: The Dial 112 emergency service was earlier available in only 16 districts of Chhattisgarh, but the state government has now expanded it to all 33 districts. The service has been integrated with artificial intelligence-based location tracking technology, which will help accurately identify the real-time geographical location of people in distress. Giving priority to women's safety, panic buttons and special monitoring features have also been added to the system. A total of 400 new advanced emergency vehicles, 33 special surveillance vehicles and 60 new highway patrol vehicles were flagged off today. Vikalp Shukla, Akashwani News, Raipur.
0: Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said India is progressing rapidly despite global challenges and uncertainties. Launching the website of Bharat Vyapar Mahotsav in New Delhi today, Mr. Goyal emphasized that the enthusiasm to move forward should never diminish and everyone must continue working tirelessly.
2: India-made products and services should expand even more rapidly across the world. We should not be satisfied merely because we are the world's fastest growing economy. We must never become complacent and should always think about bigger leaps forward. We need to continuously reflect on what more can be done, keep working tirelessly and keep bringing new ideas and innovations forward.
0: Indian Railways has said a detailed inquiry is underway to ascertain the cause of the fire that broke out in one of the passenger coaches at Sasaram Railway Station in Bihar. According to East Central Railways, the incident occurred at around 5:30 a.m. when smoke was detected from one of the coaches of the Sasaram Patna passenger train, which was standing at the platform. During the incident, the coach was empty and no passengers were present. Railways informed that no injuries or harm to passengers or railway staff has been reported. Delhi Chief Minister Rekha Gupta today travelled by Metro under Mera Bharat, Mera Yogdan and Metro Monday campaign to promote public transport and fuel conservation. Talking to reporters, Ms. Gupta appealed to all residents to use public transport as much as possible. She said the government is making every effort to ensure there is no inconvenience in public transport and to improve last mile connectivity.
3: We are making every possible effort from the government side to ensure that there is no difficulty in public transport. Greater focus is being placed on improving last mile connectivity. When every individual contributes even a little towards this effort, it will greatly benefit the city of Delhi. It will help provide solutions to various problems in our city, from pollution to several other challenges.
0: Delhi Metro is running 24 additional train trips today to encourage the adoption of the metro over private vehicles. Delhi Metro Rail Corporation said the decision has been taken, keeping in view the significant role of public transport in ensuring energy efficiency, economic viability, and environmental sustainability in the prevailing circumstances. U.S. President Donald Trump has warned Iran the clock is ticking as talks to bring the war to an end have stalled. The remarks come as Washington and Tehran sit locked in a test of wills, waiting to see who blinks first to end the stalemate in the war in the region. In a social media post, President Trump said time is running out and called upon Tehran to move quickly towards an agreement. Meanwhile, Iranian media has reported that the U.S. failed to make any concrete concessions in its response to Tehran's latest proposals to end the conflict. In IPL cricket, hosts Chennai Super Kings will take on Sunrisers Hyderabad at M.H. Chidambaram Stadium. The match is scheduled to begin at 7:30 p.m. In the latest standings, Sunrisers Hyderabad are currently placed third with 14 points from 12 matches, having won 7 matches so far and remain firmly in the playoff race. Chennai Super Kings are fifth with 12 points from as many matches, having registered 6 wins this season. India finished the Asian Weightlifting Championships 2026 in Gandhinagar with 10 medals, including 1 silver and 9 bronze, marking a big improvement from the previous edition in Chiangshan, where India returned without a medal. Commonwealth Games bronze medalist Lovepreet Singh delivered India's best performance on the final day by finishing fifth in the men's 110 kg+ category. The India Meteorological Department IMD has forecast heat wave to severe heat wave conditions over the plains of northwest India and central India during many days of the week. According to IMD, heat wave conditions are likely to prevail over Uttar Pradesh till Saturday. Rajasthan, Punjab, Haryana, Chandigarh and Delhi will also experience similar conditions. The weather agency predicted gradual rise in maximum temperatures by 3 to 5 degrees Celsius over northwest parts of the country. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi arrives in Oslo to hold bilateral talks with his Norwegian counterpart Jonas Gahr Støre this evening. Prime Minister Modi says his Sweden visit adds new momentum to bilateral relations as both countries agree to double trade in next 5 years. Congress leader V.D. Satheeshan takes oath as Keralam Chief Minister along with 20 cabinet ministers. West Bengal government approves 7th pay commission for state government employees. Union Home Minister Amit Shah flags off 400 emergency response vehicles in Raipur district of Chhattisgarh. And in IPL cricket, hosts Chennai Super Kings to take on Sunrisers Hyderabad this evening. With that, we end the midday news.
4: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। श्री मोदी आज शाम प्रधानमंत्री योनस गहर स्तुर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, स्वीडन यात्रा से आपसी संबंधों को नई गति मिली। दोनों देश अगले 5 वर्ष में व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने 20 मंत्रियों के साथ केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 400 आपातकालीन वाहनों को रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ओस्लो में पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। श्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गहर स्तुर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा।
5: आज प्रधानमंत्री नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गहर स्टोरर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कल प्रधानमंत्री तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वर्तमान में भारत और 5 नॉर्डिक देशों के बीच व्यापार का मूल्य $19 अरब है। व्यापार के प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार, रक्षा, ऑप्टिक और जनसंपर्क जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। संगीता गोड़बोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में ये यात्रा महत्वपूर्ण रही। संयुक्त नवाचार साझेदारी के दूसरे चरण और भारत स्वीडन प्रौद्योगिकी तथा एआई गलियारे की शुरुआत से लेकर अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने तक ये चर्चाएं अत्यंत सार्थक रहीं। उन्होंने स्वीडन की जनता, सरकार और प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन का उनके स्नेह और मित्रता के लिए आभार व्यक्त किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचाने का ये कदम भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना द्वारा निर्देशित है।
6: इस यात्रा के दौरान 6 प्रमुख उपलब्धियां सामने आई। पहली उपलब्धि रही भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना 2026-2030 को अपनाना, जो व्यापार, नवाचार, जलवायु कार्रवाई, रक्षा और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में सहयोग के लिए एक व्यापक रोडमैप प्रस्तुत करती है। दूसरी बड़ी उपलब्धि रही तकनीकी सहयोग को नई ऊंचाई तक पहुंचाना। इसके तहत ज्वाइंट इनोवेशन पार्टनरशिप 2.0 की शुरुआत की गई और स्वीडन इंडिया टेक्नोलॉजी AI कॉरिडोर यानी CTAC का विस्तार किया गया। तीसरी उपलब्धि रही एक वर्चुअल भारत स्वीडन संयुक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने पर सहमति। ये केंद्र AI, 6G, क्वांटम कंप्यूटिंग और जीवन विज्ञान जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों पर कार्य करेगा। चौथी बड़ी उपलब्धि अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य तय करना रही। पांचवी उपलब्धि रही भारत स्वीडन SME और स्टार्टअप प्लेटफॉर्म का विकास। छठी महत्वपूर्ण उपलब्धि साझा सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को नई पहचान देना रही। इसके तहत टैगोर स्वीडन लेक्चर सीरीज की शुरुआत की गई, जो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की वर्ष 1926 की ऐतिहासिक स्वीडन यात्रा की शताब्दी को समर्पित है। इन पहलों के अलावा दोनों देशों ने लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिट यानी LEADIT के तीसरे चरण की घोषणा करी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत निवेश, नवाचार और विनिर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक केंद्र बन गया है। श्री मोदी ने स्वीडन की 2 दिन की यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत पिछले 12 वर्ष से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मूल मंत्र पर काम कर रहा है। श्री मोदी ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में उपस्थिति बढ़ाने का आग्रह किया। केरलम के तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता VD सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
7: നിയമം വഴി സ്ഥാപിതമായ ഭാരതത്തിന്റെ ഭരണഘടനയോട് നിർവ്യാജമായ വിശ്വസ്തയും
4: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने UDF सरकार के 20 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नई कैबिनेट में शामिल 16 सदस्य पहली बार मंत्री बन रहे हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी के 11 प्रतिनिधि हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 5 मंत्री हैं। नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चेन्नीथला, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, के मुरलीधरन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता PK कुन्हालीकुट्टी शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह के बाद आज नई बनी सरकार ने अपनी पहली आधिकारिक कैबिनेट बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने VD सतीशन को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में केरलम की नई सरकार को हर संभव सहयोग का आश्वासन देती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार, विभिन्न सरकारी बोर्ड, निगमों और अन्य राज्य सहायता प्राप्त निकायों तथा स्कूलों के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। एक महत्वपूर्ण निर्णय में मंत्रिमंडल ने आज राज्य सरकार के सूचना और सांस्कृतिक मामलों के विभाग तथा अल्पसंख्यक और मदरसा विभाग के तहत 1 जून से विभिन्न प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को रोकने को भी सैद्धांतिक मंजूरी दी। इन विभागों के तहत छात्रवृत्ति योजनाएं जारी रहेंगी। राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए छोटी और लंबी दूरी की मुफ्त परिवहन सुविधा को भी स्वीकृत किया है। राज्य की महिलाओं के लिए 1 जून से अन्नपूर्णा योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 3,000 रुपये हस्तांतरित किए जाएंगे। एक ऐतिहासिक फैसले में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ा दी है। ग्रुप ए पदों पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 41 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। ग्रुप बी पदों के लिए यह सीमा बढ़ाकर 44 वर्ष कर दी गई है। ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 45 वर्ष है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल ने आज अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने दो प्रमुख मेट्रो प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है, जिसमें आगरा मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर के अंतर्गत स्टेशन निर्माण और एलिवेटेड सेक्शन के लिए आवश्यक भूमि का हस्तांतरण शामिल है। केंद्र, राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल निगम के बीच चार बाग से वसंत कुंज तक के पूर्वी पश्चिम कॉरिडोर के लिए लगभग 5,801 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाले त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन को स्वीकृति दी गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बावजूद भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज नई दिल्ली में भारत व्यापार महोत्सव की वेबसाइट लॉन्च करते हुए श्री गोयल ने कहा कि आगे बढ़ने का उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के प्रति भारत के उद्योगों, व्यापारिक समुदाय और लोगों में हौसला इतना मजबूत है कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को रोक नहीं सकती।
8: विकसित भारत 2047 जो प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रोत्साहित किया है अमृत काल में मेहनत करने के लिए, वो लक्ष्य बड़ा है पर भारत के उद्योग व्यापार जगत, भारत के लोगों में जो आज उत्साह है और सफलता के लिए जिस प्रकार से पूरा देश 140 करोड़ लोग एकत्र हुए हैं, मुझे लगता है कि कोई ताकत दुनिया की ना हमें रोक पाएगी ना हमारे को थम पाएगी।
4: श्री गोयल ने कहा कि भारत व्यापार महोत्सव का उद्देश्य स्वदेशी व्यापार को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि भारतीय सामान और सेवाएं पूरे देश और दुनिया भर में और भी तेजी से फैले। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस के अवसर पर महिला नाविकों के अदम्य साहस को नमन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि नीतिगत सुधारों के कारण भारत में महिला नाविकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति देश के विकास और वैश्विक समुद्री क्षेत्र को एक उज्ज्वल समावेशी भविष्य की ओर ले जा रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सार्वजनिक परिवहन और ईंधन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आज मेरा भारत मेरा योगदान में मेट्रो मंडे अभियान के तहत मेट्रो से यात्रा की। उन्होंने सभी दिल्ली वासियों से सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक उपयोग करने की अपील की।
9: हम सरकार की ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कहीं पे कोई दिक्कत ना हो, लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए और हर व्यक्ति जब थोड़ा थोड़ा भी सहयोग इसमें करेगा तो दिल्ली शहर के लिए बेहतरीन होगा। हमारे शहर में पॉल्यूशन से लेकर के हर समस्या का इसका समाधान मिलेगा।
4: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में 112 नंबर वाली आपातकालीन सेवाओं के लिए 400 नए अत्याधुनिक वाहनों को रवाना किया। छत्तीसगढ़ में पहले ये सुविधा 16 जिलों में थी, अब ये 33 जिलों में उपलब्ध है। 400 नए अत्याधुनिक आपातकालीन वाहन, 33 विशेष निगरानी वाहन तथा 60 नए राजमार्ग गश्ती वाहन प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए रवाना किए गए। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे।
1: आपातकालीन सेवा डायल 112 अभी तक छत्तीसगढ़ के सिर्फ 16 जिलों में उपलब्ध थी, लेकिन अब राज्य सरकार ने इस सेवा का विस्तार सभी 33 जिलों में कर दिया है। सुरक्षा मानकों और सहायता क्षमता को और मजबूत करने के लिए डायल 112 सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्थान पहचान तकनीक को जोड़ा गया है, जिससे संकट में फंसे व्यक्ति की वास्तविक भौगोलिक स्थिति का सटीक पता लगाया जा सके। महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इस व्यवस्था में पैनिक बटन और विशेष निगरानी सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
4: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले एजेंसी ने इस मामले में आज सुबह दीपक सिंगला के दिल्ली और गोवा में छापेमारी की। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज ट्रक और वैन की टक्कर से हुए सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। वैन में 2 महिलाओं समेत 10 लोग सवार थे। ये हादसा जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सड़क दुर्घटना में हुई जान माल की हानि पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने बताया है कि इस सप्ताह उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शनिवार तक उत्तर प्रदेश में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी का अनुमान है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरल और माहे में तेज बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। श्री मोदी आज शाम प्रधानमंत्री योनास गहर स्टोर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वीडन यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को नई गति मिली। दोनों देश अगले 5 वर्ष में व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने 20 मंत्रियों के साथ केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 400 आपातकालीन वाहनों को रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर ही आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। अब से लेकर शाम 5 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रमों को, जिन्हें आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नजरों का दामन बिछाती ये प्यार की पुकार भला कौन अनसुना करेगा। सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। तो आइए अब सुनते हैं मन की दहलीज से गुजरकर दिल के आंगन तक पहुंचता ये गीत क्या कह रहा है। तीन बहुरानिया फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजों में सुनवा रहे हैं। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीत से संवारा है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आए और अपने दोस्तों को लेकर आए।
1: सदाबहार नगमे कार्यक्रम में आप जो गाना सुनवाने जा रहे हैं वो वचन फिल्म से है, मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने गाया है, प्रेम धवन ने लिखा है और रविशंकर ने इसे संगीत से सजाया है। तो चलिए हाथों में हाथ लेकर और दिल को साथ लेकर सुनते हैं ये मीठा सा नगमा।

0: कुछ दिल तोड़ न जाना,
1: साथ कभी ना छूटे चाहे दुश्मन बने जमाना,
0: देखो जी हम छोड़ न जाना,
1: देखो जी दिल तोड़ न जाना।

मोहब्बत की ये खूबसूरत सी इल्तिजा उड़न खटोला फिल्म से आपने सुनी लता मंगेशकर की आवाज में। गीत लिखा था शकील बदायूनी ने और धुन बनाई थी नौशाद ने। और अब सुनवा रहे हैं तुमसा नहीं देखा फिल्म का गाना मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। ओपी नैयर का संगीत है, मजरूह सुल्तानपुरी का गीत है।

उनके जलों के आत्मलों के रूप के हमसे हाँ देखो कसम से कहते तुमसे हाँ उनके जलों के आत्मलों के रूप के हमसे हाँ।

कुंभ जलोगे हाथ मलोगे रूप के हमसे हाँ देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ कुंभ जलोगे हाथ मलोगे रूप के हम

अकेले कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे आत्म लोगे रूठ के हमसे हाँ, देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे आत्म लोगे रूठ के हमसे।

0: लगे कसम कसम से लो ठहर गए हम, कुछ कहो भी हमसे लो ठहर गए हम, कुछ कहो भी हमसे बन के न चलिए तन के न चलिए कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ।
1: देखा कसम से कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ।
0: देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे।

0: एक पद देती मेरा दिल ले गया, छठे मीठा मीठा हम दे गया। हाँ एक पद देती मेरा दिल ले गया, छठे मीठा मीठा हम दे गया।
1: कौन पर देसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू ले गया। ओए कौन पर देसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू ले गया।

कॉलम पर जैसे तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू ले गया। ओए कॉलम पर जैसे तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू ले गया।

0: दिल वाले कर दे ओ गोरी जरा आंखों से उजाले, ढूंढ रहे तुझे लाखों दिल वाले कर दे ओ गोरी जरा आंखों से उजाले।
1: आंखों का उजाला पर जीत ले गया, जाते जाते मीठा मीठा हम दे गया,
0: जैसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया।

0: उसको बुला दो, सामने ला दो, क्या मुझे दोगी जो तुमसे मिला दो। उसको बुला दो, सामने ला दो, क्या मुझे दोगी जो तुमसे मिला दो।
1: मेरे पास था वो सब ले गया, जाते जाते मीठा मीठा हम दे गया।
0: कौन पर देसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया।
1: एक पर देसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा हम दे गया।
2: दिल लेकर मीठा से गम का ये तोहफा देने वाला गीत आपने सुना फागुन फिल्म से। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में कमर जलाल आबादी के बोल थे और ओपी नैयर का संगीत था। और अब सुनवा रहे हैं नई दिल्ली फिल्म का गाना, किशोर कुमार की आवाज है, शैलेंद्र के बोल, शंकर जय किशन का संगीत।
3: मिलते ही नजर, मिलते ही नजर आप मेरे दिल में आ गए। अफसोस है कि आप भी मुश्किल में आ गए। मिलते ही नजर होए, मिलते ही नजर होए, मिलते

0: ले जाएंगे ये गम ही सही, ये गम ही सही, आपसे हम खुद तो पा गए, मिलते ही नजर आए, मिलते ही नजर, मिलते ही नजर, मिलते ही नजर आप मेरे दिल में आ गए।
1: आइए सदाबहार नगमे का अगला गीत सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में। भरत व्यास के बोल है एस एन त्रिपाठी की धुन, फिल्म का नाम है रानी रूपमती।

भी पुकार बोले, झांझर के झल झल झल पार बोले, जाने क्या बोले क्या बोले क्या बोले क्या बोले, वो जाने क्या बोले क्या बोले।

0: क्या बोले क्या बोले क्या बोले वो जाने क्या बोले क्या बोले क्या बोले जीवन की वीणा,
1: जीवन की वीणा पर बसता रहे यही मीठा मीठा प्राणों का राग और जीवन में छाई रहे बहार। इसी संदेश के साथ अब आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम यहीं पर संपन्न करते हैं।

0: सखी सहेली में सभी सुनने वालों को राजुल का प्यार भरा नमस्कार। और हमारे साथ हैं
1: मंजरी वर्मा। पर आपकी इस स्टाइल ने मुझे एकदम चौंका दिया कि अब क्या बोलने वाली है।
0: यही तो, इसीलिए तुम देख रहे थे ना मंजरी, लेकिन बिल्कुल सजग सतर्क बैठी थी।
1: बिल्कुल
0: नमस्कार मंजरी का भी।
1: हाँ, आपको भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और साथ में हमारी जो सखियां हमें सखा भाई सुन रहे हैं, उन सभी को भी मेरा प्यार भरा, हम दोनों की तरफ से प्यार भरा नमस्कार कह देते हैं। और आज आपके साथ काफी अरसा हो गया, जिसे कहते हैं सखी सहेली में हम लोग
0: मुद्दत हो गई।

0: दर्द हो गई जमाने में। आपसे मिलना हो ही नहीं पा रहा था, मुझे याद ही नहीं आ पा रहा था कि कब मैंने आपके साथ ड्यूटी करी थी। तो आज आपको देख कर इस मंच पर बड़ा अच्छा लगा कि फिर से हमारा आपका साथ होगा और फिर से बहुत सारी बातें होंगी।
1: तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये तो बताओ ना कि ये जो मुलाकात है ये खास बनने वाली है, तो इस खास बात में क्या क्या खास बातें हैं?
0: एक खास बात है कि उत्तर प्रदेश के व्यंजन हम लेकर के आए हैं।
1: क्या बात है?
0: जिसमें बनारस की टमाटरी चाट और छेना दही बड़ा।
1: बस बस बस, मतलब मुंह में पानी भरने का इंतजाम तुमने पहले ही कर दिया।
0: पहले ही कर दिया। मुझे याद है कि एक मेरी चीज पेंडिंग हो गई, आपको पिलानी थी लस्सी आपने बोला था। मुझे याद है, तो मैं वही सोच रही थी जब व्यंजन लेके आ रही थी, मैं सोच रही थी कि आज फिर राजू जी कोई चीज मुझे एक दे देंगी तो मेरे पास दो चीजें पेंडिंग हो जाएंगी, पिलाने खिलाने की। तो चलिए ये तो हो गई बातें हमारे व्यंजन की। इसके बाद एक विषय हमने लिया है, मोबाइल के कारण जीवन साथी से तनाव। तो ये बड़ा अच्छा सा विषय, प्यारा सा विषय है।
1: ये तो बहुत ज्वलंत समस्या है, क्योंकि ये तनाव तो घर घर गूंजने लगा है। कई बार सुनते हैं कि भाई हाँ मोबाइल में ही सब लगे हुए हैं। हाँ
0: जी।
1: और तो, आज एक खास दिन भी है
0: जी।
1: खास एक क्यों, दो दो खास
0: दिन? खास दिन है।
1: हाँ, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस है और
0: अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और कथा सुधा लेकर हम आए हैं, तो कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो, इसका भाग दो, यानी अंतिम भाग हम आज सुनेंगे।
1: बड़ी मजेदार कहानी है।
0: पिछली बार सुनी थी और आज भी हम सुनेंगे।
1: हाँ।
0: तो बड़ा अच्छा लगेगा सुनकर के। लेकिन उससे पहले राजुल जी क्यों ना एक गीत सुन लिया जाए।
1: हाँ बिल्कुल, सुनने सुनाने की इतनी बातें हो रही तो बिल्कुल गाना तो बनता है।

0: तो मंजरी कितना प्यारा सा नीरज का लिखा हुआ ये गीत सुना हमने, सचिन देव बर्मन का संगीत तेरे मेरे सपने फिल्म का, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें। और भाई इसमें शुरुआत में ही आपने कसम ले ली और कसम दे दी।
1: लेकिन वो किस चीज की थी?
0: साथ रहने की, जुदा ना होने की, और कथा सुधा में भी बराबर अपनी भागीदारी जताने की।
1: बिल्कुल। तो कथा सुधा जो हम आज सुनाएंगे तो उसके लिए एक संदेश आया है। ये लिखते हैं कि कोई दुख ना हो तो बकरी पाल लो। प्रेमचंद ने इस कहानी में मध्यम वर्गीय व्यक्ति की विवशता, उसकी कुंठा और पारिवारिक कलह को हास्य के माध्यम से बहुत खूबसूरती से प्रस्तुत किया है। नौकर और बीवी के सामने मालिक की बेबसी पाठकों को गुदगुदाती भी है और सोचने पर भी मजबूर करती है। तो भाई इतनी अच्छी सी कहानी के लिए इन्होंने लिखा है, तो क्यों ना हम लोग कथा सुधा पहले सुना देते हैं।
0: चलो सुनते हैं पहले। कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
2: कथा सुधा में आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी, कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो। पिछले भाग में आपने सुना,
3: उन दिनों दूध की तकलीफ थी। आखिर एक दिन एक दोस्त से मैंने कहा, भाई आओ साझे में एक गाय ले ले, तुम्हें भी दूध का आराम होगा, मुझे भी दूध आने लगा, रोज रोज की झंझट से मुक्ति मिली। तीसरे महीने चड्ढा का तबादला हो गया, मैं अकेले गाय न रख सकता था, गाय आधे दामों बेच दी गई। आखिर ये सलाह हुई कि एक बकरी रख ली जाए, लेकिन एक ही हफ्ते में दूध की मात्रा कम होने लगी। पंडित जी से हाल कहा तो उन्होंने कहा,
4: देहात की बकरी है, यहाँ बंधे बंधे दूध कम हो जाए तो ताज्जुब नहीं, इसे जरा टहला दिया कीजिए।
3: लेकिन शहर में बकरी को टहलाए कौन और कहां, इसलिए ये तय हुआ कि बाहर कहीं मकान लिया जाए। झटपट मकान बदला, एक काछी से तय कर लिया कि रोजाना बकरी के लिए कुछ हरियाली जाया करे, मगर इतनी कोशिश करने पर भी दूध की मात्रा में कुछ खास बढ़त नहीं हुई। मेरे खिदमतगार को बकरी लेकर बाग में जाना बुरा मालूम होता था। दूसरे दिन मैं दफ्तर से जरा जल्द चला आया और चटपट बकरी को लेकर बाग में जा पहुंचा। ये ख्याल आया, अगर सूखी पत्तियां खाने से दूध की मात्रा बढ़ गई तो यकीनन हरी पत्तियां खिलाई जाएं तो इससे कहीं बेहतर नतीजा निकले। और शाम को बकरी को साथ लेकर पत्तियां तोड़ने लगा। अचानक गाछी एक तरफ से आ निकला,
5: आपके हाथ में ये लग्गा अच्छा नहीं लगता, लाइए मैं काट देता।
3: और देखते देखते हरी पत्तियों का ढेर लगा दिया। उसने थोड़ी सी पत्तियां बगल में उठा ली और बोला,
5: चलिए मैं रख देता हूं।
3: मैंने बरामदे में पत्तियां रखवा ली, उसी पेड़ के नीचे उसकी चौगुनी पत्तियां पड़ी हुई थी। काछी ने उनका एक गट्ठा बनाया और सर पर लाद कर चला गया।

0: आइए सुनते हैं इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग।
1: दूसरे दिन बकरी को बाग में ले जाना मेरे लिए कठिन हो गया। काची फिर देखेगा और न जाने क्या क्या फिक्रें चुस्त करेगा। उसकी नजरों में गिर जाना मुंह से कालिख लगाने से कम शर्मनाक ना था। हमारे सम्मान और प्रतिष्ठा की जो कसौटी लोगों ने बना रखी है हमको उसका आदर करना पड़ेगा। नक्कू बनकर रहे तो क्या रहे, लेकिन बकरी इतनी आसानी से अपनी निर्द्वंद्व आजाद चहलकदमी से हाथ न खींचना चाहती थी, जिसे उसने अपनी साधारण दिनचर्या समझना शुरू कर दिया था। शाम होते ही उसने जोर शोर से प्रतिवाद का स्वर उठाया कि घर में बैठना मुश्किल हो गया। गिटगिरीदार मैने का निरंतर स्वर आ आकर कान के पर्दे को क्षत विक्षत करने लगा। कहां भाग जाऊं, बीवी ने उसे गालियां देना शुरू कर दिया। मैंने गुस्से में आकर कई डंडे रसीद किए, मगर उसे सत्याग्रह स्थगित न करना था न किया। बड़े संकट में जान थी, आखिर मजबूर हो गया। अपने किए का क्या इलाज। 8 बजे रात, जाड़ों के दिन, घर से बाहर मुंह निकालना मुश्किल, और मैं बकरी को बाग में टहला रहा था और अपनी किस्मत को कोस रहा था। अंधेरे में पांव रखते मेरी रूह कांपती है। एक बार मेरे सामने से एक सांप निकल गया था, अगर उसके ऊपर पैर पड़ जाता तो जरूर काट लेता। तब से मैं अंधेरे में कभी ना निकलता था, मगर आज इस बकरी के कारण मुझे इस खतरे का भी सामना करना पड़ा। जरा भी हवा चलती और पत्ते खड़कते तो मेरी आंखें ठिठुर जाती और पिंडलियां कांपने लगती। शायद उस जन्म में मैं बकरी रहा होऊंगा और ये बकरी मेरी मालकिन रही होगी, उसी का प्रायश्चित इस जिंदगी में भोग रहा था। बुरा हो उस पंडित का जिसने ये बला मेरे सिर मढ़ी। गृहस्थी भी जंजाल है, बच्चा ना होता तो क्यों इस मुझी जानवर की इतनी खुशामत करनी पड़ती। और ये बच्चा बड़ा हो जाएगा तो बात न सुनेगा, कहेगा आपने मेरे लिए क्या किया है, कौन सी जायदाद छोड़ी है। ये सजा भुगत कर 9 बजे रात को लौटा। अगर रात को बकरी मर जाती तो मुझे जरा भी दुख ना होता। दूसरे दिन सुबह से ही मुझे ये फिक्र सवार हुई कि किसी तरह रात की बेगार से छुट्टी मिले। आज दफ्तर में छुट्टी थी, मैंने एक लंबी रस्सी मंगवाई और शाम को बकरी के गले में रस्सी डाल एक पेड़ की जड़ से बांधकर सो गया। अब चरे जितना चाहे, अब चिराग जलते जलते खोल लाऊंगा। छुट्टी थी ही, शाम को सिनेमा देखने की ठहरी। एक अच्छा सा खेल आया हुआ था, नौकर को भी साथ लिया, वरना बच्चे को कौन संभालता। जब 9 बजे रात को घर लौटे और मैं लालटेन लेकर बकरी लेने गया तो क्या देखता हूं कि उसने रस्सी को 2-3 पेड़ों से लपेट कर ऐसा उलझा डाला है कि सुलझाना मुश्किल है। इतनी रस्सी भी न बची थी कि वो एक कदम भी चल सकती। लाहौल विला कुवत, जी में आया कि कमबख्त को यही छोड़ दूं, मरती है तो मर जाए। अब इतनी रात को लालटेन की रोशनी में रस्सी सुलझाने बैठे, लेकिन दिल ना माना। पहले उसकी गर्दन से रस्सी खोली, फिर उसकी पेंच दर पेंच ऐठन उसे छुड़ाया। 1 घंटा लग गया, मारे सर्दी के हाथ ठिठुर जाते थे और जी जल रहा था। वो अलग ये तरकीब और भी तकलीफ दे साबित हुई। अब क्या करूं, अकल काम ना करती थी। दूध का ख्याल ना होता तो किसी को मुफ्त में दे देता। शाम होते ही चुड़ैल अपनी चीख पुकार शुरू कर देगी और घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। और आवाज भी कितनी कर्कश और मनहूस।

0: होती है। शास्त्रों में लिखा भी है जितनी दूर उसकी आवाज जाती है उतनी दूर देवता नहीं आते। स्वर्ग की बसने वाली हस्तियां जो अप्सराओं के गाने सुनने की आदि है उसकी कर्कश आवाज से नफरत करे तो क्या ताज्जुब। मुझ पर उसकी कर्ण कटु पुकारों का ऐसा आतंक सवार था कि दूसरे दिन दफ्तर से आते ही मैं घर से निकल भागा। लेकिन एक मील निकल जाने पर भी ऐसा लग रहा था कि उसकी आवाज मेरा पीछा किए चली आती है। अपने इस चिड़चिड़ेपन पर शर्म भी आ रही थी। जिसे एक बकरी रखने की भी सामर्थ्य ना हो वो इतना नाजुक दिमाग क्यों बने। और फिर तुम सारी रात तो घर से बाहर रहोगे नहीं, 8 बजे पहुंचोगे तो क्या वो गीत तुम्हारा स्वागत न करेगा। सहसा एक नीची शाखों वाला पेड़ देखकर मुझे बरबस उस पर चढ़ने की इच्छा हुई। सपाट तनों पर चढ़ना मुश्किल होता है, यहां तो 6-7 फुट की ऊंचाई पर शाखें फूट गई थी। हरी हरी पत्तियों से पेड़ लदा खड़ा था और पेड़ भी था गूलर का, जिसकी पत्तियों से बकरियों को खास प्रेम है। मैं इधर 30 साल से किसी रुख पर नहीं चढ़ा, वो आदत जाती रही, इसलिए आसान चढ़ाई के बावजूद मेरे पांव कांप रहे थे। पर मैंने हिम्मत नहीं हारी और पत्तियां तोड़ तोड़ कर नीचे गिराने लगा। यहां अकेले में कौन मुझे देखता कि मैं पत्तियां तोड़ रहा हूं। अभी अंधेरा हुआ जाता है, पत्तियों का एक गट्ठा बगल में दबाऊंगा और घर जा पहुंचूंगा। मगर इतने पर भी बकरी ने कुछ चीं चपड़ की तो उसकी तो शामत ही आ जाएगी। अभी मैं ऊपर ही था कि बकरियों और भेड़ों का एक गोल न जाने किधर से आ निकला और पत्तियों पर पिल पड़ा। मैं ऊपर से चीख रहा था मगर कौन सुनता, चरवाहे का कहीं पता नहीं, कहीं दुबक रहा होगा, देख लिया जाऊंगा तो गालियां पड़ेगी। झल्लाकर नीचे उतरने लगा। एक एक पल में पत्तियां गायब होती जाती थी। उतरकर एक एक की टांग तोड़ूंगा, यकायक पांव फिसला और मैं 10 फीट की ऊंचाई से नीचे आ गिरा। कमर में ऐसी चोट आई कि 5 मिनट तक आंखों तले अंधेरा छा गया। खैरियत हुई कि और ऊपर से नहीं गिरा, नहीं तो यही शहीद हो जाता। बारे में मेरे गिरने के धमाके से बकरियां भागी और थोड़ी सी पत्तियां बच रही। जब जरा होश ठिकाने हुए तो मैंने उन पत्तियों को जमा करके एक गट्ठा बनाया और मजदूरों की तरह उसे कंधे पर रखकर शर्म की तरह छिपाए घर चला। रास्ते में कोई दुर्घटना नहीं हुई। जब मकान कोई 4 फल्लांग रह गया और मैंने कदम तेज किए कि कहीं कोई देख ना ले, तो वो काछी सामने से आता दिखाई दिया। कुछ ना पूछो उस वक्त मेरी क्या हालत हुई। रास्ते के दोनों तरफ खेतों की ऊंची मेड़े थी जिनके ऊपर नागफनी निकलेगा और भगवान जाने क्या सितम ढाए। कहीं मुड़ने का रास्ता नहीं, सिर झुकाकर इस तरह निकल जाना चाहता था कि कोई मजदूर है। तले की सांस तले थी, ऊपर की ऊपर, जैसे वो काछी कोई खूंखार शेर हो। बार बार ईश्वर को याद कर रहा था कि हे भगवान, तू ही आफत के मारे हुओं का मददगार है, इस मर्दूत की जबान बंद कर दे, एक क्षण के लिए उसकी आंखों की रोशनी गायब कर दे। हाँ, वो यंत्रणा का क्षण जब मैं उसके बराबर 1 गज के फासले से निकला, एक एक कदम तलवार की धार पर पड़ रहा था, शैतानी आवाज कानों में आई।
1: कौन कौन है, कौन है रे, कहां से पत्तियां तोड़े लाता है, कौन है?
0: मुझे मालूम हुआ, नीचे से जमीन निकल गई और मैं उसके गहरे पेट में जा पहुंचा हूं। रोए बरछियां बने हुए थे,

0: दिमाग में उबाल सा आ रहा था, शरीर को लकवा सा मार गया, जवाब देने का होश न रहा। तेजी से दो तीन कदम आगे बढ़ गया, मगर वो इच्छित क्रिया न थी, प्राण रक्षा की सहज क्रिया थी कि एक जालिम हाथ गट्ठे पर पड़ा और गट्ठा नीचे गिर पड़ा। फिर मुझे याद नहीं क्या हुआ, मुझे जब होश आया तो मैं अपने दरवाजे पर पसीने से तर खड़ा था, जैसे गोया मिर्गी के दौरे के बाद उठा हूं। इस बीच मेरी आत्मा पर उपचेतना का आधिपत्य था और बकरी की वो घृणित आवाज, वो कर्कश आवाज, वो हिम्मत तोड़ने वाली आवाज, वो दुनिया की सारी मुसीबतों का खुलसा, वो दुनिया की सारी लानतों की रूह कानों में चुभी जा रही थी। दीवी ने पूछा,
1: आज कहाँ चले गए थे? इस चुड़ैल को जरा बाग भी ना ले गए, जीना मुहाल किए देती है ये। घर से निकलकर कहीं चली जाऊं ऐसा लगता है।
0: मैंने इत्मीनान दिलाया, भगवान आज चिल्ला लेने दो, कल सबसे पहला काम ये करूंगा कि इसे घर से निकाल कर बाहर करूंगा, चाहे कसाई को क्यों ना देना पड़े। अरे और लोग ना जाने कैसे बकरियां पालते हैं।
1: बकरी पालने के लिए कुत्ते का दिमाग चाहिए।
0: सुबह को बिस्तर से उठकर इसी फिक्र में बैठा था कि इस काली बला से क्यों कर मुक्ति मिले, कि सहसा एक गडरिया बकरियों का एक गल्ला चराते हुए आ निकला। मैंने उसे पुकारा और उससे अपनी बकरी चराने की बात कही। गडरिया राजी हो गया, यही उसका काम था। मैंने पूछा, क्या लोगे?
2: हुजूर 8 आने बकरी मिलते हैं।
0: मैं 1 रुपया दूंगा, लेकिन बकरी कभी मेरे सामने ना आवे। गडरिया हैरत में पड़ गया।
2: मर कही है क्या बाबूजी?
0: अरे नहीं नहीं, बहुत सीधी है, बहुत सीधी है, बकरी क्या मारेगी, लेकिन मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता।
2: अभी तो दूध देती है।
0: हाँ, शेर सवा शेर दूध देती है।
2: दूध आपके घर पहुंच जाया करेगा बाबूजी।
0: तुम्हारी मेहरबानी।
2: कल से दूध पहुंचा दिया करूंगा बाबूजी।
0: जिस वक्त बकरी घर से निकली, मुझे ऐसा मालूम हुआ मेरे घर का पाप निकला जा रहा है। बकरी भी खुश थी, गोया कैद से छूटी है। गडरिये ने उसी वक्त दूध निकाला और घर में रखकर बकरी को लिए चला गया। ऐसा ग्राहक उसे जिंदगी में शायद पहली ही बार मिला होगा। 1 हफ्ते तक दूध थोड़ा बहुत आता रहा, फिर उसकी मात्रा कम होने लगी, यहां तक कि 1 महीना खत्म होते होते दूध बिल्कुल बंद हो गया। मालूम हुआ बकरी गाभिन हो गई है। मैंने जरा भी ऐतराज ना किया, काची के पास गाय थी, उससे दूध लेने लगा। मेरा नौकर खुद जाकर दूध लाता था। कई महीने गुजर गए, गडरिया महीने में 1 बार आकर अपना रुपया ले जाता। मैंने कभी उससे फिर बकरी का जिक्र ना किया। उसके ख्याल से ही मेरी आत्मा कांप जाती थी। गडरिये को अगर चेहरे का भाव पढ़ने की कला आती तो वो बड़ी आसानी से अपनी सेवा का पुरस्कार दुगना कर सकता था। एक दिन दरवाजे पर बैठा हुआ था कि गडरिया अपनी बकरियों का गल्ला लिए आ निकला। मैं उसका रुपया लेने अंदर गया कि क्या देखता हूं कि मेरी बकरी 2 बच्चों के साथ मकान में आ पहुंची। वो पहले सीधी उसी जगह गई जहां बंधा करती थी, फिर वहां से आंगन में आई और शायद परिचय दिलाने के लिए मेरी बीवी की तरफ ताकने लगी। उसने दौड़कर 1 बच्चे को गोद में ले लिया और कोठरी में जाकर महीनों का जमा चोकर निकाल लाई और ऐसी मोहब्बत से बकरी को खिलाने लगी जैसे बहुत दिनों की बिछुड़ी हुई सहेली आ गई हो। न वो पुरानी कटुता थी, न वो मनमुटाव। कभी बच्चे को चुमकारती, कभी बकरी को सहलाती थी और बकरी डाक गाड़ी की रफ्तार से चोकर उड़ा रही थी। तब मुझसे बोली,
1: अरे वाह, अरे कितने खूबसूरत बच्चे हैं।
0: हाँ, बहुत खूबसूरत।
1: ये चाहता है इनमें से एक ले लूं, पाल लूं।
0: तबीयत नहीं भरी अभी तक।
1: तुम तो बड़े निर्मल।

0: वही हो
1: जो कर खत्म हो गया। बकरी इत्मीनान से विदा हो गई। दोनों बच्चे भी उसके पीछे पीछे फुदकते चले गए। देवी जी आंख में आंसू भरे ये तमाशा देखती रही। गडरिया ने चिलम भरी और घर से आग मांगने आया। चलते वक्त बोला,
2: कल से दूध पहुंचा दिया करूंगा बाबूजी।
1: देवी जी ने कहा,
3: और दोनों बच्चे क्या पियेंगे?
1: और मुझे रात को वो मर्मांतक घटना याद आ गई। मैंने कहा, दूध लाओ या न लाओ तुम्हारी खुशी, लेकिन बकरी को इधर ना लाना। उस दिन से न वो गडरिया नजर आया, न वो बकरी, और न मैंने पता लगाने की कोशिश की। लेकिन देवी जी उसके बच्चों को याद करके कभी कभी आंसू बहाकर रोती है।
3: अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो का दूसरा और अंतिम भाग। पात्र परिचय इस प्रकार है, सूत्रधार जी श्याम, बीवी ममता सिंह, पंडित जी दीपक केसावलेकर, काची जयंत पात्रकर, काची की बीवी चंचल वर्मा, नौकर दीपक केसावलेकर, गडरिया राजेश झा, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।
4: मंजरी देखिए, एक हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि बरसों पहले हमारे पास एक बकरी थी जिसे चरवाहे के घर तक छोड़ने के लिए मैं और मेरा कजन जाते थे, लेकिन आज इस बात को 50 साल बीत गया है, ना वतन में रहते हैं ना जगह है। सूरत शहर में तो फ्लैट की 9वीं मंजिल है। अब कोई दुख तो नहीं, केवल ये दुख है कि वो बचपन समय और दादाजी पिताजी काकाजी सब चले गए, कजन के साथ ही पुरानी यादें बांटूंगा।
5: क्या बात है, और वाकई में बहुत अच्छा लगा इनका किस्सा सुन करके। और इसी के साथ समय हो चला अंतराल का, तो लेते हैं अंतराल।

0: तो राजुल जी, अंतराल के बाद सभी का एक बार स्वागत करते हुए हम
1: फिर से स्वागत है
0: जी। और हम बात करने वाले हैं विश्व एड्स वैक्सीन दिवस, जो हर वर्ष 18 मई को मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य एचआईवी एड्स के प्रति जागरूकता फैलाना है और ऐसी प्रभावी वैक्सीन के विकास के लिए वैज्ञानिकों, डॉक्टर और संस्थाओं के प्रयास को सम्मान देना है।
1: और इसकी रोकथाम के लिए, जो एड्स है इसकी रोकथाम के लिए, सुरक्षित और प्रभावी टीका खोजने की दिशा में चल रहे वैज्ञानिक अनुसंधानों को भी बढ़ावा मिले, ये भी इस दिन का उद्देश्य है
0: जी। और ये दिवस पहली बार वर्ष 1998 में मनाया गया था। इसकी प्रेरणा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के एक भाषण से मिली थी, जिसमें उन्होंने एड्स वैक्सीन विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया था।
1: दरअसल ये एक वायरस है एचआईवी, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करता है, और यदि समय पर इसका इलाज ना हो तो ये एड्स का रूप ले सकता है। लोगों में एड्स के बारे में जानकारी बढ़े, सुरक्षित जीवन शैली के बारे में वो जाने, उसे अपनाएं और वैक्सीन अनुसंधान हो ज्यादा से ज्यादा, संक्रमित लोगों के प्रति भेदभाव ना बरता जाए, क्योंकि कई बार एड्स से पीड़ित लोगों को घर में बहुत तकलीफ झेलनी पड़ती है।
0: जी बिल्कुल। और जो इसके बचाव के लिए कि आप संक्रमित सुई या ब्लेड का उपयोग ना करना है, और समय समय पर एचआईवी की जांच कराना है, अपने रिश्तों को भी अच्छे से बना के चलना है, जागरूकता और सही जानकारी इसके बारे में फैलाना जरूरी है। और संदेश ये देता है कि जागरूकता, शोध और सहयोग ही एचआईवी एड्स मुक्त भविष्य की कुंजी है।
1: और विश्व एड्स टीकाकरण दिवस 2026 का जो टॉपिक है, विषय है, वो है पुनर्विचार करें, पुनर्निर्माण करें, आगे बढ़ें। ये विषय एचआईवी वैक्सीन अनुसंधान की दिशा में जो सारे विश्व में प्रयास चल रहे हैं उनको मजबूत करता है, जन जागरूकता को बढ़ाता है, रोकथाम रणनीतियों में जो नई नई बातें आती हैं उनको भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिले, इस बात की कोशिश करता है, और स्वास्थ्य सेवा को फिर से बहाल करके एचआईवी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का पर भी बल देता है
0: जी। और इसी के साथ हम लोग गीत सुन लें।
1: हाँ, वो तो बहुत जरूरी है।

0: नयादौर फिल्म का ये मस्ती भरा गाना हमने सुना, और अब अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की बात करें।
1: बिल्कुल, मानव सभ्यता का इतिहास, संस्कृति, कला और परंपराएं किसी राष्ट्र की अमूल्य धरोहर होती हैं, और इन धरोहरों को सुरक्षित रखने और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का कार्य संग्रहालय करते हैं। संग्रहालय केवल पुरानी वस्तुओं का भंडार नहीं होते, बल्कि वे ज्ञान, शिक्षा और प्रेरणा के महत्वपूर्ण केंद्र भी हैं। इन्हीं के महत्व को समझने के लिए हर वर्ष 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जाता है।
0: और इस दिन की शुरुआत वर्ष 1977 में हुई थी, जब इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम ने इस बात का निर्णय लिया था। और इसका उद्देश्य तो यही है कि लोगों को संग्रहालयों की भूमिका और उसके महत्व के प्रति जागरूक करना। दुनिया में अनेक देशों में ये दिवस बहुत

0: उत्साह से मनाया जाता है और बहुत सारी संग्रहालयों में प्रदर्शनी भी लगाई जाती है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, कार्यशालाएं होती हैं और साथ ही साथ शैक्षिक गतिविधियां भी होती हैं।
1: बिल्कुल राजू जी, और संग्रहालय जो है वो हमारे इतिहास और संस्कृति के संरक्षक होते हैं। इनमें प्राचीन मूर्तियां, ऐतिहासिक दस्तावेज, कलाकृतियां, हथियार, वस्त्र और वैज्ञानिक खोजों से संबंधित वस्तुएं सुरक्षित रखी जाती हैं। ये हमें हमारे अतीत से जोड़ने और ये समझने में सहायता करते हैं कि मानव सभ्यता ने किस प्रकार विकास किया है। संग्रहालय जब भी हम लोग जाते हैं तो सभी को लेके जाते हैं, पिकनिक पर भी आपने देखा होगा, स्कूल वाले भी बच्चों को लेके जाते हैं। तो संग्रहालय जाने से बच्चों को ज्ञान बढ़ता है और पुरानी चीजों को देखते हैं कि क्या चीजें थी जो हम नहीं जानते, जिनके बारे में बहुत सारी जानकारियां।
0: हाँ, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं, कई संग्रहालयों में उस समय के वस्त्र,
1: जी
0: पुराने पुराने वस्त्र की, जैसे एक संग्रहालय में देखा गया कि उस समय कैसा बनारसी की या किम खाप कैसा
1: जी
0: चलता
1: जी
0: था,
1: जी
0: मलमल कैसा होता था,
1: बिल्कुल,
0: तो ये सब देखने को मिलता है, बड़ा अच्छा लगता
1: बहुत
0: है।
1: अच्छा लगता है। वजनदार चीजें जो दिखती हैं, ढाल, तलवार, ये सब कितनी वजन
0: हाँ,
1: वाली, कैसे वो
0: हथियार।
1: लेके चलते होंगे हथियार, घोड़े पर दौड़ना, लड़ाई करना, उस समय के जमाने के जो होते, वो सब देख के तो एकदम अद्भुत लगता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और आजकल की बात करें तो डिजिटल युग में संग्रहालय आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके लोगों तक अपनी पहुंच बढ़ा रहे हैं और अब ऑनलाइन प्रदर्शनियां और वर्चुअल टूर के माध्यम से लोग घर बैठे भी संग्रहालयों का अनुभव करते हैं। इसमें नई पीढ़ी में इतिहास और संस्कृति के प्रति रुचि बढ़ रही है।
0: तो ये दिन इसलिए मनाया जाता है कि हम अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षित करें, उनको
1: जी
0: संरक्षित करने के उपाय करें और जागरूक भी रहें और हमें पता रहे कि ये संग्रहालय जो है वो हमारे गौरव और पहचान के प्रतीक हैं। हमें इनका सम्मान करना चाहिए और आने वाली पीढ़ियों को इनके महत्व से परिचित कराना चाहिए। वास्तव में संग्रहालय अतीत, वर्तमान और भविष्य को जोड़ने वाली अमूल्य कड़ी है। देखो देखिए, जैसे जब हम बात करते हैं ना कि ये इनको संरक्षित करना चाहिए, तो कई बार ये कहा जाता है कि इस पर कोई भी अगर शोकेस लगा है तो उसमें अंदर जो चीजें बंद हैं वो तो चलिए सुरक्षित है, फिर भी हम उस शीशे पर बार बार हाथ
1: हैं, हाँ,
0: लगाते
1: वो
0: हैं।
1: सब नहीं करना चाहिए।
0: और कई बार जो चीजें खुले में रखी हैं उनको भी हम उठाने की कोशिश करने लगते हैं, हालांकि वो थोड़ी सी दूर पर रहती हैं और बीच में एक
1: रिंग
0: लगा
1: लगा
0: रहती है,
1: डोरी
0: हाँ,
1: लगी रहेगी,
0: डोरी लगी, जिससे कि बाधक बाधा रहे, ना पहुंचा जाए, लेकिन फिर भी लोग ऐसा करते हैं। तो ये सब
1: अच्छा
0: पुराने,
1: नहीं
0: बहुत
1: लगता
0: समय
1: है।
0: से संजो कर रखा गया
1: जी
0: है, इनको इसी तरह से हम सुरक्षित रख सकते हैं कि हम अपने हाथ वहां तक ना पहुंचाए।
1: पहुंचाएं, सही बात है। और इस तरह से हम संग्रहालय में जाके देख सकते हैं और सभी को दिखा सकते हैं, और वहां पर जो बुक्स मिलती हैं राजू जी, उनके बारे में, उनको भी आप खरीद करके ला सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं, जानकारियां अपना उपलब्ध आपको मिल जाएगी उस बुक्स
0: कई
1: से, तो बड़ा अच्छा
0: संग्रहालयों में
1: लगता है।
0: शोज भी होते हैं
1: जी
0: कि लाइट शोज होते हैं या कोई ड्रामा होता है या कोई नाटिका होती है, वो भी देखने का अगर मौका मिले तो जरूर देखिए, क्योंकि
1: बिल्कुल,
0: उससे और भी ज्यादा आपको पता लगेगा
1: बिल्कुल,
0: उस
1: करीब
0: वक्त के
1: पहुंच
0: बारे में।
1: जाते हैं, उस समय के करीब पहुंच जाते हैं,
0: बिल्कुल।
1: है ना। तो
0: और
1: चलिए
0: हम करीब पहुंच रहे हैं
1: गीत के।
0: गीत के।

रात नौजवान हो यहाँ, आज अपने प्यार पर बहार आ गई है। रात नौजवान हो यहाँ, आज अपने प्यार पर बहार

0: तो राजुल जी, अब हम व्यंजन बता देते हैं पहले। स्ट्रीट स्टाइल बनारसी टमाटर चाट जो हमने वो बताएंगे।
1: मतलब आपने ये तय कर लिया है कि जो झगड़े वाली बात है ना मोबाइल को लेके, उसको आपने टाल दिया है सबसे आखिरी के लिए।
0: हाँ,
1: चलिए चलिए, पेट भर जाएगा तो झगड़े कम होते हैं, है ना?
0: बिल्कुल, इसलिए पहले व्यंजन बता देते हैं। बनारसी टमाटर चाट, इसकी सामग्री है कि 3 लाल पके टमाटर बारीक काट लें, 2 उबले आलू मैश कर लें, 2 बड़े चम्मच देशी घी या मक्खन, आधा 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच हींग, 1 छोटा चम्मच अदरक कद्दूकस किया हुआ और 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी और 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, इतना ही आप चाट मसाला ले लीजिए, और आधा छोटा चम्मच काला नमक और सादा नमक अपने स्वाद के अनुसार लेना है, और 1 बड़े चम्मच इमली की मीठी चटनी, 1 छोटा चम्मच चीनी या गुड़, और सजाने के लिए आपको सेव, बारीक कटा हरा धनिया, पापड़ी, मछली, थोड़ा सा मक्खन लेना है। और इसकी बनाने की विधि क्या है कि तवा या कढ़ाई गर्म करें, उसमें देसी घी डालें और जीरा हींग डालकर तड़काएं, इसमें अदरक हरी मिर्च डालकर भूनें, कटे टमाटर डालें और चम्मच से दबाते हुए पकाएं, टमाटर जब गल जाए तो इसमें मैश किए हुए आलू डाल दें, और इसमें सारे जो मसाले हमने बताए थे, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, काला नमक, चाट मसाला, इमली की चटनी, थोड़ा सा गुड़, चीनी डालें, और क्योंकि खट्टा मीठा इसका स्वाद आएगा तो उसको लगातार आप चलाते रहें, और ये गाढ़ा और चमकदार जब हो जाएगा तभी आप समझ लीजिए ये आपका तैयार है। और इसको गर्मा गर्म चाट या चाट को कुल्हड़ या कटोरी में निकाल लीजिए, ऊपर से मक्खन, पापड़ी और हरा धनिया डालकर तुरंत परोसे, और बनारसी स्वाद का आप इसको मजा ले सकते हैं। और आप देशी घी या मक्खन दोनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: तो हमारे एक श्रोता ने कहा है कि बनारस गया था लेकिन चाट नहीं खाई, अब की जाऊंगा तो जरूर खाऊंगा। तो मेरे ख्याल से अब तो उन्होंने पक्का इरादा कर लिया होगा कि जरूर खाएंगे। और एक श्रोता कह रहे हैं कि बनारसी व्यंजन की बात हो रही है तो ये तो लोकप्रिय स्ट्रीट फूड है, वहां जाकर ये चाट नहीं खाई तो क्या खाई? छेना दही बड़ा ये नहीं खाया है,
0: तो बस आप
1: ये मिठाई है नमकीन,
0: ये आप पढ़ेंगे सामग्री
1: पता लग जाए। तो भाई, छेना दही बड़ा बनाने के लिए 250 ग्राम ताजा छेना या पनीर ले लीजिए, 2 बड़े चम्मच अरारोट या कॉर्नफ्लोर, 1 बड़ा चम्मच मैदा, 1 चुटकी इलायची पाउडर और तेल तलने के लिए ले लीजिए। अब दही में मिलाने है क्या क्या, 2 कप ताजा दही हो, उसमें 2-3 बड़े चम्मच चीनी, थोड़ा सा काला नमक मतलब मीठा नमकीन दोनों, भुना जीरा पाउडर, और सजावट के लिए इमली की मीठी चटनी, हरी चटनी, लाल मिर्च पाउडर और भुना जीरा लेना है, और सेब या अनार के दाने ले सकते हैं। कैसे बनाएंगे कि छेने को हाथों से अच्छी तरह मसल लें ताकि वो बिल्कुल मुलायम हो जाए। अब इसमें अरारोट, मैदा और इलायची पाउडर मिलाएं और छोटे छोटे गोल बड़े बना लें। फिर कढ़ाई में तेल गरम करें, मध्यम आंच पर बड़े सुनहरे होने तक तलें, निकालकर टिश्यू पेपर पर रख दें। अब दही को तैयार करना है तो अच्छी तरह फेंट के उसमें चीनी, थोड़ा काला नमक और भुना जीरा मिला दें। अब बड़े को हल्के गुनगुने पानी में 2 मिनट डालकर निकाल लें, ज्यादा देर तक नहीं रखें नहीं तो वो फट जाएंगे। और अब उन्हें दही में डालें, ऊपर से इमली चटनी, हरी चटनी, लाल मिर्च और जीरा पाउडर डालें। छेना जितना मुलायम होगा उतना ही आपका बड़ा स्पंजी बनेगा, और इसको इसमें हल्का सा मीठा दही ऊपर से डाल सकते हैं, चाहे तो ऊपर से किशमिश और मेवे भी डाल सकते हैं। और खास बात तो यह है कि गर्मियों में बड़ा मजा देगा ये, और त्योहारों में भी आप इसे बना सकते हैं।
0: बिल्कुल, आप जब बता रही थी तो बिल्कुल स्वाद मेरे मन में आया जा रहा था, लेकिन उसके बाद तो अब स्वाद गीतों का आ रहा है।

0: दिल की बेचैनी दुल्हन एक रात की फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे। राजा मेहंदी अली खान ने इस गीत को लिखा था और मदन मोहन ने धुन बनाई थी। और देखिए मंजरी, हम लोग जो कोई दुख ना हो बकरी पाल लो कहानी सुन रहे थे, तो हमारे एक और श्रोता ने अपना अनुभव बांटा है, हमारे साथ साझा किया है कि बचपन के दिनों में हमारे गाँव के गरड़िया अपनी बकरियों का झुंड लेकर खेतों में और जंगल में जाते थे, तो हम छुप कर किसी बकरी को पकड़ते थे और उसका दूध पलाश के पत्तों को मोड़ कर उसमें निकालते थे और खूब पीते थे।
1: बचपन की ऐसी शरारतें तो हम लोगों ने भी की हैं, लेकिन अभी हम आज बात करेंगे जो हमारे मोबाइल के कारण घर में पति पत्नी के बीच में
0: मोबाइल शरारतें
1: कर देता है। तो बस ये सुबह तो लगता है अभी वो तो सबसे पहले उठकर पतिदेव मैसेज किए जा रहे हैं, गुड मॉर्निंग मैसेज हो रही है और कुछ सुन नहीं रहे हैं, कुछ चाय वाय नहीं पीने के लिए आ रहे हैं, तो वो एक आपसी तनाव होता है,
0: झुंझलाहट
1: होती है कि अरे यार खाने के समय भी साइड में मोबाइल चल रहा है, मैसेज देखे जा रहे हैं, तो वो बड़ी समस्या होती है कि भाई खाने के समय खाना खाइए, मोबाइल चलाने के समय।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हमारे एक श्रोता लिख भी रही है कि मोबाइल और इंटरनेट का अत्यधिक उपयोग पति पत्नी के बीच तनाव और दूरियां बढ़ाने का एक प्रमुख कारण बन रहा है। इसे विशेषज्ञ टेक्नोफेरेंस नाम से कह रहे हैं। अब तो बातचीत के बीच में पति पत्नी और वो नाम से इसे संबोधित किया जा रहा है, यानी दाल भात में मुसर्जन।
1: और एक साथी लिखते हैं कि मोबाइल के कारण जीवन साथी से तनाव, इससे कोई नहीं बचा है, मेरे घर भी यही सब है, वो पास बैठे रील देखकर मुस्कुराते रहते हैं और हम चुपके से अपना काम करते रहते हैं। वाकई में आप चुपचाप काम कर रही थी, बड़ी अच्छी बात है। और एक साथी लिखते हैं कि मोबाइल ने दूर वालों को नजदीक और नजदीक वालों को दूर कर दिया है। साथ रहने वाले परिवार भी घंटों एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। दूसरा, अवगुण हैंड राइटिंग और स्पेलिंग याददाश्त का सत्यानाश कर दिया है।

0: जी
1: एक श्रोता कह रही है कि आज के समय में मोबाइल हमारी जरूरत बन चुका है, लेकिन कई बार यही मोबाइल रिश्तों में दूरियां भी बढ़ा देता है। एक समय था जब परिवार और जीवन साथी के साथ बैठकर बातें होती थी, हंसी बांटी जाती थी। अब अक्सर एक ही कमरे में साथ होकर भी लोग अपने अपने मोबाइल में खोए रहते हैं। धीरे धीरे संवाद कम होने लगता है और वहीं से तनाव जन्म लेने लगता है। रिश्ते समय और अपनापन मांगते हैं, सिर्फ ऑनलाइन मौजूदगी नहीं। कभी कभी मोबाइल को थोड़ी देर के लिए दूर रखकर अपने जीवन साथी की बातें सुन लेना, उनके साथ कुछ पल मुस्कुरा लेना फिर से रिश्तों को खूबसूरत बना देता है। तकनीक जीवन को आसान बनाए, रिश्तों को दूर नहीं, यही समझदारी है। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने,
0: बहुत अच्छी बात है। और एक हमारे साथी लिखते हैं कि जहां तक मोबाइल के कारण जीवन साथी के साथ तनाव की बात है, उसमें पति पत्नी दोनों पक्ष जिम्मेदार हैं। मोबाइल से अधिक व्यस्त रहने के कारण एक दूसरे के बीच संवादहीनता, शक और अनदेखी की भावना पैदा होने लगती है, दूरियां बन जाती है। इसे हम नजरअंदाज कहना कह सकते हैं, जो आपस के रिश्तों में तनाव और दूरियां बढ़ाने का प्रमुख कारण बनता जा रहा है। आजकल घर के हर सदस्य के पास मोबाइल होता है और समय की मांग के अनुसार ये जरूरी भी है, लेकिन इसके कारण घर के पास बैठे हुए भी मीलों की दूरी बन जाती है। सब अपने अपने मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। इस बिन डोर वाले मोबाइल से वो डोर वाला लैंडलाइन फोन अच्छा था, जो घर के सभी सदस्यों को जोड़कर रखता था,
1: एक डोर में बांधे रहता था।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात लगी। लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ भी तो हमें कदम से कदम मिलाना भी उतना जरूरी है। वाकई में ये बहुत पॉइंट अच्छा दिया है कि वो तो वहाँ डोरी के साथ बंधा है, अगर फोन आएगा तो हम उठ के जाएंगे तभी रिसीव करेंगे।
1: हाँ,
0: टाइम नहीं लगा रहेगा।
1: ये समस्या तो है, लेकिन बस यही है कि अति हर चीज की बुरी होती है। और देखिए ना, शिकायतें भी हो रही है और गीत भी चल रहा है, तो एक बैलेंस बना हुआ है ना, तो क्या करें, गीत सुन लेते हैं।

0: हमको चाहे प्यार के वादे करके निभाए, आँखों में ये ख्वाब लिए हम सारे जहां में भटका दिए हम, हाय रे दिल की कम नसीब हमको दिल मिला न किसी, रूप की कली का कैसे जीत लेते लोग।
1: भाई साजन बिना सुहागन का ये गाना पूछ रहा है कि कैसे जीत लेते हैं, और हम वही बात कर रहे हैं कि कैसे जीता जाए। तो मोबाइल में की भूमिका को जरा हाँ थोड़ा कम किया जाए तो जीत लिया जाए दिल।
2: बिल्कुल।
1: एक श्रोता कह रहे हैं कि पहले तो मोबाइल नौकरी वालों के पास ही रहा करता था, लेकिन अब तो पुरुष तो पुरुष, बहुत सारी महिलाओं के हाथों तक ये मोबाइल पहुंच चुका है, और चलाते समय बिना किसी सहायता के भी आसानी से अपनी रुचियों के हिसाब से नेट प्लेटफॉर्म्स पर कार्यक्रम देखते रहना उनके शौक भी हो गए हैं। नतीजा साफ है कि एक ही बेड पर दोनों पति पत्नी लोग अक्सर ही आवाज धीमी करने की शिकायत करते हैं, और अगर अलग अलग बेड पर सोए तो इसमें फिर आश्चर्य की क्या बात है। हाँ ये बात तो होती है ना कि सोते समय भी कोई देख रहा है, तो
2: देख रहा है।
1: तो सोते समय थोड़ा मोबाइल से दूर बरतना, दूरी बरतना अच्छा रहता है।
2: हाँ, बेड से आप दूर ही रखिए, मोबाइल मेज पे रखिए, तब आप सोइए, उसको पास रखना भी नहीं चाहिए। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि हमारी पत्नी तो रही नहीं, दोनों बहू और बेटों की तू तू मैं

0: परिवार भी छोटा हो रहा, समाज के अर्थ को भूल गए हैं। आज कोई व्यक्ति कष्ट में है तो मदद नहीं कर वीडियो बनाते हैं, आज हम अपने असली रिश्ते को भूलकर डिजिटल रिश्ते खोज रहे हैं। तो वाकई बहुत जो ज्वलंत समस्या है वो आज हमने उठाई है, और हमारे श्रोताओं ने उस समस्या को कितनी बुरी तरह से हावी हो चुकी है इस बारे में भी बताया है, लेकिन वक्त की कमी है।
1: बिल्कुल, और चलते चलते यही कहेंगे कि जिन्होंने भी ये प्रोग्राम सुना है वो इस समय जब अपने पति पत्नी साथ में हो तो मोबाइल हटा दें। और हम लोग लेते हैं फिलहाल इस कार्यक्रम से विदा। तो सभी को मंत्री वर्मा और
0: राजुल का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी, लेकर हाजिर हूं सेहतनामा कार्यक्रम में। एक और हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मीनल शाह, जो कि सुप्रसिद्ध आहार विशेषज्ञ हैं, डाइटिशियन हैं, और इनका बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के स्टूडियो में सेहतनामा कार्यक्रम में।
1: मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं सुनने वालों को भी नमस्कार करती हूँ।
0: और आज का जो हमारा विषय है, प्रोटीन और विटामिन्स का महत्व, तो डॉक्टर मीनल बताएंगी आपको इस विषय के बारे में, और आपकी ओर से मैं तमाम सवाल करना चाहूंगा। तो डॉक्टर मीनल, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे ये प्रोटीन और विटामिन्स हैं क्या, और शरीर के लिए इसकी महत्ता या इम्पोर्टेंस क्या है?
1: जी बिल्कुल राजेंद्र जी, प्रोटीन जो है वो बहुत जरूरी होता है अपने शरीर के लिए। ये एक ऐसी चीज है जो हमारे खाने में मौजूद होती है, पर ये चीज जो है, जो प्रोटीन होता है, वो आपके शरीर के लिए इतना जरूरी है कि अगर वो हम ठीक से ना ले तो हम कमजोर पड़ सकते हैं, हम बीमार पड़ते हैं, क्योंकि हमारा प्रोटीन इंटेक अच्छे से नहीं होता है। ये चीज अगर खाने से निकल जाती है तो हम बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं, और जिसकी वजह से हम बीमार पड़ने लगते हैं। हम अपना रोज का जो एक्टिविटीज है, जो रूटीन है, हम वो नहीं फॉलो कर पाते हैं। एंड अगर जोर दे इस चीज पे तो ये बहुत सिंपली अचीव किया जा सकता है, सिर्फ खाने पे थोड़ा ध्यान देने पे। और रही बात विटामिन्स की, विटामिन्स को हम एक्चुअली बोलते हैं वाइटल न्यूट्रिएंट्स। ये चीज ऐसी है जो बहुत छोटे प्रमाण में खाने में जरूरी होती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है इनको। लेकिन अगर ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाने में कम हो या ना हो तो हमारे बाकी के खाने का असर ही कम हो जाता है। इनकी मात्रा भले छोटी हो पर इनका जो इम्पोर्टेंस है, जो महत्व है, वो इतना ज्यादा है कि इनकी एब्सेंस में हमारा खाना या हमारा शरीर अपना काम नहीं कर पाता है।
0: बड़ी अच्छी जानकारी, बहुत ही सरल शब्दों में आपने सुनने वालों को बताई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, क्यों ना हम प्रोटीन और विटामिन को अलग अलग डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे कि प्रोटीन के स्रोत या सोर्सेज जो हैं वो क्या क्या हैं।
1: जी, प्रोटीन्स जो है वो खाने में बहुत सारी अलग अलग प्रकार के भी होते हैं, सोर्सेज में उसी हिसाब से बताऊंगी। प्रोटीन कंप्लीट प्रोटीन होता है, यानी जो हमारे लिए सबसे ज्यादा अच्छा है, जो

0: पूरा है, इनकम्प्लीट नहीं है, वो प्रोटीन्स अलग है और दूसरे एक टाइप के प्रोटीन जो होते हैं, एक प्रकार का प्रोटीन है, वो थोड़ा इनकम्प्लीट होता है।
1: वो कैसे?
0: वो ऐसे कि उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं, हम हमारा जो प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड्स एक बहुत छोटे ये विटामिन से उससे बनता है, तो उसमें कुछ अमाइनो एसिड्स मिसिंग होते हैं। तो पहले कंप्लीट प्रोटीन पे फोकस करते, मैं इनकम्प्लीट प्रोटीन पे वापस आऊंगी। कंप्लीट प्रोटीन्स ये है जो शरीर जब हम खाते हैं तब शरीर उसका पूरा फायदा उठा सकता है, उसमें कोई चीज छोटी नहीं है, तो ये हमें सबसे ज्यादा फायदा करता है। कंप्लीट प्रोटीन्स खाने में पहला सोर्स है दूध और दूध के पदार्थ
1: जी।
0: तो दूध हो गया, दही है, छाछ है, पनीर है, ये सारा फर्स्ट क्लास प्रोटीन यानी कंप्लीट प्रोटीन होता है,
1: जिसे हम डेयरी प्रोडक्ट्स कहते हैं।
0: यस, जिसे हम डेयरी प्रोडक्ट्स कहते हैं। और ये सारी चीजें ऐसी है जो हम बहुत आसानी से और रोज खा सकते हैं और इसका शरीर पूरा फायदा उठा सकता है, तो इसमें कुछ छूटेगा नहीं। जो इनकम्प्लीट प्रोटीन्स मैं बता रही थी ये वो चीजें हैं जिसमें कुछ मिसिंग है, कोई ऐसी चीज है जो इसमें नहीं है, और इसके लिए हमें ये कॉम्बिनेशन में खानी पड़ती है, दो चीजें साथ में खानी पड़ती है। दाल, मूंग, मटकी, चना, कड़धानिया जो बेसिकली हमारे हैं, वो है हमारा सेकेंड बेस्ट प्रोटीन यानी इनकम्प्लीट प्रोटीन,
1: जिसमें आम भाषा में या गांव में कहीं इसको कठोर कहा जाता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, कठोर या कड़धानिया जैसे हम बताते हैं। ये जो प्रोटीन है इस ये बहुत जरूरी प्रोटीन है, बट इसमें कुछ चीजें इनकम्प्लीट है, कुछ चीजें हैं जो पूरा नहीं है वो प्रोटीन, इसके लिए हमें उसके फायदे ज्यादा नहीं मिल पाते हैं। लेकिन अगर ये चीज हम कॉम्बिनेशन में जैसे बताए दो चीजें साथ में ले ले तो ये कंप्लीट हो जाता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारी खिचड़ी।
1: अच्छा,
0: जब हम दाल और चावल कंबाइन करते हैं, जब हम दाल चावल साथ में बनाते हैं या जब हम नॉर्मल दाल चावल साथ में खाते हैं, तब वो कंप्लीट प्रोटीन बन जाता है क्योंकि अनाज और कड़धान्य दोनों साथ में आए हैं। तो जो हम बेसिकली अब तक खाते आए हैं पुराने जमाने से, वो एक्चुअली बहुत अच्छी चीज है और हमें कुछ चीजें ऐसी है जो फॉलो करती रहनी चाहिए। जो इनकम्प्लीट प्रोटीन है, जो मैंने बताया प्रोटीन सोर्सेस, इसमें आपका सोयाबीन भी आ जाता है।
1: अच्छा,
0: तो पहला अगर मैं देखूं तो दूध और दूध के पदार्थ है यानी मेरे डेयरी प्रोडक्ट्स है, दूसरा मेरा सोयाबीन आ जाता है जो करीब करीब कंप्लीट है, और तीसरा है जो मेरे कड़धान्या है जो अगर मैं कॉम्बिनेशन में खाऊं तो वो उतने ही अच्छे है जितना मेरा दूध अच्छा है
1: अनाज के साथ।
0: बिल्कुल
1: जी जी।
0: और इन सब के अलावा ये सारे मेरे शाकाहारी ऑप्शंस हो गए थे, जो मांसाहार खाते हैं उनके लिए भी प्रोटीन सोर्सेस है, जो हमारा अंडा, चिकन, मच्छी ये सारा आ जाता है, ये भी अच्छे प्रोटीन्स है, ये भी कंप्लीट प्रोटीन्स है, ये दूध के बराबर आ जाते हैं, भले दूध और इसकी जो
1: सिमिलरिटी है,
0: हाँ जो प्रॉपर्टीज है ये थोड़ी डिफर करती है न्यूट्रिएंट कॉम्पोजिशन अगर देखा जाए तो, लेकिन ये कंप्लीट प्रोटीन है तो इसे भी शरीर पूरी तरह से यूज कर सकता है, इसका भी शरीर पूरा फायदा ले सकता है,
1: शरीर इसका अवशोषण कर सकता है,
0: शरीर इसका अवशोषण कर सकता है।
1: जी, आपने प्रोटीन के बारे में जो क्लासिफाइड या वर्गीकृत ढंग से समझाया बहुत ही अच्छा लगा। हम आगे बढ़ेंगे इसी विषय पर, फिलहाल हम एक संगीत की बात करेंगे और चाहेंगे आपकी पसंद का कोई गाना बजाया जाए। कौन सा गीत आपको पसंद है?
0: हम नहीं बदलेंगे, गोलमाल अगेन से।
1: हम सुनवा रहे हैं दोस्तों डॉक्टर मीनल की पसंद का ये गाना।

0: डॉक्टर मीनल, जैसे कि बात चल रही थी कि प्रोटीन के जो सोर्स हैं वो क्या-क्या हैं, आपने वर्गीकृत करके बताया था गीत बजने से पहले। हम ये जानना चाहेंगे डेयरी प्रोडक्ट्स की, जहां तक बात होती है, और बहुत सारे लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं और एक एज के बाद, 40 के बाद या 35 के बाद या आफ्टर 40, वो ये समझते हैं कि भाई ब्लॉकेज का जमाना है और ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए। तो आखिरकार जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसमें किस तरह से हम हासिल कर सकते हैं, क्या जो हृदय रोगी होते हैं या इस तरह के मरीज होते हैं उनको भी ये सोर्स काम करते हैं?
1: डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो नुकसान नहीं करते हैं, वो नुकसान तब करते हैं जब हम उसे फैट वाला ले या चर्बी वाला दूध ले। तो जरूरी नहीं है डेयरी नुकसान करेगा, डेयरी तब नुकसान करेगा जब हम वो फुल क्रीम मिल्क या भैंस का पूरा मलाई वाला दूध, वैसे दूध वाली चीजें ले तो वो नुकसान डेफिनेटली करेगा। लेकिन हमें लेना है या तो गाय का दूध या तो टोन्ड मिल्क। एक बहुत सिंपल चीज हम कर सकते हैं, जब आप दूध खरीदे मार्केट से तब सिर्फ पैकेट, आजकल पैकेट का जमाना है, पैकेट में ही दूध रहता है, तो पैकेट में सिर्फ फैट परसेंटेज पढ़ ले, वो 3.2 या 3.5 से नीचे होना चाहिए। अगर वैसे है तो वो फैट परसेंटेज जो है दूध का वो कंट्रोल में है। तो हम जब घर पे उसे गर्म करेंगे, जब वो गर्म करके ऊपर मलाई आती है, वो हल्की सी मलाई भी निकाल लेते हैं तो वो लो फैट दूध हो जाता है। तो उसके लिए हमें बाजार से स्किम मिल्क या लो फैट खरीदने की जरूरत नहीं है, हम वो चीज घर पे ही बना सकते हैं। और वो जो दूध है उसमें कैल्शियम है, उसमें अच्छा वाला प्रोटीन है, तो वो नुकसान कभी नहीं करेगा। अगर वो फुल क्रीम मिल्क है या मलाई वाला दूध है तो वो नुकसान कर सकता है।
0: अच्छा, कुछ लोग जो हैं, आपने जैसे कडधान्य और अनाज का कॉम्बिनेशन बताया था, एक मिश्रण बताया था, जैसे खिचड़ी का जो उदाहरण है वो बड़ा बेहतरीन रहा है, लेकिन कुछ लोग स्प्राउट खाते हैं, अंकुरित भोजन खाते हैं सुबह के टाइम, या तो वो कितना काम करता है?
1: वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जब हम स्प्राउट करते हैं तब उस जो अनाज है वो ज्यादा बेहतर बन जाता है। उसमें कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो वो स्प्राउट करने में और अवेलेबल हो जाते हैं, यानी शरीर उसका पूरी तरह से एब्जॉर्प्शन कर पाता है। तो वो स्प्राउट्स बहुत अच्छे हैं। सिर्फ एक चीज गलत हो जाती है कि वो स्प्राउट्स हम कच्चे लेने की कोशिश करते हैं। तो कच्चे है तो शरीर, हमारा शरीर ये नहीं कर पाता है कि कच्ची चीज है वो एब्जॉर्ब कर पाए, वो हम पूरी तरह से उसका बेनिफिट नहीं उठा पाते, फायदा नहीं उठा पाते। तो जब हम उसको थोड़ा सा भी बॉईल कर लेंगे, उबाल लेंगे या स्टीम कर लेंगे, भाप देते हैं हम जैसे, अगर थोड़ा सा भी वैसा कर लेते हैं तो वो शरीर के लिए ज्यादा फायदेमंद है, वो एब्जॉर्प्शन के लिए मदद करता है और वो हम पूरी तरह से उसका फायदा उठा सकते हैं।
0: डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी बात बताई। अच्छा, ये बताइए कि फायदे तो होते हैं, प्रोटीन जरूरी होता है, नहीं तो जैसे आपने शुरू में ही बताया कि बीमारियां घर में घुस जाती हैं शरीर में, तो शरीर का जो एक घर है इसमें बीमारियां ना घुसें, उसके लिए सुना ये भी जाता है, कई बार ये मिथ है या सच है कि प्रोटीन नुकसान भी कर देता है, वो किस अवस्था में करता है और कैसे करता है?
1: प्रोटीन नुकसान कर सकता है, ये बात सच है। लेकिन ये बात सच है जब हम जरूरत से ज्यादा प्रोटीन खाते हैं। अगर हम आज का खाने का तरीका देखें, जिस तरह से हम खाना खाते हैं, जिस तरह से हमारा रूटीन या लाइफस्टाइल हो गया है, हम जनरली प्रोटीन

0: फिर मिस कर देते हैं, या फिर हम ऐसे ही टाइप का प्रोटीन खाने की कोशिश करते हैं जो नुकसान करेगा। तो प्रोटीन फिलहाल नुकसान नहीं कर रहा है, वो फिलहाल खाने में बहुत कम है और उसे बढ़ाने पे जोर देना है। हाँ, कुछ शारीरिक कंडीशंस ऐसी है जहां पर प्रोटीन नुकसान करता है।
1: वो कौन सी?
0: जैसे किडनी के डिसीजेस होते हैं, उन केसेस में उन पेशेंट्स के लिए, उन रोगियों के लिए प्रोटीन बहुत ही कंट्रोल या नियमित होना चाहिए। उनके लिए हम एग्जैक्टली उनके हिसाब से वो प्रोटीन कैलकुलेट करते हैं और फिर उनको बताते हैं कि कितना खाना है। बट जब तक ये तकलीफ नहीं है हमारे लिए, जो नॉर्मल पेशेंट्स नॉर्मल है, जिनका नॉर्मल रूटीन चल रहा है, उन सब के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है और वो नुकसान नहीं कर सकता है।
1: बताओ, एक आहार विशेषज्ञ आप क्या प्रोवाइड करेंगी एक मरीज को जिनकी एक किडनी में यदि पथरी है, तो कितना प्रोटीन उन्हें लेना चाहिए?
0: ये वापस से एक मिथ है, ये नहीं है सच, क्योंकि पथरी जब होती है तब प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट करने का मतलब नहीं बनता है। जब हम किडनी डिसीजेस बोलते हैं तब वैसी कंडीशंस होती है जहां पे उनकी किडनियां काम नहीं कर रही है, जब वो फेलियर में जा रही है तब ये प्रॉब्लम आता है। पथरी के लिए एक ही ट्रीटमेंट है जो नई रिसर्चेस बताती है, जो नए पेपर्स आए हैं वो बताते हैं कि सिर्फ पानी पीना है उनको। जब तक वो पानी अच्छे से पी रहे हैं उनको खाने में कोई चीज परहेज नहीं करनी है।
1: प्रोटीन ले सकते हैं?
0: बिल्कुल ले सकते हैं, और जरूरी है वो ले, ताकि वो भी बीमार है, भले वो पथरी की वजह से है लेकिन उन्हें भी रिकवर करना है, तो उनको इंश्योर करना है कि जितना जरूरी है वो उतना प्रोटीन खाए। जरूरत से ज्यादा नहीं खाना है लेकिन कम भी नहीं खाना है, कम खाने की वजह से ज्यादा नुकसान होगा। उनको सिर्फ पानी पीना है अच्छे से, जब तक वो पानी अच्छे से पी रहे। इनफैक्ट सीड्स वाला भी कुछ बंद करने की जरूरत नहीं है, जो हम बोलते हैं कि बीज वाली चीजें बंद कर दो, पर वो कंडीशन के हिसाब से चेंज हो जाता है। तो इन पेशेंट्स के लिए हम बोलते हैं कि आप किसी स्पेशलिस्ट को दिखा दो, डायटिशियन से मिल लो, वो आपकी कंडीशन पहले चेक करेंगे फिर बताएंगे कि क्या रिस्ट्रिक्ट करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि ये चीजें बहुत इंडिविजुअलिस्टिक होती है, यानी एक बंदे से दूसरे बंदे वो चेंज हो जाती है।
1: जी जी, ये व्यक्तिगत क्षमताओं पर भी निर्भर करता है।
0: हाँ, और स्टोन के प्रकार पे भी डिपेंड करता है।
1: जी, बहुत ही अच्छी बात बताई। तो यहाँ गाने की कोई ऐसी गुंजाइश बनती है आपकी पसंद का कोई गाना हो जाए?
0: ये वादा रहा इस मूवी से, ये वादा रहा
1: टाइटल सॉन्ग सुनना है आपको?
0: जी बिल्कुल।
1: ऋषि कपूर ने इसमें काम किया था। हम सुनवा रहे हैं।

0: डॉक्टर साहब, गीत तो आपने बहुत अच्छा सुना दिया, ये वादा रहा, लेकिन श्रोताओं से एक वादा तो हम लेंगे कि भाई प्रोटीन की कमी मत होने दीजिए अपने शरीर में। डॉक्टर मीनल, ये बताइए कि प्रोटीन कब लिया जाना चाहिए?
1: प्रोटीन हमें पूरे दिन चाहिए, उसे लेने का आइडियली कोई समय नहीं होता है, वो हमें पूरे दिन चाहिए। हम ये बोलते हैं कि प्रोटीन आप पूरे दिन में एक साथ

0: ले सकते हो,
1: अच्छा
0: वो डिफिकल्ट हो जाता है, वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम इतना सारा एक साथ खा नहीं सकते, और खाएंगे भी तो इतना सारा शरीर एक साथ वो लोड हो जाता है एक टाइम पे, कि
1: पचा
0: इतना
1: नहीं
0: सारा
1: पाएगा।
0: पचा नहीं पाएगा, और इतना सारा पचा के एब्जॉर्ब भी हो गया तो बहुत सारा प्रोटीन एक टाइम पे आ जाता है, और फिर पूरे दिन हमारे पास कुछ नहीं होता है। तो हमेशा प्रोटीन डिवाइडेड डोसेज, मतलब पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके लेना है, एक साथ नहीं लेना है। अगर हम उसे पूरे दिन में हर एक खाने में थोड़ा थोड़ा करके बांट दे तो वो शरीर के लिए भी ज्यादा अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है, कि हम उतना वो खा पाएंगे आसानी से। अगर हम एक छोटा सा उदाहरण ले, अगर मैं किसी को बोलूं कि एक ही टाइम पे आप आधा लीटर दूध और दो कटोरी दाल और साथ में दो अंडे खा लो, तो वो कितना मुश्किल हो जाएगा।
1: ओहो, हैवी हो जाएगा।
0: बिल्कुल वो नहीं खा पाएगा, वो पॉसिबल ही नहीं है चीज। तो उसकी जगह पे अगर हम पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके ले, जैसे सुबह और शाम हमने एक एक ग्लास दूध ले लिया, दोपहर को और रात को खाने के साथ दाल ले ली, बीच में कभी या सुबह नाश्ते में अंडे ले लिए, तो वो पूरे दिन में तोड़ के प्रोटीन खाते हैं, तो वो पॉसिबल भी है, और वो तब शरीर ज्यादा आसानी से यूज कर पाएगा, शरीर को बचाने के लिए समय मिल जाता है, और उसे वो स्टोरेज में नहीं डालेगा, वो यूज करेगा, जिससे आप चुस्ती फुर्ती महसूस करेंगे। वरना होगा ये कि खा सब रहे हैं सही, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारा एक साथ खा रहे हो और शरीर वो सारी चीजें स्टोरेज में डाल देता है, क्योंकि हमें उतनी सारी चीजों की एक साथ जरूरत नहीं होती, पूरे दिन में थोड़े थोड़े करके होती है।
1: जी, तो इसका मतलब ये प्रोटीन कब लिया जाना चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा करके, विभाजित करके लिया जाना चाहिए।
0: और एक सिर्फ छोटी सी चीज ये की जा सकती है कि जब भी हम खाना खाएं, वो सुबह का नाश्ता है, दोपहर का खाना है, शाम का खाना है, या रात का खाना है, हर एक मेजर मील है जो खाने वाला टाइम है, वहां पे हम थोड़ा प्रोटीन हमेशा रखें। तो अगर हम उतना सा भी करते हैं तो जितनी हमारी प्रोटीन की जरूरत है वो भी मीट हो जाएगी, यानी हम उतना खा लेंगे प्रोटीन, और जब हम तोड़ के खाएंगे तब वो पचने में भी आसान हो जाता है।
1: अच्छा, कुछ लोगों ने अपनी डाइट को फिक्स किया होता है अकॉर्डिंग टू हेल्थ, और हेल्थ कॉन्शियस होते हैं कि भाई सुबह तो हम टाइट खा लें और लंच जो है बहुत हल्का या आधा खा लें और शाम को जो मिला खा लें। तो शाम के टाइम प्रोटीन उस दौरान किस तरह से लिया जाना चाहिए?
0: शाम को अगर हम खाना कम खा रहे हैं, ठीक है, हल्का खा रहे हैं, तो भी प्रोटीन होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं कुछ कम करना चाहूँ रात के खाने से, तो वो मेरा सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हो जाता है। मतलब अगर हम चावल खा रहे हैं तो चावल ना खाइए, पर अगर मैं स्प्राउट्स शाम को खाती हूँ तो वो अच्छी चीज है खाने के लिए, या फिर एक रोटी और थोड़ी सी दाल खा ली। तो प्रोटीन हमेशा रहना चाहिए। आपको कम करना है तो उसे सिंपल कार्ब्स जो बोलते हैं हम, यानी चावल हो गया, या अगर मैं चार रोटी खा रही हूँ तो मैं दो रोटी खाऊंगी, अगर मैं भाकरी खा रही हूँ तो मैं एक या आधी खा लूंगी, वो हम कम करेंगे चलेगा। कुछ मीठा खा रहे हो तो वो अवॉइड कर लो शाम को, चलेगा, लेकिन प्रोटीन कभी नहीं कम करना है।
1: डॉक्टर साहब, प्रोटीन बीमारी में लेना चाहिए या नहीं, या किस तरह की बीमारी में, इसका डिटेल बताइए आप।
0: ज्यादा अगर देखा जाए तो जब हम बीमार होते हैं हमें प्रोटीन लेना चाहिए। अगर हम प्रोटीन नहीं लेंगे तो हमें ठीक होने में ज्यादा टाइम लग जाएगा, दवाई अपना असर नहीं कर पाएगी, और हम जो तंदुरुस्त बनना है वो प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है। तो प्रोटीन तो बहुत जरूरी है। जैसे मैंने बताया कि कुछ ही कंडीशंस ऐसी होती हैं जहां पे प्रोटीन हमें कम करना पड़ता है, और वो टाइम पे जब स्पेशलिस्ट होते हैं वो इंटरवीन करते हैं, वो बताते हैं कि भाई अब प्रोटीन कम कर देना है। पर 90% केसेस देखा जाए तो प्रोटीन की जरूरत बहुत ज्यादा है, और ये डेफिनेटली इंश्योर करना है कि अगर हम प्रोटीन अच्छे से खाएं और जितनी जरूरत है उतनी खाएं, तो आपका रिकवरी, आपका जो ठीक होने का समय है वो जल्द से जल्द होगा, टाइम कम लगेगा आपको ठीक होने में।
1: लेकिन उन बीमारियों के बारे में भी तो बताइए कि ये पर्टिकुलर बीमारी है तो फिलहाल प्रोटीन कम कर दें और धीरे धीरे उसको बढ़ाएं।
0: जी, बीमारियां अगर देखी जाए तो दो मेजर कंडीशंस ऐसी हैं जहां पे प्रोटीन कम करने की जरूरत पड़ती है। एक है जब लिवर इन्वॉल्व है। अब इसमें हमेशा प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट करना ऐसा नहीं है, सिर्फ एक समय आएगा जब शरीर, क्योंकि वो जो टॉक्सिन्स है वो बाहर नहीं थ्रो कर पाता है, तो अमोनिया लेवल जो है शरीर में बढ़ जाता है। अमोनिया एक ऐसा टॉक्सिक प्रोडक्ट है जो बॉडी फेंक देता है बाहर, और उसमें लिवर की मदद लगती है, तो जब लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है तब वो शरीर में जमा होने लगता है। जब ये अमोनिया लेवल्स बढ़ जाते हैं तब वो एक ही कंडीशन है जहां पे हमें प्रोटीन कम करना पड़ता है, कि जितना वो प्रोटीन ज्यादा खाएंगे उतना अमोनिया का लेवल बढ़ेगा, क्योंकि प्रोटीन बाहर फेंकने का जो फॉर्म है वो एक तरह से अमोनिया के थ्रू होता है,
1: जी
0: अमोनिया और यूरिया। तो ये जब बढ़ जाता है शरीर में तब प्रोटीन कम करना पड़ता है, तब इनफैक्ट हम बहुत कम प्रोटीन देते हैं। और दूसरा है जैसे मैंने

0: बताया किडनी कंडीशंस, मतलब अक्यूट किडनी डिसीज या क्रॉनिक किडनी डिसीजेस जो होती है. अब इसमें जो क्रॉनिक किडनी डिसीज होती है उसमें एक स्टेज ऐसा होता है जब क्रिएटिन करके एक लेवल होता है शरीर में, वो बढ़ता है.
1: सीरम क्रिएटिनिन।
0: करेक्ट. तो जब ये बढ़ता है तब एक टाइम ऐसा होता है जब वो बढ़ रहा है और पेशेंट डायलिसिस पे नहीं है. ये एक टाइम पीरियड है जहां पे प्रोटीन बहुत रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, पर अगेन बहुत कम नहीं और बहुत ज्यादा भी नहीं, वो बंदे के शरीर के हिसाब से होता है, उनके वेट के हिसाब से होता है, तो वो कैलकुलेट करना पड़ता है. तो ये कंडीशंस ऐसी है जहां पे प्रोटीन कम रखना पड़ता है या मॉडरेट रखना पड़ता है, और उस पर बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि वो ना बढ़े ना कम हो.
1: अच्छा, प्रोटीन के फॉर्म चेंज कर सकते हैं, जैसे सॉलिडिटी से लेकर उसको लिक्विफाइड ढंग से ले लिया जाए।
0: बिल्कुल बिल्कुल. प्रोटीन का बेस्ट बेनिफिट ये है कि हम किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं. अगर आपकी ऐसी कोई कंडीशन है, अगर हम ऐसे बीमार है कि हम खाना ज्यादा नहीं खा पाते, तो उसको लिक्विड्स के फॉर्म में भी लिया जा सकता है. जैसे
1: जैसे दाल पिला दी जाए सूप के माध्यम से।
0: बिल्कुल दाल पिला दी जाए सूप के माध्यम से, आप सूप में पनीर क्रश करके डाल सकते हो, आप दूध मिल्क शेक्स लेते हैं वो आपका प्रोटीन हो जाता है, आप छाछ या लस्सी लेते हैं वो आपका प्रोटीन हो जाता है, आप उसमें थोड़े और ड्राई फ्रूट्स मिला दीजिए तो वो और डेंस हो जाएगा. बहुत सारे तरीके हैं जिससे प्रोटीन और डेंस बनाया जा सकता है.
1: जी, भैया बहुत सारे तरीके आपने बताए, लेकिन क्या होता है कि जब कार्यक्रम में बातचीत चलती है तो तरीकों में थोड़ा सा तालमेल होना चाहिए, थोड़ी बातचीत उसके बाद फिर संगीत। तो यहां मेरा इशारा समझ गई हैं डॉक्टर मीनल, और आप कौन सा गाना सुनवा रही हैं?
0: अब हम सुनते हैं जूली मूवी का दिल क्या करे गाना,
1: जब किसी को किसी से प्यार हो
0: प्यार.
1: जाए, बहुत
0: यस
1: ही अच्छी फिल्म थी, और गाना आपको सुनवाते हैं।

जैसे पर्वत पे घटा झुकती है, जैसे सागर से लहर उठती है, ऐसे किसी चेहरे पे निगाह रुकती है, जैसे पर्वत पे घटा झुकती है, जैसे सागर से लहर उठती है, ऐसे किसी

साहब, गीत आपने बहुत ही रोमांटिक सुनवाया और अपने दौर की बहुत ही रोमानी फिल्म रही थी जूली। आज के कार्यक्रम का जो विषय है, सब्जेक्ट है दोस्तों,

0: वह प्रोटीन और विटामिन का महत्व और इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर मीनल शाह के साथ, जो कि सुप्रसिद्ध आहार विशेषज्ञ। तो हम ये जानना चाहेंगे डॉक्टर मीनल कि विटामिन की बात अब की जाए, प्रोटीन की बात बहुत हो गई है, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं?
1: विटामिन अगर हम देखे जाए तो दो मेजर प्रकार है, दो बड़े क्लासिफिकेशंस है। एक विटामिन वो जो वाटर सोल्युबल विटामिन होता है,
0: मतलब जो पानी में घुल जाते हैं,
1: यस, जिसको एब्जॉर्ब करने के लिए, जिसको शरीर के लिए जरूरी है कि वो वाटर के माध्यम से आए, तो वो वाटर सोल्युबल विटामिन हो जाते हैं। जो दूसरे प्रकार के विटामिन है वो है फैट सोल्युबल विटामिन। तो ये विटामिन के लिए जरूरी है कि हम थोड़े मात्रा में फैट्स रखिए खाने में। तो जो फैट सोल्युबल विटामिन है, ठीक है, वो ऐसे विटामिन है जो शरीर में स्टोर हो सकते हैं, बॉडी उसे जमा करके रखा जा सकता है क्योंकि वो फैट्स के फॉर्म में स्टोर होते हैं। तो इसमें बेसिकली आ जाता है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन ई, ये मेरे फैट सोल्युबल विटामिन हो जाते हैं। जो वाटर सोल्युबल विटामिन है वो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है, ये शरीर में स्टोर नहीं किए जा सकते क्योंकि ये वाटर सोल्युबल है, ये पानी की मात्रा से अगर हम कभी ज्यादा लेते हैं तो बॉडी उसे फेंक देगा बाहर।
0: अच्छा।
1: तो ये हमें रेगुलरली लेना जरूरी बन जाता है क्योंकि फैट सोल्युबल शरीर में बैकअप हो सकता है लेकिन वाटर सोल्युबल का कोई बैकअप नहीं है, ये हमें रोज की रोज लेना है।
0: ये तो अच्छी बात बताई, अपने प्रकार भी बताए। कुल मिला के ये बात हुई कि जिस तरह से प्रोटीन की आवश्यकता शरीर को होती है उतनी ही विटामिन की भी होती है, लेकिन कई बार कुछ लोग बड़े नेचुरल ढंग से प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से भी बात करते हैं कि भाई हम तो धूप में खड़े हो जाएंगे सुबह सुबह तो विटामिन डी मिल जाएगा, तो ये कितना सच है कि उतना एब्जॉर्प्शन हो पाता है या खाना भी जरूरी है?
1: एब्जॉर्प्शन हो सकता है विटामिन डी का, एक्चुअली अगर देखा जाए तो वो सही है, हमें सनलाइट चाहिए विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन के लिए क्योंकि वो एक ऐसा न्यूट्रिएंट है, ऐसा विटामिन है जो दो तरीके से काम करता है। वो खाने से तो मिलता है लेकिन जब सनलाइट होती है तब उसका जो फॉर्मेशन है वो बदल जाता है। तो सनलाइट बहुत जरूरी है विटामिन डी के लिए और इसके लिए जरूरी है कि हम थोड़ा एक्सपोजर रखें सनलाइट में, हम थोड़ा मॉर्निंग वॉक करें या थोड़ा टहल के आए, जब अच्छी धूप हो, अच्छी धूप हो तब टहल के आए। जो हम काम करते हैं तब हम काम करने की स्थिति में होते हैं तो हम बहुत इंटेंसिव वॉक में रहते हैं पैटर्न में, एक बहुत हल्का सा मॉर्निंग वॉक, एक बहुत हल्का सा स्ट्रोल जो शांति से करे, ये जरूरी होता है विटामिन डी के लिए। तो विटामिन डी के लिए सनलाइट जरूरी है।
0: और भी जो सोर्सेस हैं विटामिन प्राप्त करने के स्रोत हैं वो क्या क्या हैं?
1: अलग अलग न्यूट्रिएंट्स, अलग अलग विटामिन और अलग अलग सोर्सेस है, और ऐसे जरूरी नहीं है कि एक चीज से एक ही विटामिन आएगा। हमारे काफी सारे खाने की चीजें ऐसी है,
0: जैसे
1: फल हो गए जिसमें एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक से ज्यादा विटामिन होते हैं, ठीक है। आपका दूध हो गया, उसमें भी प्रोटीन्स के अलावा कैल्शियम है, भले वो मिनरल्स है, विटामिन्स नहीं है, बट वो उतने ही जरूरी है जितना आपका प्रोटीन हो जाता है। खाने के बारे में ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि ये एक चीज कभी काम नहीं करेगी। अगर मैं सिर्फ प्रोटीन खा रही हूँ तो सिर्फ प्रोटीन कभी काम नहीं करेगा, अगर मैं सिर्फ विटामिन्स खा रही हूँ तो वो काम नहीं करेगा। ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ होनी चाहिए, जब तक वो कॉम्बिनेशन नहीं है तब तक आपका प्रोटीन खाने का मतलब नहीं है। इसका भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखा जाए तो अगर आपका बी कॉम्प्लेक्स विटामिन मिसिंग है खाने में से, अगर हम नहीं ले रहे वो अच्छे से रोज से, तो आपका प्रोटीन किसी काम का नहीं है क्योंकि शरीर उसको पूरी तरह से फॉर्म नहीं कर पाता है। जो रीजन है प्रोटीन खाने का वो रीजन नहीं हो पाता है कंप्लीट क्योंकि हमारे पास वो विटामिन ही नहीं है। तो ये सारे छोटी छोटी जो चीजें हैं वो अपनी खुद के फॉर्म में इंपॉर्टेंट हो जाती है। और सोर्सेज देखा जाए तो सोर्सेज भी ऐसे ही बने हैं, नेचुरली प्रकृति ने अपना काम बहुत अच्छे से करा है। तो एक अगर फल देखा जाए, एक फल में एक से ज्यादा विटामिन होते हैं, जैसे अगर हम पीले या लाल कलर के फल देखें तो उसमें विटामिन ए भी होता है, विटामिन सी भी होता है, वो कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट होता है।
0: जैसे ऑरेंज है,
1: जैसे पपाया है, इसमें मेरा विटामिन ए भी आ जाता है, विटामिन सी भी आ जाता है, मेरा नट्स है तो उसमें विटामिन ई भी आ जाता है। और अगर मैं सब्जियां लूं तो जितनी कलरफुल सब्जियां ले, तो अगर मेरी वो पर्पल कैबेज भी हो सकती है, वो मेरी हरी कैबेज भी हो सकती है, टमाटर भी हो सकते हैं, कोई भी फॉर्म ले लो, अलग अलग कलर्स, जितने अलग अलग कलर्स लेंगे उतने अलग अलग विटामिन मिलेंगे हमें। जितनी ज्यादा रंग हो गए आपके खाने में, जितने ज्यादा रंग हो गए आपके प्लेट पे, उतने ज्यादा विटामिन हमें मिल रहे हैं। वो एक बहुत आसान तरीका है ये आइडेंटिफाई करने का कि ये ना पता करने का कि हम कितने

0: अलग अलग विटामिन्स ले रहे हैं, क्योंकि विटामिन्स की जानकारी सब सबको नहीं होती है, वो उनको ही होगी जो उनके बारे में पढ़ते हैं। तो एक आम आदमी के लिए, एक पेशेंट के लिए वो जरूरी, बहुत सिंपल हिंट हो जाता है कि कलर्स रखिए, कि हम जितने अलग अलग रंगों के फ्रूट्स, जितने अलग अलग रंगों के वेजिटेबल्स खाने में रखेंगे, उतने अलग अलग विटामिन्स आप इंजॉय कर रहे हैं।
1: बराबर है। तो भाई देखिए, ये तमाम रंगों की बातें हो रही हैं, तो हमारे इस सेहतनामा कार्यक्रम का भी रंग है कि बातचीत होती है, फिर म्यूजिक होता है, और उसी को बैलेंस करने के लिए आपकी पसंद का जो अगला गीत है वो कौन सा है?
0: अगला गीत होगा है अपना दिल तो आवारा, 16 साल मूवी से
1: हम सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

इन्होंने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया, यही ना समझा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया, यही ना समझा।

0: डॉक्टर साहब, गीत वाकई में आपने बहुत अच्छा सुनवा दिया और हमारे सुनने वालों को भी पसंद आया होगा, उम्मीद है। हमारी बातचीत चल रही थी इस गीत के पहले विटामिन के सोर्सेस के बारे में, कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो उसको कंटिन्यू करते हुए हम एक प्रश्न आपको बताते हैं कि भाई ये भी एक जिज्ञासा है, विटामिन विशेष या पर्टिकुलर विटामिन की कमी जब हो जाती है तो शरीर में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, इस बारे में भी सोर्सेस के बाद आप बताइए।
1: जो विटामिन्स है, जैसे मैंने क्लासिफाई किया वाटर सोल्युबल एंड फैट सोल्युबल, तो अगर सोर्सेस देखा जाए तो एक बहुत सिंपल चीज है कि अगर विटामिन ए है तो वो मेरी आंखों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो जब मेरी आंखें ड्राई हो रही है या कमजोर पड़ रही है, अगर विटामिन ए बहुत मात्रा में कम पड़ जाए तो उससे ब्लाइंडनेस

0: या फिर नाइट ब्लाइंडनेस यानी
1: या धुंधलापन,
0: धुंधलापन वो प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, ये एक साइन है, ये एक सिम्टम है कि विटामिन्स कम है। और जो सोर्सेज अगर देखा जाए विटामिन ए के, जैसे वो फैट सोल्युबल सोर्सेज है, तो वो शरीर में स्टोर करके रखे जा सकते हैं। तो इसमें मेरे रेड येलो कलर फ्रूट्स आ जाते हैं, सब्जी आ जाती है। जितनी मेरी ब्राइट कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, जैसे पपाया हो गया, मैंगो हो गया, पाइनएप्पल हो गया, फिर ऑरेंजेस हो गए, इन सब में अच्छे खासे विटामिन्स होते हैं विटामिन ए के फॉर्म में।
1: जी जी।
0: दूसरा विटामिन जो बहुत जरूरी हो जाता है वो है विटामिन ई। अब ये भी एक फैट सोल्युबल विटामिन है जो शरीर स्टोर कर सकता है।
1: इसका क्या काम होता है?
0: ये जरूरी है आपकी स्किन के लिए। जब स्किन ड्राई होने लगती है या फिर बहुत और ये ड्राइनेस सिर्फ ऐसा नहीं कि सीजन है ठंडी का और स्किन ड्राई हो गई है, ये ड्राइनेस इतना ज्यादा बढ़ सकता है कि वो ड्राई स्किन की वजह से शरीर में इन्फेक्शन आ सकते हैं, क्योंकि स्किन त्वचा इतनी टूट जाती है कि वो इन्फेक्शन इन्वाइट करने के लिए एक बेस्ट चीज बन जाती है। तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। ये सिर्फ अच्छे दिखने वाली ड्राई स्किन की बात नहीं हो रही है, ये तब होता है जब बहुत कम विटामिन्स होते हैं शरीर में और उसकी वजह से हम बीमार पड़ने लगते हैं। तो विटामिन ई सिर्फ त्वचा के लिए, इसके लिए जरूरी नहीं होता है कि वो हम अच्छे दिखे, बट वो इसके लिए ताकि हम सेहतमंद रहे
1: जी।
0: तो विटामिन ई बेसिकली आपके नट्स में होता है ज्यादातर, तो बादाम हो गया, पीनट्स हो गया, सींग जो हम खाते हैं, ये नट्स जो है वो अच्छे खासे विटामिन के सोर्सेस है। इसके अलावा आप उसे फिश में भी पा सकते हो, तो जो मांसाहार खाते हैं उनके लिए मच्छी अच्छा सोर्स है विटामिन ई का, और नट्स है जो विटामिन ई के लिए वेजिटेरियन सोर्स है यानी शाकाहारी सोर्सेस है
1: जी।
0: ये मेजर सोर्सेस है, इसके अलावा भी काफी सारे हैं बट ये तो ज्यादा जरूरी है। और विटामिन सी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो आपका इन्फेक्शन फाइटिंग कैपेसिटी बढ़ाता है, वो आपका रोग प्रतिकारक शक्ति इंप्रूव करता है,
1: मतलब शरीर में किसी भी प्रकार का जो संक्रमण आने वाला होता है उससे हमारी सुरक्षा करता है
0: जी। और जब हम बीमार होते हैं तब वो वापस वही काम करता है, तब वो जो बीमारी है, जो कीटाणु है, उसे तोड़ने में, उसे फेंकने में मदद करता है
1: जी।
0: तो विटामिन सी आपके खटास वाली चीजों में रहती है जो सिट्रस फ्रूट्स बोलते हैं, तो इसमें मेरा ऑरेंज और मैंगो वापस आ जाता है क्योंकि वो सिट्रस भी है, पपाया टू एन एक्सटेंट, कीवी आ जाता है, तो जितने भी खटास वाले फ्रूट्स
1: है,
0: नींबू, मौसम्बी, पेरू जो सीजन में पूरे 12 महीने मिलता है, गुआवा जिसे हम बोलते हैं, ये सारा फ्रूट्स है जो विटामिन सी के लिए बहुत अच्छा है। सब्जियों में भी एक परसेंटेज ऑफ विटामिन सी होता है। अगर हम बेस्ट एग्जांपल ले तो ड्रमस्टिक्स जो सींग होती है उसमें भी विटामिन सी का अच्छा खासा परसेंटेज होता है। इसके अलावा एक सिंपलेस्ट चीज देखी जाए तो मिर्ची, मिर्ची में अच्छा खासा विटामिन सी होता है, हरी मिर्च में। तो ये चीजें है हमारे पास, सिर्फ हम उसका इस तरह से इस्तेमाल नहीं करें कि वो विटामिन सी के लिए हेल्प करे
1: जी। जी। और देखिए आहार जो आपने बताया है कि पर्टिकुलर फलों को खाने से, सब्जी के खाने से ये पूर्तियां होती है, लेकिन विटामिन की जो मात्रा है कई बार ज्यादा भी हो जाती है, ये भी आपके मरीजों में आपने देखा होगा
0: जी। ये होता है कुछ मरीजों में, बट ये तब होता है जब विटामिन का उन्होंने कोई एक्स्ट्रा या दवाई ली हो उसे ठीक करने के लिए।
1: अच्छा।
0: क्योंकि अगर हम बी कॉम्प्लेक्स विटामिन देखे जाए तो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन वाटर सोल्युबल होते हैं, जैसे मैंने बताया वो शरीर स्टोर नहीं कर सकता है, तो टॉक्सिसिटी का तो सवाल ही नहीं होता है। और रही बात फैट सोल्युबल विटामिन की, तो वो तब बढ़ जाता है जब हम कोई करेक्टिव डोसेज ले रहे हैं या हम कोई चीज जरूरत से ज्यादा खा रहे हैं। जैसे कुछ हेल्थ कॉन्शियस लोग होते हैं जो हेल्थ कॉन्शियस होने के रीजन से या कारण से जरूरत से ज्यादा फ्रूट्स या विटामिन्स खाने की कोशिश करते हैं, वो मल्टीविटामिन भी ले सकते हैं या फिर फ्रूट्स भी भरपूर मात्रा में खा रहे हैं, या फिर वैसी कोई चीज नट्स हो गया जिसे भी वो समझते हैं कि वो सेहत के लिए अच्छी है, पर जब आप जरूरत से ज्यादा खाओगे तब वो नुकसान करेगा। तो वो टॉक्सिसिटी पाई गई है बहुत कम केसेस में, लेकिन डेफिनेटली एक प्रॉब्लम है। इसके लिए हम बोलते हैं कि जरूरत से ज्यादा कोई चीज कभी नहीं खानी चाहिए, हर चीज रोटेशन पे रखो, हर फ्रूट्स हर सब्जी रोटेशन पे रखो, जितना आप उसे अलग अलग चीजें खाएंगे अलग अलग समय पे उनके अलग अलग बेनिफिट्स मिलेंगे।
1: तो बातचीत का जो तालमेल है वो यहाँ थोड़ा सा विराम देंगे और संगीत को यहाँ पर उभारेंगे आपकी पसंद के गाने के जरिए,
0: इश्क बुलावा हसी तो फसी पिक्चर से।

0: विटामिन की बात चल रही थी, एक आपने कहा था कि विटामिन की जो अधिकतम मात्रा हो जाती है तो वो नुकसान भी करती है, और वैसे कहा जाता है ना कि अति किसी भी चीज की हो वो नुकसान ही करती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो बात आती है बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट, आप संतुलित आहार लीजिए, स्वस्थ रहेंगे।
1: जी, संतुलित आहार जो होता है, बैलेंस डाइट जिसे हम बोलते हैं, बेसिकली अगर हम आम आदमी के लिए देखा जाए तो एक पांच चीजों से बनता है। सिर्फ ये पांच चीज अगर आपके खाने में है तो आपका आहार संतुलित है, ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म में कही जा सकती है। वो पांच चीजें क्या है? पहला है आपका अनाज, तो आप चावल ले लीजिए या गेहूं ले लीजिए या ज्वारी बाजरी ले लीजिए, आप जो खाते हो वो खाइए, पर अनाज होना चाहिए खाने में जब आप खाना खाते हो, ठीक है। कड़धान्य, जैसे मैंने बताया वो भी इम्पोर्टेंट प्रोटीन हो जाता है, तो कठोर हो गया, दाल हो गई, स्प्राउट्स हो गए, ये आपका सेकेंड इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक है। तीसरा है आपकी सब्जियां,
0: कोई भी सब्जी हो,
1: कोई भी सब्जी हो, और वो सब्जी के फॉर्म में भी हो सकती है और सलाद के फॉर्म में भी हो सकती है।
0: क्या बात है,
1: तो सब्जियां होनी चाहिए, आप जैसे मर्जी आए वो खा लो, बट ये जरूरी है, इसमें विटामिन्स भी है और आपका फाइबर भी है जो आपके खाने के लिए बहुत जरूरी है। तीसरा हो गया आपका प्रोटीन सोर्स जो पल्सेस नहीं है, यानी आपका दही, छाछ, जो मांसाहार खाते हैं उनके लिए चिकन, ये सारी चीजें मेरा चौथा कंपोनेंट है। और आ जाता है मेरा फैट, यानी ऑयल या चर्बी जो होती है। नाउ फैट्स जो है वो बेसिकली इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारे विटामिन्स बिना फैट के किसी काम के नहीं है, और फैट्स बुरे नहीं है, ये हमें ताकत भी देते हैं, तो जब हम सही टाइप के फैट्स चूज करें तब वो नुकसान नहीं करेगा, तब वो फायदा करेगा। तो ये जब कंपोनेंट्स है, मैं ये सारा सिंक में लेती हूँ, और इसके साथ एक और बहुत जरूरी चीज है, वो है पानी, जिसे हम ज्यादातर ओवरलुक कर लेते हैं, जिसे हम ज्यादातर दुर्लक्ष करते हैं, जिसे हम ज्यादातर ध्यान नहीं देते हैं, तो पानी एक बहुत जरूरी चीज बन जाती है जो मेरे डाइट का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो जब तक ये चीजें, पांचों चीजें बैलेंस में रह रही है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर, तब तक हम गड़बड़ नहीं कर रहे, हम परफेक्टली डाइट फॉलो कर रहे हैं। फिर आप उसमें रोटी सब्जी ले लो, या फिर आप उसमें भाकरी ले लो, या आजकल मॉडर्न जमाना है, पास्ता एंड पिज्जाज का जमाना है, तो वो पास्ता एंड पिज्जाज भी बहुत संतुलित बनाए जा सकते हैं। सिर्फ थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि हम आग बंद करके ये फॉलो ना करें जो इंटरनेट पे पढ़ते हैं, पर हम खुद की समझ लगाए इस चीज के पीछे
0: कितनी हमें आवश्यकता है।
1: बिल्कुल।
0: अच्छा, एक यहाँ पर बैलेंस डाइट की बात चल रही, तो एक कॉमन सी बात है कि हम लंच में जब लेते हैं तो सलाद पहले खाना चाहिए और पानी बहुत देर से पीना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या?
1: एक तरीके से हाँ, सलाद पहले इसलिए खाना है वो करेक्ट है, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि सलाद हम जब पहले खाते हैं तब हम फाइबर इंश्योर करते हैं जो हमारे खाने के लिए बहुत जरूरी है, और फिर हमें जितनी भूख होगी हम उतनी ही खाएंगे, तो ये हमें ज्यादा खाने से भी रोकता है, और ये ज्यादा जरूरी उन पेशेंट्स के लिए हो जाता है, उन रोगियों के लिए हो जाता है जिनको शुगर की तकलीफ है, डायबिटीज, उनके लिए ये चीज बहुत काम करती है, उनके लिए भी ये चीज बहुत काम की है जिनको वजन कम करना है
0: जी,
1: तो उनके लिए ये फाइबर बहुत जरूरी हो जाता है, और खाने से पहले इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, इसकी जरूरी वो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है। और पानी खाने के बाद इसके लिए लेना बोलते हैं कि पानी पी के आप पेट भर लोगे तो कुछ नहीं खाओगे, और प्लस वो एक टू एक्सटेंड एक तरीके से वो आपका विटामिन्स या मिनरल्स या खाना जो आपने खाया है उसको डाइल्यूट कर देता है, तो जो एसिड्स है स्टमक के वो उनको डिफिकल्ट बना देता है कि वो चीजें पचा दे, क्योंकि वो डाइल्यूट हो गई, डिसॉल्व हो गई है। तो जनरली हम बोलते हैं खाने के साथ ज्यादा पानी ना पिए, मना नहीं है, लेकिन हो सके तो खाने के बाद अच्छे से पानी पी लीजिए या खाने से पहले लीजिए, तो वो पहले वापस वही काम करेगा जो मेरा सलाद करता है, वो मेरा पेट भर देगा, तो मैं ज्यादा नहीं खाऊंगी, लेकिन खाने के दौरान थोड़ा कम रखे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
0: डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी बात बताई आपने कि किस तरह से संतुलित आहार को डिफाइन किया आपने, सरल भाषा में परिभाषित किया, और बहुत सारे भ्रम भी तोड़े कि ऐसा नहीं है। अच्छा, अब हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि कोई व्यक्ति अगर अपनी डाइट ले रहा है पर्टिकुलर बीमारी के दौरान, तो और जैसे डायबिटीज के मरीज हैं, हृदय रोगी हैं, किडनी के रोगी हैं, पर्टिकुलर जो इस तरह के रोगी हैं, वो अपना आहार लेते हैं तो उसमें प्रोटीन और विटामिन की पूर्ति किस तरह से की जाए, वो चिकित्सक की सलाह से की जाए या स्वयं ही अपने आहार से ली जाए?
1: हम स्वयं ये कर सकते हैं जब तक हम बीमार नहीं है। अगर आप बीमार हो तो आपको चिकित्सक की जरूरत है, पर अगर आप ठीक हो,
0: जैसे बीपी की गोलियां चल रही है,
1: तो मिलना जरूरी है, एक बार मिलना जरूरी है, आपको रेगुलर विजिट्स या कंसल्टेशंस की जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन एक बार मिलकर समझना जरूरी है कि आपके लिए क्या जरूरी है और क्या नुकसान कर सकता है। काफी बार हम चीजें खाते हैं ये सोच के कि ये हमें फायदा कर रहा है, या ये चीजें हम अवॉइड कर दे रहे, जैसे आपने मेरे को पहले पूछा था कि दूध हम मना कर देते हैं क्योंकि दूध में चर्बी है ये कंस्ट्रक्ट करके, बट अगर वो गाय का दूध है तो उसमें इतनी चर्बी नहीं है, और
0: या फिर वो बिना मलाई का दूध,
1: एग्जैक्टली, अगर वो बिना मलाई का दूध है तो उसमें इतनी चर्बी नहीं है। तो हर चीज के लेने का तरीका होता है, वो एक बार समझना बहुत जरूरी है। एक बार आप वो समझ ले फिर आप खुद से चीजें कर सकते हो, लेकिन क्या सही है क्या गलत ये पहले जानना, और वो भी किसी चिकित्सक से या किसी डायटिशियन से जानना जरूरी है क्योंकि वो उन्हें पता है, वो क्वालिफाइड पीपल है, वो इंटरनेट से पड़ी हुई जानकारी या फिर सुनी सुनाई बातें नहीं बोलते हैं, उन्हें उस चीज का नॉलेज है, उस चीज की इंफॉर्मेशन रहती है।
0: और ये भी नहीं करना चाहिए कि उस व्यक्ति को ये सूट करता है तो मुझे भी करेगा,
1: बिल्कुल,
0: व्यक्ति व्यक्ति पर डिपेंड करता है,
1: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति अलग होता है, उनका शरीर अलग होता है,
0: उसकी प्रकृति अलग होती है,
1: उसकी प्रकृति अलग होती है, और एज के हिसाब से भी चीजें चेंज हो जाती है। आपकी एज और दूसरे बंदे की एज में भी अगर समानता भी है तो मेडिकल कंडीशंस अलग हो जाती है, उनके काम करने का तरीका, उनके रहने सहने का तरीका, हर एक इंसान अलग है, उनकी जरूरतें अलग है, वो एक चीज पे नहीं मानते।

0: भी जा सकती।
1: hmm.
0: और अगर सिंपल चीजें देखी जाए कि हम क्या करें ये चीजें एंश्योर करने के लिए, तो दो तीन सिंपल रूल्स अगर हम फॉलो कर ले तो वो बहुत मदद करेगा। तो सिंपल रूल्स में ये रख सकते हैं कि जैसे विटामिन अगर हमें चाहिए कि हम रोज खाएं, तो एक नियम ये बना लीजिए कि रोज खाने में सलाद खाएं और अलग अलग कलर्स के सब्जियों वाला सलाद खाएं, तो हमारे अलग अलग विटामिन आ जाएंगे। रोज दो फल खाएं, सीजन्स के हिसाब से फल चेंज करें, क्योंकि हर फल का अपना इंपॉर्टेंस होता
1: है। जैसे गर्मी का मौसम है तो कौन से फल प्रेफर करने चाहिए?
0: आम, गर्मी के मौसम में सबसे अच्छा आम रहेगा, और आम अच्छा है जब हम कंट्रोल में खाएं। कुछ ही ऐसे रोगी होते हैं जिनके लिए वो नुकसान करता है, तो जैसे मैंने बताया रोगियों के लिए तो चिकित्सक या डाइटिशियन की सलाह लगेगी
1: जी,
0: बट हमारे लिए वो बहुत अच्छा है, उसमें अच्छे खासे विटामिन है। तो वाटरमेलन भी अच्छा है, गर्मी में अभी वाटरमेलन की भी सीजन है तो वो भी खा सकते हो। तो जैसे जैसे आपकी सीजन चेंज होगी वैसे वैसे आपके फल चेंज होने चाहिए, और जितना हो सके उतना सीजन को फॉलो करिए। ऐसा नहीं कि कोई चीज प्रिजर्व्ड है और मेरे को आम अगर गर्मी की सीजन छोड़ के अगर ठंडी की सीजन में मिलने लगे तो मैं आम चूज करूंगी, तो वैसा नहीं करना। उसे जितना हो सके फ्रेश लाइए, हमें प्रोसेस्ड या प्रिजर्व फूड नहीं चाहिए। और तीसरा ये किया जा सकता है कि प्रोटीन इंश्योर करने के लिए हर एक मील में जब भी हम खाना खाएं, बी इट ब्रेकफास्ट या दोपहर का खाना या शाम का खाना या रात का खाना, तो उसमें प्रोटीन का एक सोर्स, एक खाने की ऐसी चीज तो कम से कम रखनी है। एक से ज्यादा हो सकती है पर एक से कम नहीं करना है। जब हम थोड़ा थोड़ा करके पूरे दिन में खाएंगे तब हमारी जरूरत पूरी होगी, तब तक हमारी जरूरत नहीं पूरी होने वाली है।
1: वक्त हो चला है कि कार्यक्रम को समापन की ओर मोड़ दिया जाए, कि चलते चलते समापन के पहले अपनी ओर से आप हमारे सुनने वालों को एक क्या मैसेज देना चाहेंगी?
0: छोटे से ड्यूरेशन में ये सुना कि प्रोटीन्स इंपॉर्टेंट है, विटामिन्स इंपॉर्टेंट है, सोर्सेज इंपॉर्टेंट है, और एक छोटा सा हल्का सा पॉइंट कवर किया जहाँ पे बैलेंस डाइट की जरूरत, और बैलेंस डाइट का पहले तो समझा कि क्या होता है। अब इन सब चीजों में एक चीज रह जाती है, वो है खाने का समय। अगर हम ये चीजें खाने वाले हैं तो कब खाने वाले, ये भी जरूरी है। तो आप खाना अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। आप काम कर रहे हो, आप घर पे हो, आप हाउसवाइफ हो या फिर आप ऑफिस में काम करते हो, तो आप वो चूज कर सकते हो कब खाना खाना है। सिर्फ एक ग्राउंड रूल ये रखना है, यानी एक नियम रखना है रोज का, कि 4 घंटे से ज्यादा खाली पेट नहीं रहेंगे। तो 4 घंटे के बाद हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप कुछ खा रहे हो, क्योंकि उतना देर खाली पेट रहना नुकसान कर सकता है। और रही बात कुछ ये बोलते हैं कि 2-2 घंटे पे लेना चाहिए, तो 2-2 घंटे पे खाने की हमें जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन 2-2 घंटे पे लिपिया जा सकता है, यानी लिक्विड्स हाइड्रेशन मेंटेन किया जा सकता है। स्पेशली अभी गर्मी की सीजन है, हम पानी को बहुत इंपॉर्टेंस देंगे, तो वो प्लेन पानी भी हो सकता है या फिर कोई लिक्विड भी हो सकता है, जैसे नींबू पानी हो गया या छाछ हो गया, नारियल पानी हो गया या फ्रूट जूसेस हो गए। तो अलग अलग लिक्विड्स हर 2 घंटे पे नियमित तौर से लें, और खाना 4-4 घंटे पे अपने समय से, भले वो बहुत ज्यादा ना हो बट एक हल्का सा छोटा सा स्नैक भी हो गया, पर 4 घंटे के बाद हमेशा खाना है, तो वो आपका सेहत बनाए रखेगा। और जो हमें चीजें विटामिन्स प्रोटीन मिनरल्स जितनी भी चीजें चाहिए वो हम थोड़ी थोड़ी करके पूरे दिन में लेते रहेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि पूरे दिन कुछ नहीं खाया और दिन के एंड में पूरे दिन की रिक्वायरमेंट एक ही साथ खत्म कर ली, जिसकी हमें जरूरत नहीं है।
1: तो डॉक्टर साहब, बहुत सारी जानकारी आपने दी, प्रोटीन और विटामिन्स का महत्व बताया। आज के इस कार्यक्रम में हम सुनने वालों की ओर से, विविध भारती की ओर से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।
0: मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए और ये अवसर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो दोस्तों, ये थी मुलाकात सुप्रसिद्ध आहार विशेषज्ञ डॉक्टर मीनल शाह से। आज का विषय था प्रोग्राम का, प्रोटीन और विटामिन्स का महत्व। आज के इस कार्यक्रम में हमारे तकनीकी सहयोगी रहे महेश वर्मा, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रामकरण मीणा, और आज के इस प्रोग्राम से अब दीजिए इजाजत अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम। ये आकाशवाणी जैसलमेर है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 5 बजे हैं। आइए श्रोताओं, सुनते हैं युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी।

युवाणी सुनने वाले सभी साथियों को पूनम का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज मैं आपसे जिस विषय पर बात करना चाहूँगी वो है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, यानी कि इंटरनेशनल म्यूजियम डे। प्रत्येक वर्ष को 18 मई को प्रत्येक साल मनाया जाता है। वर्ष 1983 यानी कि 1983 में 18 मई को संयुक्त राष्ट्र ने संग्रहालय की विशेषता और महत्व को समझते हुए अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाने का निर्णय लिया था। इसका मूल्य जिसको मुख्य जो इसका उद्देश्य है वह था जन सामान्य में संग्रहालयों के प्रति जागरूकता तथा उनके कार्यकलापों के बारे में जन जागृति फैलाना। इसका यह भी एक उद्देश्य था कि लोग संग्रहालय में जाने, अपने इतिहास को, अपनी प्राचीन समृद्धि को पहचाने और समझें। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद के अनुसार संग्रहालय में ऐसी अनेक चीज़ें सुरक्षित रखी जाती हैं जो मानव सभ्यता की याद दिलाती हैं। संग्रहालय में रखी वस्तु हमारी सांस्कृतिक धरोहर तथा प्रकृति को प्रदर्शित करती है। वर्ष 1992 में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद ने यह निर्णय लिया कि वह प्रत्येक वर्ष एक नए विषय का चयन करेंगे। जन सामान्य को संग्रहालय विशेषज्ञों से मिलने का, संग्रहालयों की चुनौती से अवगत कराने के लिए स्रोत सामग्री विकसित करेंगे। यह विषय संग्रहालय की भूमिका पर केंद्रित है जो लोगों के बीच शांतिपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने के लिए, समाज के लाभ के लिए काम कर रहा है। इससे यह भी पता चलता है कि सामरिक इतिहास की स्वीकृति सामंजस्य के बगैर के तहत साझा भविष्य को देखने के लिए पहला कदम है। संग्रहालय में अकथनीय कहने का विकल्प चुनते हुए अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद द्वारा चयनित मानव जाति के निहित चुनौतीपूर्ण इतिहास की समझ से बाहर पहलुओं को कैसे समझना चाहिए, यह संग्रहालय को मध्यस्थता और कई बिंदुओं के दृश्य के माध्यम से शांतिपूर्ण ढंग से दर्दनाक इतिहास को संबोधित करने में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करता है। हम इस उत्सव में शामिल होने के लिए दुनिया भर में हर प्रकृति के सांस्कृतिक संसाधनों को आमंत्रित करते हैं जो भविष्य के ऊपर और वर्जित वर्जनों की दूरदृष्टि, एक दूसरे की बेहतर समझ की अनुभूति के लिए ध्यान केंद्रित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस में भागीदारी पूरे विश्व में संग्रहालयों की दिशा बढ़ रही है। बहुत सारे संग्रहालयों ने इसमें हिस्सा लिया है और लोगों को इसके प्रति जागरूक किया है कि किस तरह के से हमारी जो संस्कृति है वह अमूल्य धरोहर के रूप में सुरक्षित है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद या इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम संग्रहालयों में संग्रहालय पेशेवरों का एक वैश्विक क्षेत्र है जो कि प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत, वर्तमान और भविष्य, मूर्त और अमूर्त के प्रचार और संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। संस्कृति और ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए ICOM की प्रतिबद्धता अपनी 31 अंतर्राष्ट्रीय समितियों द्वारा समर्पित है जो अपने संबंधित क्षेत्रों में संग्रहालय समुदाय के लाभ के लिए उन्नत शोध करते हैं। संगठन अवैध तस्करी से लड़ने, आपातकालीन स्थितियों में संग्रहालय की सहायता करने और अन्य कार्यकलापों में शामिल है। ऐसे बहुत से संग्रहालय हैं जो इसमें अपनी भूमिका निभाते हैं और हमें भी उनकी तरफ आकर्षित करते हैं कि किस तरीके से हम अपने

कह सकते हैं धरोहर को सुरक्षित रख सकें। 18 मई 2026 को विश्व भर के संग्रहालय एक विभाजित विश्व को एकजुट करने वाले संग्रहालय विषय के तहत अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाएंगे। यानी कि आज जो संग्रहालय दिवस मनाया गया है उसका विषय है एक विभाजित विश्व को एकजुट करने वाले संग्रहालय। यह विषय सांस्कृतिक, सामाजिक और भू राजनीतिक विभाजनों को पाटने, समान समझ, समावेश और शांति को बढ़ावा देने में संग्रहालयों की क्षमता को उजागर करता है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 1977 से मनाया जाता आ रहा है, जिसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद ICOM द्वारा किया जाता है। भारत में पहला राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना की योजना मई 1946 में हुई थी, मॉरिस गेवर समिति के द्वारा तैयार की गई थी। भारत के विभिन्न संग्रहालयों से चयनित कलाकृतियों की एक प्रदर्शनी का आयोजन लंदन स्थित रॉयल अकादमी द्वारा भारत और ब्रिटेन सरकार के सहयोग से किया गया था, और तभी से लोगों का संग्रहालय के प्रति रुझान बढ़ा था और लोगों को इस चीज के प्रति नॉलेज हुआ था कि किस तरीके से हम अपनी धरोहर को सुरक्षित और संरक्षित रख सकते हैं। साथियों, हम अपनी चर्चा को आपके साथ ऐसे ही जारी रखेंगे, लेते एक छोटा सा ब्रेक।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं। कागज

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

साथियों, आप सुन रहे थे फिल्म देवदास का ये गाना श्रेया घोषाल की आवाज़ में, सिलसिला ये चाहत का, मैंने न बुझने दिया। साथियों, मैं बात कर रही हूँ आपसे एक नए विषय पे, जो कि है राष्ट्रीय पोषण मिशन, जिसे पोषण अभियान भी कहा जाता है। भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसे 8 मार्च 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राजस्थान के झुंझुनू से शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की पोषण स्तर में सुधार करना था। मिशन से जुड़े कुछ मुख्य बिंदु है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, जैसे कि 6 साल की कम उम्र के बच्चों में कुपोषण और कम लंबाई की समस्या को कम करना। मतलब जो 6 साल से जो कम बच्चे होते हैं, उनमें अगर कुपोषण हो जाता है या उनकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो उसी एज में हमें उनका प्रॉपर ध्यान रखना है, उनके खाने पीने का, उनकी ग्रोथ का, मेंटली ग्रोथ और फिजिकली ग्रोथ दोनों। बच्चों, गर्भवती महिलाओं और किशोरियों में खून की कमी को दूर करना। नवजात शिशुओं के कम वजन की दर को कम करना। गर्भधारण से लेकर बच्चे के जन्म के पहले 2 साल तक के जीवन पर विशेष जोर दिया जाता है। आंगनवाड़ियों में स्मार्टफोन, टैबलेट का उपयोग करके बच्चों और माताओं की रियल टाइम निगरानी की जाती है। पोषण संबंधी पहलुओं पर लोगों को शिक्षित करके इसे एक जन आंदोलन बनाया जा रहा है। राष्ट्रीय पोषण मिशन, आपने सभी ने बहुत अच्छे से सुना होगा इसके बारे में कि किस तरीके

यह लोगों के हित को देखते हुए उसे शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय पोषण मिशन यानी कि पोषण अभियान की स्थापना को मंजूरी दी थी, जिसका जो यह जो शुरू हुआ था वह 2017-18 से शुरू हुआ था। पोषण अभियान का शुभारंभ प्रधानमंत्री जी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि 8 मार्च 2018 को किया गया था। इस मिशन का उद्देश्य देश में कुपोषण, बौनापन, एनीमिया के स्तर को कम करना, साथ ही कम वजन वाले शिशुओं की संख्या को कम करना, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों की पोषण स्थिति को प्रभावित करने वाली अन्य समस्याओं को कम करना है। भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय ने अभिसरण प्रौद्योगिकी के उपयोग और लक्षित दृष्टिकोण के माध्यम से नवजात शिशु पोषण कार्यक्रम को लागू करने की योजना बनाई है। इस कार्यक्रम से 10 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ होगा। सभी राज्यों और जिलों को चरणबद्ध तरीके से कवर किया जाएगा। कार्यान्वयन रणनीति जमीनी स्तर तक गहन निगरानी और अभिसरण कार्य योजना पर आधारित होगी। NM एक सर्वोच्च निकाय के रूप में सभी मंत्रालयों में पोषण संबंधी हस्तक्षेपों की निगरानी, पर्यवेक्षण, लक्ष्य निर्धारण और मार्गदर्शन करेगा। इसका उद्देश्य पोषण संसाधन केंद्र स्थापित करना और जन आंदोलन के माध्यम से जनता को विभिन्न गतिविधियों के द्वारा पोषण में सहभागिता प्रदान करना भी है। व्यापक और प्रभावी पहुंच के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायक नर्स, मिडवाइफ, स्वयं सहायता समूहों, सहकारी समितियों, स्वस्थ भारत प्रेरकों आदि जैसे बहुत से अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और स्वयं सेवकों के बीच समन्वय स्थापित करना है। यह कार्यक्रम राजस्थान में ही नहीं पूरे भारत में बहुत अच्छे से मनाया जाता है। यह राष्ट्रीय पोषण राजस्थान में के एक झुंझुनू से इसको शुरू किया गया था, पर इसका मुख्य उद्देश्य ऐसा है कि यह सबको पोषण में शामिल कर सके। इसमें ये नहीं है कि सिर्फ यही वर्ग शामिल हो सकता है या यहाँ से ये शुरू होगा, नहीं। प्रधानमंत्री जी ने 8 मार्च 2018 को भारत के राष्ट्रीय विकास एजेंडा में पोषण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के उद्देश्य इसको शुरू किया था और इसका प्रमुख बहु मंत्रालय समन्वय मिशन है। राष्ट्रीय पोषण मिशन जिस उद्देश्य से शुरू किया गया था वह अपने टारगेट को पूरा कर चुका है। लोगों में काफी इसके प्रति जागरूकता देखी गई है और कुपोषण से ग्रसित बहुत सारे बच्चों को इसमें कंट्रोल कर लिया गया है और अभी बाकी बच्चों को इस रेड लाइन तक आने से रोका गया है कि किस तरीके से हम उनको अच्छे से अच्छा पोषण दे सकते हैं। साथियों, हम अपनी चर्चा को आपके साथ ऐसे ही जारी रखेंगे, लेते एक छोटा सा ब्रेक।

साथियों, आप सुन रहे थे फिल्म दुश्मन का ये गाना, आवाज दो हमको लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज में। साथियों, आप सभी को पता है हमारा जैसलमेर अभी एकदम कह सकते हैं कि हॉट जोन बन चुका है। यहाँ का जो टेम्परेचर है वह 46-47 क्रॉस करने के कगार पे ही है। तो इन सब में हम तो अपना ध्यान रख ही लेंगे, हम अपने आप को घर में रख के कूलर एसी के आगे बैठ के और कुछ ठंडा इंटेक करके, जैसे मैंगो जूस या नींबू पानी, फ्रूट सैलेड, ये हम सब लेके अपने आप को गर्मी से प्रोटेक्ट कर ही लेंगे। और अगर कहीं बाहर निकलना भी पड़े तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सनग्लासेस या अपने मुंह को पूरा कवर करके, अपने हाथों को कवर करके और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी के हम घर से बाहर निकल के अपने काम को भी अंजाम दे सकते हैं कि हम अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि ये बेजुबान जानवर अपना प्रोटेक्शन कैसे करते होंगे? क्या ये अपने हाथों को मुंह को कवर करके रखते हैं, या ये सनग्लासेस लगा के रखते हैं, और या फिर ये जब चाहे तब पानी पी सकते हैं? नहीं, आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि पशुपालन व्यवसाय से जुड़े कृषक या उद्यमी, उन्हें यह जानकारी होनी चाहिए कि गर्मी के मौसम में अपने पशुओं के स्वास्थ्य और उत्पादन को बनाए रखने के लिए बहुत सी बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। गर्मी के मौसम में पशुओं को क्या खिलाना है, किस समय खिलाना है, कितना पानी पिलाना है, ये सारी चीज़ें उन्हें पता होनी बहुत ज़रूरी है। हम फिर भी अपनी बात को बोलकर बता सकते हैं, पर ये बेजुबान जानवर अपनी बात को नहीं बता सकते। अत्यधिक गर्म और शुष्क मौसम के दौरान हम इस तरीके से हाँफने लगते हैं कि हमें लगने लगता है कि किस तरीके से हम अपने आप को प्रोटेक्ट करें। तो क्या ये जानवर, इन्हें कोई ज़रूरत नहीं होगी? गर्मी के मौसम में पशुओं को अपने शरीर का तापमान सामान्य बनाए रखने में काफ़ी दिक्कत आती है। हीट स्ट्रेस के कारण जब पशुओं के शरीर का तापमान 101 डिग्री या 101 डिग्री फॉरेनहाइट या 102 डिग्री फॉरेनहाइट तक बढ़ जाता है, तब पशुओं के शरीर में इसके लक्षण दिखने लगे। भैंसों और गायों के लिए थर्मोन्यूट्रल जोन 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। थर्मोन्यूट्रल जोन में सामान्य मेटाबॉलिक क्रियाओं से जितनी गर्मी उत्पन्न होती है, उतनी मात्रा में पशु पसीने के रूप में गर्मी को बाहर निकालकर शरीर का तापमान सामान्य बनाए रखते हैं। हीट स्ट्रेस के कारण गायों में सामान्य तापक्रम बनाए रखने के लिए खान पान में कमी, दुग्ध उत्पादन में 10-25% की गिरावट, दूध में वसा के प्रतिशत में कमी आती है, प्रजनन क्षमता में कमी आती है, प्रतिरक्षा प्रणाली में कमी आती है, और ऐसे ये लक्षण हमें दिखने लगते हैं कि पशुओं को गर्मी का असर हो रहा है। गर्मियों में पशुओं के स्वास्थ्य और उनके उत्पादन के स्तर को सामान्य बनाए रखने के लिए उनकी देखभाल बहुत जरूरी है। मुख्यतः दो वजह है पशुओं पर हीट का प्रभाव देख के, इन्वायरमेंटल हीट और मेटाबॉलिक हीट। सामान्यतः इन्वायरमेंटल हीट की अपेक्षा मेटाबॉलिक हीट द्वारा कम गर्मी उत्पन्न होती है, लेकिन जैसे जैसे दुग्ध उत्पादन और पशु की खुराक बढ़ती है, उस स्थिति में मेटाबॉलिज्म द्वारा जो हीट उत्पन्न होती है वह इन्वायरमेंटल हीट की अपेक्षा अधिक होती है। इसी वजह से अधिक उत्पादन क्षमता वाले पशुओं में कम उत्पादन क्षमता वाले पशुओं की अपेक्षा गर्मी का प्रभाव ज्यादा दिखाई देता है। गर्मी के मौसम में पशुओं की श्वसन गति बढ़ जाती है, पशु हाँफने लगते हैं, उनके मुंह से लार गिरने लगती है, पशुओं के शरीर में बाइकार्बोनेट आयनों की कमी हो जाती है, पशुओं के रियूमन में भोज्य पदार्थों के खिसकने की गति कम हो जाती है, जिससे पाच्य पदार्थों के आगे बढ़ने की दर कम हो जाती है। पशुओं को दिन के समय की सीधी धूप से हमें बचाना होगा, उन्हें बाहर चराने नहीं ले जाना होगा। हमेशा पशुओं को बांधने के लिए छायादार और हवादार स्थान का चयन करना होगा। पशुओं के पास पानी पीने की व्यवस्था हमेशा होनी चाहिए और उनको हरा चारा खिलाएं। यदि पशुओं में असामान्य लक्षण नजर आते हैं तो नजदीकी पशु चिकित्सक के पास संपर्क करें। यदि संभव हो तो डेयरी शेड में दिन के समय कूलर और पंखे की कोई व्यवस्था कर दें, जिससे कि पशुओं को एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल सके। उनको संतुलित आहार दें। गर्मी अधिक होने पर पशुओं के शरीर पर पानी का छिड़काव करें, जिससे भी उनको रिलैक्सेशन मिलता है, उनको एक
थोड़ा सा रिलीफ मिलता है गर्मी से, क्योंकि हमें गर्मी लगती है तो हम भी किसी न किसी तरीके से अपने आप को बचाते हैं। इन्हें भी उसी तरीके से अपने आप को बचाना है इस तपती दोपहरी में, इस तपती गर्मी में। हम जानते हैं कि गर्मी के मौसम में तापमान बढ़ने के साथ साथ जैसे हमें लू लगने का खतरा होता है, वैसे ही दुधारू गायों में लू लगने का खतरा बढ़ जाता है। लू लगने से उसके आहार में कमी आ जाती है, दूध उत्पादन घट जाता है, प्रजनन क्षमता घट जाती है, गर्भपात और उपापचय जैसी समस्याएं देखने को मिलती है। तो ये सब चीजें होने से हम अपने पशुधन में कमी महसूस करेंगे और हमारे पशु इससे अगर जूझते रहे इसी तरीके से तो प्रोडक्शन में कमी आएगी ही आएगी। पशुओं का लक्ष्य अपने शरीर की आंतरिक

तापमान को एक सीमित सीमा के भीतर बनाए रखना होता है। वे अपने वातावरण से ऊष्मा का आदान प्रदान करके शरीर का तापमान नियंत्रित करते हैं, जिससे वे ऊष्मा ग्रहण और उत्सर्जित करते हैं। पशुओं के आसपास का वायु तापमान और सापेक्ष आर्द्रता गायों की ऊष्मा उत्सर्जित करने की क्षमता को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं। तापमान आर्द्रता सूचकांक का उपयोग आमतौर पर दुग्ध उद्योग में किया जाता है। यह सूचकांक वायु तापमान और सापेक्ष आर्द्रता को मिलाकर पशुओं द्वारा अनुभव किए जाने वाले ऊष्मा तनाव का अनुमान लगाता है। तो हमें किसी न किसी तरीके से इन्हें प्रोटेक्ट करना है, इनको बचाना है इस तपती दोपहर से, इस तपती गर्मी से। और यह सब तभी हो पाएगा जब हम उनके ऊपर ध्यान देंगे कि किस तरीके से हम उनका इलाज कर सकते हैं। उनको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाएं, उनको हरी घास खिलाएं, उनके आहार पर ध्यान दें, थोड़े थोड़े टाइम में उनके ऊपर पानी का छिड़काव करते रहे। जहाँ पर वो बैठे वहाँ पर शेड होना चाहिए, छायादार जगह होनी चाहिए, हवा आने को कोई हवा आने का भी स्थान होना चाहिए, जिससे कि पशु गर्मी उनको पशुओं को भी गर्मी ना लगे, वो हाँफे नहीं और उनको लू लगने से बचाया जा सके। साथियों, हम अपनी चर्चा को ऐसे ही जारी रखेंगे, लेते एक छोटा सा ब्रेक।

साथियों, आप सभी जानते हैं कि आज का दिन यानी कि सोमवार, और हम हर सोमवार लेके आते हैं आपके लिए करंट अफेयर्स का खजाना। तो वही बात करते हैं हम, कुछ ऐसी बातें जिसके बारे में हमें नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी भारत ने चंद्र मिशन में नई सफलता हासिल की है उसके बारे में। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अपने नए अंतरिक्ष मिशनों पर तेजी से काम करना शुरू किया है। भारत लगातार अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। वैज्ञानिकों का उद्देश्य भविष्य में मानव मिशन और नए उपग्रहों को सफल बनाना है। इससे भारत की वैज्ञानिक शक्ति दुनिया में और मजबूत हो रही है। राजस्थान में भीषण गर्मी और हीट वेव। राजस्थान सहित कई राज्यों में इस समय तेज गर्मी और लू का असर देखा जा रहा है। तापमान लगातार बढ़ने से लोगों को परेशानी हो रही है। सरकार ने लोगों को दोपहर में बाहर कम निकलने और अधिक पानी पीने की सलाह दी है। IPL 2026 का रोमांच। इंडियन प्रीमियर लीग में इस वर्ष कई रोमांचक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। युवा खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह बना हुआ है और सभी अपनी पसंदीदा टीम को समर्थन दे रहे हैं। पूरे देश में पर्यावरण संरक्षण का विशेष अभियान। पूरे देश में पेड़ लगाने और जल संरक्षण के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। विद्यालयों और सामाजिक संस्थाओं द्वारा लोगों को पर्यावरण बचाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इससे आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ वातावरण मिल सकेगा। नई शिक्षा नीति पर कार्य चल रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा नई शिक्षा नीति को और प्रभावी बनाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। विद्यार्थियों को अब व्यवहारिक शिक्षा, कौशल और विकास तकनीकी के ज्ञान पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। डिजिटल भुगतान में भारत आगे है। भारत में ऑनलाइन भुगतान का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। लोग अब मोबाइल ऐप के माध्यम से आसानी से पैसे भेज और प्राप्त कर रहे हैं। इससे समय की बचत हो रही है और डिजिटल भारत अभियान को मजबूती मिल रही है। गोडावन संरक्षण पर जोर। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने के लिए राजस्थान में विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। यह पक्षी विलुप्त होने की कगार पर है। सरकार और वन विभाग इसके संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट चला रहे हैं और कई कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं इसके लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए। स्वच्छ भारत अभियान को बढ़ावा। देश के कई शहरों और गांवों में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को साफ सफाई रखने, प्लास्टिक का कम उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इससे पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों सुरक्षित रहेंगे। खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन। भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन किया है। इससे देश का गौरव बढ़ा है और युवाओं में खेलों के प्रति रुचि भी बढ़ रही है।

जल संरक्षण की आवश्यकता। गर्मी बढ़ने के कारण कई क्षेत्रों में पानी की समस्या देखी जा रही है। विशेषज्ञों ने वर्षा जल संचयन और पानी बचाने पर जोर दिया है। यदि समय रहते पानी का संरक्षण नहीं किया गया तो भविष्य में गंभीर संकट उत्पन्न हो सकता है। साथियों, हम आपके साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे, पर उससे पहले ले चलते हैं आपको संगीत की दुनिया में।

0: कुछ तो जवाब दोगी ना।
1: साथियों, हम सुन रहे थे हम दिल दे चुके सनम का ये गाना, झोंका हवा का। साथियों, प्रस्तुत है आपके लिए एक और प्रस्तुति।

साथियों, आप सुन रहे थे फिल्म हम साथ साथ है का ये गाना, ये तो सच है कि भगवान है। साथियों, मैं बात करना चाहूंगी आपसे पर्यावरण संरक्षण के बारे में, जो कि हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। हमें पता होना चाहिए कि पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है। यह हमें शुद्ध हवा, पानी, भोजन और रहने के लिए स्थान प्रदान करता है। प्रकृति का संतुलन ही स्वस्थ जीवन का रहस्य है, लेकिन आज मानव की वैज्ञानिक रचनात्मकता के कारण यह संतुलन बना हुआ है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन गई है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण औद्योगिकरण हो सकता है, शहरीकरण हो सकता है, वनों की कटाई हो सकती है, और सामूहिक से आशियाने वाला धुआं और रासायनिक कचरा पर्यावरण प्रदूषण के मुख्य कारण है। कई प्रदूषण ऐसे हैं जो हमें किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। जैसे वायु प्रदूषण हमें दिख नहीं रहा है कि हाँ, हमें यूं लगता है कि नहीं, बहुत अच्छी फ्रेश एयर चल रही। नहीं, आप जो एयर फ्रेश मान रहे हो ना, वो फ्रेश एयर नहीं है, उसमें वायु प्रदूषण प्रदूषण मिक्स हो चुका है, यानी कि वो वायु प्रदूषण का रूप ले चुका है। जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और बहुत सारे प्रदूषण हैं जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं। इन सभी प्रकार के प्रदूषणों का प्रत्यक्ष प्रभाव मानव स्वास्थ्य और लक्षण तंत्र पर आधारित है। पर्यावरण संरक्षण आज की सबसे बड़ी आवश्यकता

यदि हमने इस पर ध्यान नहीं दिया तो पृथ्वी पर जीवन दुभर हो जाएगा। वैश्विक जलवायु, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं और विभिन्न बीमारियां पर्यावरण के ही परिणाम हैं। इसलिए हमें पर्यावरण को बचाने के लिए कदम उठाने ही होंगे। पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रयासों की आवश्यकता है। हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर, प्लास्टिक का उपयोग कम करके, जल का सदुपयोग करके और ऊर्जा के सामुदायिक संसाधनों का प्रयोग करके हम संरक्षण कर सकते हैं इस पर्यावरण का। सरकार को भी प्रदूषण नियंत्रण के लिए जो उन्होंने सहायक नियम बनाए हैं उसका हमें पालन करना है। केवल सरकार ही प्रदूषण कम नहीं कर सकती, प्रदूषण तो हम कर रहे हैं। सरकार अकेली थोड़ी प्रदूषण कर रही है कि चारों तरफ प्रदूषण फैल रहा है उसके लिए सरकार जिम्मेवार है। नहीं, प्रदूषण अगर फैल रहा है तो उसके लिए हम आम नागरिक जिम्मेदार है, क्योंकि हम ही चारों तरफ इस तरीके से कचरा फैला के रखते हैं, पानी का दुरुपयोग करते हैं और व्हीकल्स का आजकल अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इफेक्ट तो हमारे शरीर को ही करेगी और इन सब का उपयोग तो हम जनता ही कर रही है। हम सरकार को दोष दे के क्यों करें, परंतु हम सरकार की मदद जरूर कर सकते हैं। उन्होंने जो नियम बनाए हैं, जो वो कह रहे हैं कि नई नई टेक्निक्स लेके आ रहे हैं, उन्हें हमें फॉलो करना है, हमें उनका साथ देना है, तभी जाकर हम पर्यावरण संरक्षण कर पाएंगे। पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रयासों की आवश्यकता है। हमें सरकार का साथ देकर, जागरूकता फैलाकर यह महत्वपूर्ण कदम उठाना ही होगा। पर्यावरण संरक्षण हमें अपनी चट्टानों में बदलाव, प्रकृति के प्रति सम्मान का भाव दिखाते हुए पृथ्वी को एक बेहतर और सुरक्षित स्थान बनाना होगा। हमारा भविष्य पर्यावरण संरक्षण पर ही निर्भर है। अभी हो सकता है कि आप जैसे तैसे अपनी लाइफ को यहाँ इस धरती पे निकाल लोगे, क्या आपके आने वाले पीढ़ी, अभी आपको इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है तो सोचिए हमारी आने वाली पीढ़ी को कितनी प्रॉब्लम्स होगी, उन्हें क्या क्या फेस करना पड़ेगा, क्या वो सुरक्षित सांस ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे। प्राकृतिक संसाधनों में पेड़ पौधे, जल, वायु, मिट्टी, इन सब की हमें रक्षा करनी होगी। मानव की स्वार्थपूर्ण गतिविधियां और औद्योगिकरण के कारण आज प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है। इसलिए आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित और रहने योग्य बनाने के लिए पर्यावरण को बचाना अत्यंत आवश्यक है। जब हमें अभी सांस लेने में इतनी प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, पानी का इतना संकट देखने को मिल रहा है, तो क्या हमारी आने वाली पीढ़ी इन सब चीजों को फेस नहीं करेगी? करेगी, हमसे ज्यादा करेगी, क्योंकि दिनों दिन हमारे पर्यावरण का स्तर नीचे ही गिरता जा रहा है। अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो यह सुरक्षित रखना इसको बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। पर्यावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए शुद्ध हवा देता है, पीने के लिए पानी देता है, खाने के लिए भोजन देता है, लेकिन हम इसे क्या दे रहे हैं? कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसका हनन कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसका कटाक्ष कर रहे हैं। अंधा मनुष्य अपनी विकास की दौड़ में इतना अंधा हो गया है कि प्रकृति का दोहन उसे समझ ही नहीं आ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर समस्याएं पैदा होती जा रही है। उसे सिर्फ आज का शान और शौकत चाहिए, उसे बहुत अच्छी लाइफ चाहिए, उसके लिए वनों को काटे जा रहा है, उसे अपना सुंदर सा घर बनाना है, आज ऐसा फर्नीचर होना चाहिए, आज ऐसा होना चाहिए। अरे भाई, आपके इस चक्कर में पूरा वनों की कटाई हो रही है, उसे कौन देखेगा? प्रदूषण और ये जो प्रदूषण सबसे ज्यादा जो कारखानों से हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि इतने कारखाने लग चुके हैं, क्योंकि लोगों की जरूरतें बढ़ती जा रही है और इन जरूरतों के चक्कर में हम पर्यावरण का दोहन करते जा रहे हैं। प्लास्टिक का उपयोग हम कितना भी सोचे ना करें, परंतु फिर भी हम कहीं ना कहीं प्लास्टिक का उपयोग करते ही हैं और उसको वापस से रीयूज करने का तो सोचते ही नहीं है, लिया, पिया और फेंक दिया। तो इसी तरीके से हमारे लिए पर्यावरण संरक्षण एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और इसके लिए तभी हो सकता है जब आप सभी जागरूक हों। साथियों, मैं अंत में आपसे इतना ही कहना चाहूंगी कि हमारा पर्यावरण हमें ही सुरक्षित रखना है, हमारे आने वाली पीढ़ी को एक गिफ्ट के तौर पर देना है, तो हमें इसे पर्यावरण को सुरक्षित रख के बचाना है। हम अपनी चर्चा को आपके साथ ऐसे ही जारी रखते, पर समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आप मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।

आज रात्रि 11:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से। आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से ही रात्रि 11 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। न्यूज एट 9 का समय रहेगा रात्रि 9:00। रात्रि 8:45 पर आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे समाचार संध्या।

शाम 6:45 पर आप सुन सकते हैं राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर केंद्र से। आकाशवाणी जयपुर अजमेर केंद्र से ही शाम 6:40 पर आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी। हिंदी में प्रादेशिक समाचार का समय रहेगा शाम 6:30।

बेहतरीन फिल्मी गानों का आनंद ले सकते हैं हमारे श्रोता रात्रि 10:30 पर आकाशवाणी जैसलमेर केंद्र से। रात्रि 10 बजे आकाशवाणी जैसलमेर केंद्र से आप सुनेंगे नाटक। राजस्थानी लोक संगीत का समय रहेगा रात्रि 9:30। सुगम संगीत हमारे श्रोता सुन सकते हैं रात्रि 8:30 पर। शाम 7:30 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम विदुषी किशोरी अमोनकर की।

शाम 7 बजे ग्रामीण भाई सुन सकते हैं अपना कार्यक्रम ग्राम जगत। भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का समय रहेगा शाम 6:15 और अब से थोड़ी ही देर में यानी 6:05 पर आप सुनेंगे दैनिक कार्यक्रम रामचरित मानस गान।

अभी आप सुन रहे थे आज की सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। ये आकाशवाणी जैसलमेर है, FM बैंड 110.8 MHz पर।

राक्षसों तथा पापाचारियों से आतंकित पृथ्वी तथा ब्रह्मा सहित देवताओं ने परम पिता की स्तुति करके उन्हें प्रसन्न किया। तब गंभीर आकाशवाणी हुई, हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामी, भयभीत न हो। तुम्हारे कल्याण के लिए मनुष्य रूप धारण करके मैं सूर्य वंश में अवतरित होऊंगा। अदिति तथा कश्यप ने कठोर तपस्या करके मेरा वरदान प्राप्त किया और वे ही कौशल्या तथा दशरथ के रूप में अयोध्या में प्रकट हुए हैं। उन्हीं के घर श्रेष्ठ चार भाइयों के रूप में मैं अपनी परम शक्ति समेत पैदा होऊंगा। आकाश में गूंजती ब्रह्मवाणी अपने कानों सुनकर सभी देवता आश्वस्त हुए।

प्रकट नर तिनकी ग्रह अब तरी हूँ जाई रघुकुल तिलक सोचारू भाई नारद बचन सत्य सब करी हूँ परम सब

विदित कहि दशरथ नाम धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भक्त।

अभी आप सुन रहे थे दैनिक कार्यक्रम रामचरित मानस गान। ये आकाशवाणी जैसलमेर है, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए श्रोताओं, सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। ये आकाशवाणी जैसलमेर है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर केंद्र से।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और नॉर्वे को बातचीत के जरिए शांति प्रयासों का समर्थन करने वाला बताया। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, इस साल देश का कुल निर्यात 863 अरब डॉलर तक पहुंचा। राज्य में भीषण गर्मी का दौर जारी, आयुष मंत्रालय ने हेल्थ एडवाइजरी जारी की। और विश्व संग्रहालय दिवस पर प्रदेश भर में विभिन्न आयोजन।

0: समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नॉर्वे हमेशा से बातचीत और कूटनीति के जरिए शांति प्रयासों के समर्थक रहे हैं। श्री मोदी ने आज नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनस गाहर स्टोरे के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित किया। दोनों देशों की ओर से जारी एक संयुक्त प्रेस वक्तव्य में कहा गया कि यूक्रेन और पश्चिमी एशिया सहित दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जारी संघर्षों के बीच सैन्य कार्रवाई किसी भी समस्या का समाधान नहीं है।
1: भारत और नॉर्वे दोनों रूल्स बेस्ड ऑर्डर डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। हम एकमत है कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता, यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया। हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास का समर्थन करते हैं। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म अनिवार्य है।
0: वार्ता के दौरान दोनों देशों के बीच पर्यावरण और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने पर सहमति बनी। इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए इसरो और नॉर्वे स्पेस एजेंसी के बीच एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। दोनों नेताओं ने आतंकवाद को समाप्त करने की साझा प्रतिबद्धता जताई। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में भारत व्यापार महोत्सव की वेबसाइट लॉन्च की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था और निर्यात में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। श्री गोयल ने कहा कि इस साल देश का कुल निर्यात लगभग 863 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जो पिछले साल की तुलना में करीब 5% अधिक है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष के लिए भारत ने सामूहिक रूप से $1 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। केंद्रीय मंत्री ने विश्वास जताया कि देश का व्यापारिक समुदाय वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी मजबूती से आगे बढ़ रहा है।
2: विकसित भारत 2047 जो प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रोत्साहित किया है अमृत काल में मेहनत करने के लिए, वो लक्ष्य बड़ा है, पर भारत के उद्योग व्यापार जगत, भारत के लोगों में जो आज उत्साह है और सफलता के लिए जिस प्रकार से पूरा देश 140 करोड़ लोग एकत्र हुए हैं, मुझे लगता है कि कोई ताकत दुनिया की ना हमें रोक पाएगी ना हमारे को थम पाएगी।
0: कोटा के जेके लोन अस्पताल में प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने और मौत के मामले में चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींसर ने कहा कि इस मामले में शुरुआती तौर पर उपकरणों में संक्रमण या दवाइयों में गड़बड़ी की आशंका है। श्री खींसर ने आज जयपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि चिकित्सा उपकरणों और दवाओं के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं, जिनकी रिपोर्ट 23 मई तक आने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि एम्स की टीम ने भी अस्पताल का दौरा कर जानकारी ली है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि इस अस्पताल पर आमजन का भरोसा है और प्राथमिक जाँच के आधार पर शुरुआती कदम उठाए गए हैं।
3: जो मेरा जो सोचना है कि इतनी जल्दी उनके 8 घंटे 7 घंटे में गंभीर हालत होना और उसके 6-7 घंटे में डेथ होने का मतलब है कि कुछ चीज ब्लड स्ट्रीम के अंदर गई है। अब उसमें ये भी हो सकता है कि इंजेक्टेबल तो दवाई भी की गोली से भी ऐसा रिएक्शन नहीं होता है। अब इसके अंदर ये भी हो सकता है आईवी फ्लूइड जैसे मान लो है अच्छी कंपनी का सब कुछ है, स्टोरेज उसकी सही नहीं हो, दैट कुड बी वन रीजन।
0: राजस्थान विधानसभा की स्थापना के 75 वर्ष के उपलक्ष में आज विधानसभा के नए प्रतीक चिन्ह का विमोचन किया गया। विधानसभा परिसर में आयोजित विशेष समारोह में राज्यपाल हरिभाव बागड़े ने इस नए लोगो का लॉन्च किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि यह लोगो राजस्थान के जनमानस की सोच का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने बताया कि इस प्रतीक चिन्ह में राज्य पुष्प रोहिड़ा, खेजड़ी वृक्ष और विधान भवन की छवियों को शामिल किया गया है, जो प्रदेश की सांस्कृतिक जीवंतता को दर्शाता है। समारोह में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बताया कि आज विधानसभा के चारों ऐतिहासिक द्वारों के नामकरण की पट्टिकाओं का भी अनावरण किया गया। इन प्रवेश द्वारों को राजस्थानी संस्कृति के अनुरूप नए नाम दिए गए हैं।
4: चौरे द्वार और तीसरा है
3: सुशासन द्वार और चौथा है
4: कर्तव्य द्वार, ये अध्यक्ष के आने वाला शक्ति द्वार, जहाँ पे विधायिका की असली शक्ति जनता है, जहाँ से जनता आती है उसको हमने शक्ति द्वार रखा है, और जहाँ से अधिकारी आते हैं वो संकल्प द्वार, ताकि उनके कार्यकाल का जनता को राहत देने का संकल्प करें, और जहाँ से माननीय विधायक आते हैं उनको सुशासन द्वार रखा है, और जहाँ से विशिष्ट व्यक्ति आते हैं वो शौर्य द्वार। इस प्रकार पांच द्वारे जो अंदर है उसका नाम हमने उसको रखा है।
0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में पिछले 24 घंटों के दौरान पांच स्थानों पर छापेमारी की है। इस कार्रवाई में जांच एजेंसी ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए हैं। सीबीआई की जांच में परीक्षा से पहले लीक हुए रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के प्रश्न पत्रों के मुख्य स्रोत का भी पता चल गया है। एजेंसी ने इस मामले में महाराष्ट्र के लातूर से आरसीसी कोचिंग संस्थान के संचालक प्रोफेसर शिवराज मोंटेगांवकर को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक जयपुर, दिल्ली और लातूर सहित देश के विभिन्न हिस्सों से 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गौरतलब है कि इस महीने की 3 तारीख को हुई ये परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर में मुख्यमंत्री निवास पर जनसुनवाई की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश भर से आए आम लोगों की समस्याओं को सुना और अनेक मामलों पर मौके पर ही निस्तारण किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जनसुनवाई में आए सभी मामलों के निस्तारण की नियमित रूप से मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्य में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। श्री शर्मा ने कहा कि सरकार अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य में भीषण गर्मी का दौर बना हुआ है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के 19 जिलों में हीटवेव का येलो अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में तापमान में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। चित्तौड़गढ़ और पिलानी 46.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ सबसे गर्म स्थान रहे। तेज गर्मी के कारण आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आगामी एक सप्ताह तक राज्य के अधिकांश भागों में मौसम पूरी तरह गर्म बना रहेगा। उन्होंने बताया कि इस दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों और दक्षिण पूर्वी इलाकों में कहीं कहीं हीट वेव की आशंका है।
5: अगले एक सप्ताह के दौरान राजस्थान के सभी भागों में मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा। वहीं आगामी दिनों में तेज धूल भरी हवाओं का प्रभाव भी राज्य के कुछ भागों में देखने को मिलेगा। इस दौरान विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग, वहीं शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ इलाकों में भी आगामी 4-5 दिन तेज हवाएं प्रभावी होंगी। तापमान की बात करें तो ज्यादातर इलाकों में फिलहाल तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के करीब पश्चिमी राजस्थान सीमावर्ती क्षेत्रों में होगा। वहीं ज्यादातर शेष जो पूर्वी राजस्थान के हिस्से हैं इनमें तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा।
0: आयुष मंत्रालय ने भीषण गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए आज एक हेल्थ एडवाइजरी जारी की है। इसमें बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और खुले में काम करने वाले मजदूरों को विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है। एडवाइजरी में तापघात, चक्कर आने, तेज सिरदर्द और बेहोशी जैसे लक्षणों को मेडिकल इमरजेंसी माना गया है। ऐसी स्थिति होने पर तुरंत 108 या 102 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करने की सलाह दी गई है। लू से बचाव के लिए मंत्रालय ने पर्याप्त पानी पीने और धूप से बचने को कहा है। इसके साथ ही शरीर को ठंडा रखने के लिए छाछ, नारियल पानी, नींबू पानी, तरबूज और खीरे जैसे पारंपरिक चीजों के सेवन की सिफारिश की गई है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 1.5 महीने की नहरबंदी के बाद आज 10,800 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। सिंचाई विभाग के अनुसार 1 अप्रैल को नहरबंदी लागू की गई थी। इस दौरान नहर की सिल्ट सफाई, टूटी पटड़ियों की मरम्मत, रेगुलेटरों के रखरखाव और अन्य तकनीकी काम किए गए। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अगले 48 घंटों में यह पानी टेल क्षेत्र तक पहुंच जाएगा। इससे सूरतगढ़, रावला, घड़साना और अनूपगढ़ क्षेत्र के हजारों किसानों को खरीफ की फसलों की बुआई के लिए पानी मिल सकेगा। ऐसे में अब किसान नरमा, ग्वार और अन्य फसलों की तैयारी में जुट गए हैं। वहीं नागौर और डीडवाना कुचामन जिले में नहरबंदी का अंतिम चरण चल रहा है। एक सप्ताह तक नहरबंदी के प्रभाव से पेयजल आवक में कमी को देखते हुए स्थानीय भूजल स्रोतों से पीने के पानी की सुचारू व्यवस्था की जा रही है। विश्व संग्रहालय दिवस के अवसर पर आज प्रदेश भर के राजकीय संग्रहालयों स्मारकों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। जयपुर और अजमेर सहित विभिन्न स्थानों पर पर्यटकों का तिलक लगाकर और पुष्प बरसाकर पारंपरिक स्वागत किया जा रहा है। इस मौके पर देशी विदेशी पर्यटकों और आम जन के लिए सभी संग्रहालयों और स्मारकों में प्रवेश निःशुल्क रखा गया है। इधर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जयपुर के अल्बर्ट हॉल म्यूजियम में लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि संग्रहालयों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़कर पर्यटन को और अधिक बढ़ावा दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और पर्यटन के लिए लगातार काम कर रही है। जैसलमेर के दिथार हेरिटेज म्यूजियम और पाली के राजकीय बांगड़ म्यूजियम में भी आज सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण विषय पर विचार संगोष्ठियां रखी गई। इन संगोष्ठियों का उद्देश्य विद्यार्थियों और युवाओं में इतिहास और संग्रहालयों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और नॉर्वे को बातचीत के जरिए शांति प्रयासों का समर्थन करने वाला बताया। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, इस साल देश का कुल निर्यात 863 अरब डॉलर तक पहुंचा। राज्य में भीषण गर्मी का दौर जारी, आयुष मंत्रालय ने हेल्थ एडवाइजरी जारी की और विश्व संग्रहालय दिवस पर प्रदेश भर में विभिन्न आयोजन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप ऋतिका गुप्ता से बूंदी जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख क्षेत्रीय समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। बूंदी जिले की चिट्ठी में हम आप तक पहुंचाएंगे प्रशासनिक, सामाजिक गतिविधियों और स्थानीय आयोजनों से जुड़ी खबरें। चिट्ठी में बात करेंगे ग्राम रथ अभियान, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, लू और तापघात से बचाव के लिए किए जा रहे उपायों और जनगणना 2027 की। साथ ही होंगे और भी कई समाचार। चिट्ठी में सबसे पहले बात पीएम सूर्यघर योजना से ऊर्जा आत्मनिर्भर बनते बूंदी की। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना जिले में जन आंदोलन का रूप लेती जा रही है। 15 फरवरी 2024 से शुरू हुई इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत लोगों के घरों की छतों पर सोलर पैनल स्थापित किए जाते हैं और उन्हें 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाती है। जिले में अब तक 1,134 घरों पर सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं। इससे रोजाना 23,667 यूनिट बिजली का उत्पादन हो रहा है, जो ऊर्जा आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में बड़ा कदम है। साथ ही 1,000 से अधिक उपभोक्ताओं को अब तक 8 करोड़ 5 लाख से अधिक की सब्सिडी केंद्र सरकार की ओर से दी जा चुकी है। ये योजना बिजली उत्पादन और ऊर्जा आत्मनिर्भरता के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक बचत की दिशा में भी मील का पत्थर साबित हो रही है। चिट्ठी में अब बात अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस काउंटडाउन अभियान की। जिले भर में आयुर्वेद विभाग और प्रशासन की ओर से योग जागरूकता गतिविधियां चलाई जा रही हैं। आयुर्वेद विभाग के पीएमओ और पंच कर्म विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील कुशवाहा के निर्देशन में बूंदी और सथूर में हाल ही में योग कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में हुए इस कार्यक्रम में योग सत्र रखे गए। इनमें विद्यार्थियों को विभिन्न योगाभ्यास करवाए गए। योग गुरु दीपक गुर्जर ने बताया कि योग केवल शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि ये जीवन शैली को सकारात्मक दिशा देने वाली भारतीय पद्धति है। जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों में बीते दिनों ग्राम रथ अभियान की धूम रही। अभियान के तहत एलईडी वैन के जरिए ग्रामीणों को जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही स्थानीय लोक कलाकारों ने रोचक अंदाज में प्रस्तुतियां देकर लोगों को योजनाओं के फायदों और आवेदन प्रक्रिया को सरल भाषा में समझाया। इस पहल से ग्रामीणों में जागरूकता बढ़ी है। एलईडी वैन के माध्यम से 13 विभागों की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया गया। साथ ही संध्या चौपाल का भी आयोजन हुआ। जनगणना 2027 की प्रक्रिया के तहत 1 मई से स्वगणना की शुरुआत हुई। इस मौके पर स्वगणना प्रपत्र भरने के बाद जिला कलेक्टर ने लोगों से इस महाअभियान में बढ़ चढ़कर भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। अब 16 मई से प्रगणक घर घर जाकर आंकड़े जुटा रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के मौके पर बूंदी में जागरूकता कार्यक्रम हुआ। श्रम विभाग और विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से ये कार्यक्रम रखा गया। इसमें शहर के विभिन्न चौखटियों पर जाकर श्रमिकों से बातचीत की गई और उन्हें श्रमिक अधिकारों तथा सरकारी योजनाओं के बारे में बताया गया। जिला श्रम कल्याण अधिकारी अंकिता महर्षि ने श्रमिकों को पंजीयन प्रक्रिया के बारे में बताया। साथ ही ई श्रम पंजीयन और प्रधानमंत्री मानधन योजना के फायदों से भी अवगत कराया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से श्रमिकों को श्रम कानूनों की जानकारी दी गई। साथ ही अधिकारों के हनन होने पर कानूनी मदद लेने के तरीकों के बारे में भी बताया गया। जिले के हर कोने में हस्तलिखित ग्रंथों की खोज के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। जिले में समृद्ध प्राचीन पांडुलिपियों के संरक्षण और सर्वेक्षण से जुड़े ज्ञान भारतम मिशन का काम शुरू हो गया है। इसके लिए डॉक्टर अनिता यादव को नोडल अधिकारी बनाया गया है। डॉक्टर यादव ने जिले के इतिहासकारों, शोधकर्ताओं और पुस्तकालय संचालकों से अपील की है कि वे पुराने हस्तलिखित ग्रंथों की जानकारी प्रशासन से साझा करें। उन्होंने बताया कि पांडुलिपि की जानकारी मिलने पर प्रशासन की ओर से नियुक्त सर्वेयर संबंधित स्थान पर जाकर पूरा विवरण प्राप्त करेंगे। इस ब्यौरे को ज्ञान भारतम मिशन के ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के मौके पर बूंदी में विशेष कार्यक्रम रखा गया। माय भारत केंद्र पर हुए इस कार्यक्रम में युवाओं को नई तकनीक के साथ सामंजस्य रखते हुए काम करने के लिए प्रेरित किया गया। इसके साथ ही बूंदी जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत और नॉर्वे ने बातचीत रे जरिए शांति री कोशिशां री हिमायत करण वाला बताया। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल कहो भारत रा सामान री दिशावर माए बिक्री 863 अरब डॉलर ताई पूगी। राज्य माए जबरदस्त गर्मी रो दौर, आयुष मंत्रालय हेल्थ एडवाइजरी जारी कीनी और विश्व संग्रहालय दिवस रे मौके आज प्रदेश भर माए न्यारा न्यारा कार्यक्रम राखी जिया। समाचारां सागे मैं सुदर्शन नाहर, अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो है कि भारत और नॉर्वे हमेशा बातचीत और कूटनीति रे जरिए शांति री कोशिशां री हिमायत कीनी है। श्री मोदी आज नॉर्वे रा प्रधानमंत्री जोनस गाहर स्टोरे सागे खबरनवीसां सागे बातचीत कर रहा है। दोनों देशों री ओर जारी भेड़ा प्रेस बयान माए कही जियो कि यूक्रेन और आतुनी एशिया समेत दुनिया रा न्यारा न्यारा हलका माए चाल रहा झगड़ा टंटा बीच है, फौजी कार्रवाई किनी समस्या रो हल नहीं है।
2: भारत और नॉर्वे दोनों रूल्स बेस्ड ऑर्डर डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। हम एकमत है कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता, यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया। हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास का समर्थन करते हैं। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म अनिवार्य है।
1: बातचीत रे दौरान दोनों देशों बीच पर्यावरण और साफ ऊर्जा हलका माए ग्रीन स्ट्रेटजिक भागीदारी ने आगे बढ़ावण माथे ही सहमति बनी। इन तेत अंतरिक्ष हलका माए मदद सारू इसरो और नॉर्वे स्पेस एजेंसी बीच एक करार माथे ही सही करी ची। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कहो है कि दुनिया की चुनौतियां रे बावजूद भारत री माली व्यवस्था और दिशावर माए बिक्री लगातार बढ़ रही है। वे आज नई दिल्ली में भारत व्यापार महोत्सव री वेबसाइट री शुरुआत रे मौके राखी जा कार्यक्रम में बोल रहा है। श्री गोयल कहो कि इस साल भारत रा सामान री दिशावर माए बिक्री 863 अरब डॉलर रा लेवल ताई पूगी, जो लारला साल री तुलना में करीब 5% बत्ती है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री कहो कि चालू माली साल सारू भारत दिशावर माए बिक्री 1 ट्रिलियन डॉलर रा लेवल ताई पूगा उनो तय किनो है। श्री गोयल देश रा कारोबारी समुदाय रे साल 2047 ताई विकसित भारत बनावण रो लक्ष्य हासिल करण सारू पूरी मजबूती आगे बढ़वारो भरोसो जतायो।
3: विकसित भारत 2047 जो प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रोत्साहित किया है अमृत काल में मेहनत करने के लिए, वो लक्ष्य बड़ा है पर भारत के उद्योग व्यापार जगत, भारत के लोगों में जो आज उत्साह है और सफलता के लिए जिस प्रकार से पूरा देश 140 करोड़ लोग एकत्र हुए हैं, मुझे लगता है कि कोई ताकत दुनिया की ना हमें रोक पाएगी ना हमारे को थम पाएगी।
1: कोटारा जेके लोन अस्पताल में लाडला दिना जापा वाली लुगाइयां री तबीयत खराब हेवन और मौत वेजावन रे मामला माए चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर शुरुआती तौर इलाज रा काम माए आवन वाला साजो सामान माए संक्रमण या दवाइयां माए गड़बड़ी री शंका जताई है। श्री खींवसर आज जयपुर माए खबर नवीसा सागे बातचीत करता था कहो कि इलाज रा काम माए आवन वाला शंका जोग साजो सामान और दवाइयां रा नमूना जांच सारू भेजी गया है, जारी रिपोर्ट 23 मई ताई आवन री आस है। वह कहो कि एम्स री टीम ही अस्पताल रो दौरो कर मामला री जानकारी लीनी है और रिपोर्ट आया पाछे जरूरी कार्रवाई करी जावेला।
4: जो मेरा जो सोचना है कि इतनी जल्दी उनकी 8 घंटे 7 घंटे में गंभीर हालत होना और उसके 6-7 घंटे में डेथ होने का मतलब है कि कुछ चीज ब्लड स्ट्रीम के अंदर गई है। अब उसमें ये भी हो सकता है कि इंजेक्टेबल तो दवाई भी की गोली से भी ऐसा रिएक्शन नहीं होता है। अब इसके अंदर ये भी हो सकता है आईवी फ्लूइड जैसे मान लो है अच्छी कंपनी का सब कुछ सही है, स्टोरेज उसकी सही नहीं हो, दैट कुड बी वन रीजन इसका।
1: राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े आज विधानसभा परिसर में राजस्थान विधानसभा रा 75वां साल रा सिलसिला में विधानसभा रा नुवा प्रतीक चिन्ह रो विमोचन कीनो। ई मौके वे कहो के ओ प्रतीक चिन्ह राजस्थान री जनता री सोच बतावे है। राज्यपाल कहो के ई प्रतीक चिन्ह माए राज्य पुष्प रोहिड़ा खेजड़ी रा रूंखड़ा और विधानसभा भवन रा फोटो शामिल करी चिया है जो प्रदेश री संस्कृति रो दर्शाव करे है। ई मौके विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी बतायो के आज विधानसभा रा चार ही ऐतिहासिक दरूजा रा राजस्थानी संस्कृति रे मुजब राखी जिया नुआ नाम रे पट्टियां रोई अनावरण करी जियो।
5: शौर्य द्वार और तीसरा है सुशासन द्वार और चौथा है कर्तव्य द्वार, ये अध्यक्ष आने वाला शक्ति द्वार जहाँ पे विधायिका की असली शक्ति जनता है, जहाँ से जनता आती है उसको हमने शक्ति द्वार रखा है, और जहाँ से अधिकारी आते हैं वो संकल्प द्वार ताकि उनके कार्यकाल का जनता को राहत देने का संकल्प करें, और जहाँ से माननीय विधायक आते हैं उनको सुशासन द्वार रखा है, और जहाँ से विशिष्ट व्यक्ति आते हैं वो शौर्य। इस तरह पांच द्वारे जो अंदर है उसका नाम हमने उसको रखा है।
1: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई नीट पेपर लीक मामला माए लाडला 24 घंटा माए 5 ठोड़ा छापा मार और कई खास कागजात कंप्यूटर और मोबाइल फोन जब्त कीना। जांच माए परीक्षाओं पहली लीक हुआ केमिस्ट्री और बायोलॉजी रा पेपर लीक हुआ रा मूल स्रोत री ठापड़ की है। एजेंसी महाराष्ट्र रा लातूर एक और कोचिंग क्लास रा निदेशक ने गिरफ्तार कीनो है। ई मामला में हाल ताई जयपुर दिल्ली और लातूर समेत देश रा न्यारा न्यारा हलकाओं 10 आरोपिता ने पकड़ी चिया है। ध्यान जोग है कि ई महीनारी 3 तारीख ने भी आ परीक्षा पेपर लीक री शंका पाछे रद्द करती री जी ही। है समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। राज्य में पड़ रही जबरदस्त गर्मी बीच मौसम विभाग 19 जिला माए आज अरकाल लू बाजण सा रुचे तयो है। ई बीच चित्तौड़गढ़ और पिलानी माए 46.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज करी चियो। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर रा निदेशक राधे श्याम शर्मा बतायो के आवता एक सप्ताह ताई प्रदेश रा घनखर हलका माए गर्मी रो कोप रहवेला। वे बतायो के इन दौरान सरहदी हलका और लंकाऊ उगनी हलका माए कछे कछे लू बाजण री शंका है।
6: अगले एक सप्ताह के दौरान राजस्थान के सभी भागों में मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा। वहीं आगामी दिनों में तेज धूल भरी हवाओं का प्रभाव भी राज्य के कुछ भागों में देखने को मिलेगा। इस दौरान विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर बीकानेर संभाग, वहीं शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ इलाकों में भी आगामी 4-5 दिन तेज हवाएं प्रभावी होंगी। तापमान की बात करें तो ज्यादातर इलाकों में फिलहाल तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के करीब पश्चिमी राजस्थान सीमावर्ती क्षेत्रों में होगा। वहीं ज्यादातर शेष जो पूर्वी राजस्थान के हिस्से हैं इनमें तापमान 42।
1: ए बीच आयुष मंत्रालय जोरदार गर्मी और लू रा कोप न ध्यान रखता थका हेल्थ एडवाइजरी जारी कीनी है। इनमाए बच्चा बुजुर्गा आस वाली लुगाइया और खुला माए काम करने वाला मजूरा ने खास तौर सावचेती रखने बाबत कही चियो है। एडवाइजरी माए चक्कर आवन, माथा माए जोरदार दर्द वेवन और बेहोशी वेवन री सूरत माए तुरंत 108 या 102 हेल्पलाइन माथे संपर्क करने री राय दी रिची है। ईसा गई लू बचाव सारू बराबर पानी पीवन और तावड़ा बचबारी राय दी रिची है। ईसा गई शरीर न ठंडो रखन सारू छाछ नारियल रो पानी नींबू री शिकंजी तरबूज और खीरा सरी की चीजा काम लेवन बाबती कही चियो है। आज विश्व संग्रहालय दिवस मनाई चियो। ई मौके प्रदेश भर रा सरकारी संग्रहालय और स्मारक माए न्यारा न्यारा कार्यक्रम राखी चिया। जयपुर और अजमेर समेत न्यारी न्यारी थोड़ा सैलानिया रो तिलक लगार और फूलां री बारिश कर स्वागत करी चियो। ई मौके देसी परदेसी सैलानिया और जनता ने सगला संग्रहालय और स्मारक माए मुफ्त प्रवेश दियो चियो। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जयपुर रा अल्बर्ट हॉल म्यूजियम माए लगाई जी प्रदर्शनी ने निरखी। ई मौके वे कहो के संग्रहालय माए नुआ सुविधा मुहैया करार सैर सपाटा ने बधावो दियो जा सके है। वह कहो कि राज्य सरकार सांस्कृतिक विरासत ने बचावन और सैर सपाटा ने बधावो देवन सारू लगातार काम कर रही है।
7: सभी से यही निवेदन करूंगी आज वर्ल्ड म्यूजियम डे पर कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने जितने भी हमारे ऐतिहासिक ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं, साइट्स हैं, हमारा हेरिटेज है, इसको जाके देखें और सोशल मीडिया में भी पोस्ट करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक भी विजिट करें उन जगहों को और इनको समझें, इनको जानें। ये हमारा इतिहास है, हमारा कल्चर है, हमारा हेरिटेज है, ये बहुत महत्वपूर्ण है हम सबके लिए। इसको जानना, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो यही मैसेज सबको देना चाहूंगी ये आज के दिन भी करें और लगातार इस चीज को करें।
1: जैसलमेर रा दिथार हेरिटेज म्यूजियम हरपाली रा सरकारी बांगड़ म्यूजियम आए सांस्कृतिक धरोहर न बचावन रा मुद्दा माथे विचार गोष्ठियां राखी ची। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज जयपुर माए वारा रहवास माथा जनसुनवाई की नी व जनतारी समस्यावां सुनर कई परेशानियां रो मौके निपटारो करायो। ई मौके वे कहो के सरकार समाज रा हर एक पात्र जना ताई सरकारी योजनावां रो फायदो पुगावणो यकीनो है। इंदिरा गांधी नहर परियोजनाओं जुड़ी नहरा माए 1.5 महीना पाछे आज 10,800 क्यूसेक पानी छोड़ी जियो जो आवता 48 घंटा माए नहर रा आखरी हलका ताई पूग जावेला। इनो सूरतगढ़ रावला घरसाना और अनूपगढ़ हलका रा किसाना ने साखारी बुआई सारू पानी मिल सकेला। सिंचाई विभाग रे मुजब 1 अप्रैल नू लागू करी जी नहर बंदी रे दौरान नहर री सिल्ट सफाई टूटी पटनियां री मरम्मत रेगुलेटर रा रख रखाव और दूजा जरूरी काम करी जिया। दूजकानी नागौर और डीडवाना कुचामन जिला माए नहर बंदी रो आखिरी दौर चाल रो है जो 1 सप्ताह तक चल लेला। आखिर माए खास समाचार एक फिर सुन ले रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत और नॉर्वे ने बातचीत रे जरिए शांति री कोशिशां री हिमायत करण वाला बताया। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल कहो भारत रा सामान री दिशावर माय बिक्री $863 अरब ताई पुगी। राज्य माय जबरदस्त गर्मी रो दौर आयुष मंत्रालय हेल्थ एडवाइजरी जारी कीनी। और विश्व संग्रहालय दिवस रे मौके आज प्रदेश भर माय न्यारा न्यारा कार्यक्रम राखी चिया। इसागी प्रादेश

तो किसान भाइयों, आप बात करी थार पार्कर री, और थार पार्कर के साथ आपोरे जो थार पार्कर री जो कई शोभा आपोरी जैसलमेर और बाड़मेर री, अगर कोई बड़ा हुई गाय पशुधन में तो आपोरी गाय माता में थार पार्कर बड़ा हुई। विशेषकर जब अलग अलग विषय मत जब बातों करो तो आज जो दिन है एक विशेष दिन है। आज 18 मई है और 18 मई न एक विश्व जो को संग्रहालय दिवस के रूप में भी मनायो जावे, और संग्रहालय रूप में वहाँ के मतलब देश मतलब जो को अपनी संस्कृति न कई तरीके से कई लोगों बचाए रखी है संग्रहालय में, क्योंकि कुछ विरासतों हैं जो लुप्त हो गई है लेकिन कुछ चीज़ों आज भी संग्रहालय में है। तो आज ये

करा कोई जो अपारा संग्रहालय जो बड़ा है जो जयपुर राजस्थान और अलग अलग जगहों में वो संग्रहालय जो और भी पूरे भारत में नहीं पूरे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जेत भी जो आपकी संस्कृति और धरोहर ना जगह तरीके से बचाए हुए तो भी आज एक दिन है। और उन्हें साथ साथ जो आज दिन है वो 18 मई है और 18 मई विश्व एड्स वैक्सीन दिवस के रूप में हम मनाओ। मतलब विश्व एड्स दिवस ना एक वैक्सीन दिवस मतलब जिके तरीके से आप कोरोना में टीको लगाए तो अपोरे हुए जमाने में जिके तरीके से रोग बहुत ज्यादा बढ़ शुरू हो तो एक वैक्सीन रो निर्माण हो वो निर्माण ने 18 तारीख रखी गई जिकने आप टीका HIV रो टीके रो एक जागरूकता दिवस मनाओ। विशेषकर ये दिन नो मुख्य उद्देश्य अगर आप बात करो तो यही जगह वो टीके की आवश्यकता। हाल तक तो HIV जो है वो एक पक्को इलाज है निवारण है टीको मौजूद नहीं है लेकिन एक दिन सुरक्षित प्रभावी HIV वैक्सीन तत्काल और निरंतर आवश्यक है और माथे प्रकाश भी डाले। वैज्ञानिकों और स्वयंसेवकों का एक सम्मान है कि वे दिन इन अनगिनत वैज्ञानिकों चिकित्सकों पेशेवर शोधकर्ताओं स्वयंसेवकों अथक प्रयासों से बलिदान से इन्होंने सम्मानित किया गया और HIV टीके विकसित की करने वास्ते कई दिन रात मतलब एक कर मतलब कहने मतलब धन्यवाद हुए वैज्ञानिक कौनों के जिके तरीके से टीके का निर्माण कराए रात दिन हुए मत शोध करता रहा हर जगह अलग अलग तरीके से शोध करी जत जाए कि टीके का निर्माण हो। आप और तो ये कार्यक्रम के माध्यम से यही जगह भाई ना ज्यादा से ज्यादा जागरूकता कोकर बढ़ाई जाए गाँव गाँव ढौणी ढौणी बस्ती तक कि भाई ये दिन आम जनता में HIV वैक्सीन अनुसंधान ने बात में शिक्षित किया जाए ताकि ये घातक बीमारी से आप बचाओ प्रति जो कोई जागरूक रह सको। ये दिवस अवधारणा में पहली बार 1818 मई 1997 में अमेरिका का जो राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जो पूर्व राष्ट्रपति होया हुए द्वारा मैरीलैंड रिग मॉर्गन स्टेट यूनिवर्सिटी में दिए गए भाषण में बात की गई। वो मानना है कि एक प्रभावी और निवारक टीको ही HIV एड्स नियंत्रण कर सके ये ना अनंत समाप्त तो आपको कर सको लेकिन ये वास्ते आपको ना वैक्सीन रूप में नमित पहली बार 1998 में कियो गयो। तो जो आज रो जो दिन है वो एक जागरूकता रो दिन है कि आप ये कार्यक्रम के माध्यम से कीकर लोगों तक ये HIV रो जो टीको है ना ज्यादा से ज्यादा कोकर प्रचारित कर सको। ये कार्यक्रम जो सुनने वाला जो अपना श्रोता बंधु है वो ना भी जागरूक कर सको कि भाई आप ये बीमारी ना खत्म करने वास्ते धीमे धीमे अगर ये HIV जो टीकाकरण ज्यादा से ज्यादा जागरूकता हो तो क्यों ये तरीके की बीमारी भी खत्म हो सके। तो कहने का मतलब विशेषकर जैसे आप टीकाकरण की अगर बात करो तो जो HIV जो आप जो टीकाकरण में अलग अलग जो आप आज जो आप तो बात करी ये तरीके से अलग अलग विषय मत है जब टीकाकरण की जब बात आई तो हले हमेशा हालांकि टीका लगी जाए लेकिन ये रो एक आज 16 मई जो है वो विश्व HIV टीकाकरण एक दिन रूप रे मैं एक जागरूकता रे दिवस रे मैं संगोष्ठी करके खेती आप पांच पंचायती में खेत बैठा हो तो जगह बात करके या सोशल महिलाओं जित बैठे जित महिलाओं दर समूह रे मोए में सोशल समूह में जित काम करे तो वे रूप रे मोए तो कई तरीके से बात बात सु बात ज्यादा अगर बढ़े तो जागरूकता बढ़े और जागरूकता बढ़े तो आप और जैसलमेर नहीं पूरे भारत में ये तरीके की रोग री बीमारी कोनी हुए। तो चर्चा ना आप सो रखो जारी सुन सो एक और लोकगीत।

तो किशन भाइयों, आज विशेषकर अलग अलग जो चर्चा हुई, तो आज आप बात करी, थार पार करी, आपको बात करी, आज विश्व संग्रहालय दिवस रही, आपको आज बात करी, जो एड्स रो जो टीको लगाए हुए बारे में बात करी, और मौसम भी आपको बात करी। तो कहने ना, मतलब ये हमेशा अलग अलग विषय में चर्चा करो, तो ये कार्यक्रम के माध्यम से तो अपना ये मतलब भी विचार करना चाहिए कि भाई कार्यक्रम में कई तरीके की अलग अलग विषय में चर्चा हुई, तो थार पार करी गाय री भी चर्चा हुई, क्योंकि जो थार पार कर गाय वो आपोरी एक शोभा है, मतलब थार री, और वे सब तरीके से बात करी। अच्छा हुई टीकाकरण में जागरूकता दिवस री, तो ये कार्यक्रम ना सुनने बाद में अपना जागरूक रहना है, और ज्यादा से ज्यादा ये मतलब प्रचार प्रसार भी करना है। तो समय की सीमा देगा मैं आपको किसान भाई ना करना, वर्षा करना, राम राम।

अभी ग्रामीण भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ग्राम जगत। ये आकाशवाणी जैसलमेर है, FM बैंड 101.8 MHz पर। आइए श्रोताओं, सुनते हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज के शास्त्रीय संगीत में हम आपको सुनवा रहे हैं ख्याल रागेश्री, विदुषी किशोरी अमोनकर की प्रस्तुति।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी जैसलमेर है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। आइए श्रोताओं, सुनते हैं फिल्म संगीत।

दुनिया चल आहा, कहीं होंठ गुलाबी ओहो, कहीं चाल शराबी आहा, कहीं आँख में जादू ओहो, कहीं जिस्म की खुशबू आहा, कहीं नर्म निगाहें।

वो लड़की जो सबसे अलग है, वो लड़की जो सबसे अलग है, वो लड़की जो सबसे अलग है।

जो सबसे अलग है, वो लड़की जो सबसे अलग है, वो लड़की जो सबसे अलग है, वो लड़की जो सबसे अलग है।

वो लड़की जो सबसे अलग है, वो लड़की जो सबसे अलग है, वो लड़की जो सबसे अलग है।

उदित नारायण और अलका याग्निक की गाय फिल्म हम आपके दिल में रहते हैं कि इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी जैसलमेर है, FM बैंड 101.8 MHz पर। आइए श्रोताओं, सुनते हैं सुगम संगीत।

0: भटकते देखा है हमको।
1: अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत, ये आकाशवाणी जैसलमेर है, FM बैंड 101.8 MHz पर। श्रोताओं, अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस क्रॉस्टर से ओस्लो में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ, ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हैराल्ड पांचवे ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिनिधिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की। पश्चिम बंगाल सरकार ने भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोग गठित किए। और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है। आज ओस्लो में प्रधानमंत्री योनस क्रॉस्टर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जलवायु लचीलापन, समुद्री अर्थव्यवस्था लेकर हरित शिपिंग तक के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देगी। उन्होंने आशा व्यक्त की भारत की क्षमता, गति और प्रतिभा का उपयोग करते हुए नॉर्वे के प्रौद्योगिकी और पूंजी के सहयोग से भारतीय कंपनियां वैश्विक समाधान विकसित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
3: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूँ तो मैं इस सॉलिडरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
2: हाल ही में लागू व्यापार और आर्थिक साझेदारी से परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आज ठोस कदम उठाए गए। विशेष रूप से उच्च तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परीक्षा

0: रखना चाहिए ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके।
1: रिसर्च एजुकेशन और इनोवेशन भी हमारे संबंधों के मजबूत पिलर बने हैं। आज हमने सस्टेनेबिलिटी, ओशन एनर्जी, जियोलॉजी और हेल्थ जैसे क्षेत्रों में रिसर्च कोऑपरेशन बढ़ाने पर सहमति बनाई। इंजीनियरिंग, एआई, साइबर और डिजिटल जैसे सेक्टर में हम अपनी यूनिवर्सिटी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को जोड़कर अपने पार्टनरशिप को फ्यूचर रेडी बनाएंगे।
0: द्विपक्षीय बैठक में उच्च तकनीक, स्वास्थ्य समाधान, डिजिटल स्वास्थ्य, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के क्षेत्रों में कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। एक त्रिकोणीय सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए वैश्विक दक्षिण के देशों को मानव विकास समाधान प्रदान करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में संघर्षों से घिरे विश्व में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने नियम आधारित विश्व व्यवस्था में अपना साझा विश्वास और संवाद तथा कूटनीति के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया।
1: भारत और नॉर्वे दोनों रूल्स बेस्ड ऑर्डर, डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। हम एकमत है कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता, यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया। हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास का समर्थन करते हैं। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म अनिवार्य है।
0: प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के महामहिम राजा हेराल्ड पंचम द्वारा रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा, पीयूष गोयल, मनोहर लाल, किरेन रिजिजू सहित कई अन्य मंत्रियों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। गृह मंत्री ने कहा कि 32वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के विस्तार का प्रतीक है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि यह सम्मान मोदी के सशक्त नेतृत्व और विश्व भर में भारत के बढ़ते सम्मान को दर्शाता है। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि यह सम्मान वसुधैव कुटुंबकम के चिरस्थायी सिद्धांतों के माध्यम से वैश्विक सद्भाव को मजबूत करने के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि स्वीडन के उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं, जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति तक ले जाने में ये पहल महत्वपूर्ण रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा का अंतिम चरण है, जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। श्री मोदी के प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इससे भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भारत के सागरी क्षेत्र पर पहुंच प्रदान करता है। अपनी श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, रेल साझेदारी, सेमी कंडक्टर पहुँच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रेल से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: शिक्षा स्कीम के टेलीडोन है बंदूक कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीडोन के टॉपिंग नंबर 1454 और वेबसाइट www.teledash.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: भारत की तैयारी है प्रकाश, जनगणना में पहली तारीख घरावास,
2: घर घर
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन आधे पांच वर्ष में $2 ट्रिलियन

0: डॉलर के निर्यात का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि यही आत्मनिर्भर भारत की सच्ची पहचान होगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इस वर्ष निर्यात 863 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के उद्योगों, व्यापार समुदाय और लोगों में जो जोश है उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है और निर्यात भी बढ़ रहा है।
1: भारत का बना हुआ सामान, भारत से दी गई सेवाएं और अधिक तेजी से आगे बढ़े। हम संतुष्ट ना हो कि हम विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, कभी संतुष्ट ना, और आगे बढ़ा छलांग लेने की सोच और क्या कर सकते हैं उसके लिए पूरे समय हमें सोचते रहना पड़ेगा, काम करते रहना पड़ेगा, नई चीजों को आगे लेके जाना पड़ेगा।
0: भारत में परमाणु क्षेत्र में निजी निवेश और उद्योग सहयोग के उभरते अवसरों के बारे में उच्च स्तरीय अमेरिकी उद्योग प्रतिनिधि मंडल ने आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से चर्चा की। प्रतिनिधि मंडल के इस दौरे में अमेरिकी परमाणु उद्योग के वरिष्ठ प्रतिनिधि, व्यावसायिक हितधारक और नागरिक परमाणु ऊर्जा तथा उन्नत प्रौद्योगिकी में भारत अमेरिका सहयोग से जुड़े अधिकारी शामिल थे। इस अवसर पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच आज विज्ञान, प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और उभरते क्षेत्रों में मजबूत और भविष्योन्मुखी साझेदारी है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विकसित भारत 2047 की परिकल्पना के अंतर्गत भारत के दीर्घकालिक स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत का लक्ष्य 2047 तक अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को वर्तमान 8.8 गीगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट करना है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश में तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है। कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई 70% पर अभी बनी हुई है। मार्च के महीने से लेकर अभी तक लगभग 7,37,000 एलएनजी कनेक्शन को वेरीफाई किया गया है। 2,76,000 कनेक्शन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा चुका है और 7,76,000 से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने पीएनजी कनेक्शन के लिए अपने आप को रजिस्टर कराया है। इस बीच सरकार ने यूट्यूब के उन वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत में केवल 9 दिन का तेल भंडार बचा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने दावे को भ्रामक बताते हुए कहा कि देश में लगभग 60 दिन के कच्चे तेल का भंडार है और शोधन क्षमता भी पर्याप्त है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आज इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विश्वजीत बसु करेंगे। पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान महिलाओं पर अत्याचारों पर गठित आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश समाप्ति चटर्जी करेंगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 24 घंटों में सीबीआई ने 5 स्थानों पर तलाश अभियान में कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: एक रिपोर्ट।
1: यह परामर्श आम लोगों, कामगारों और बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों तथा खेल आयोजनों में शामिल लोगों के लिए जारी किया गया है, ताकि वे गर्मी और लू से होने वाली बीमारियों से अपना बचाव कर सके। इसमें कहा गया है कि शिशु, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग, बाहर काम करने वाले लोग और दिल की बीमारी या उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों से ग्रसित लोग लू के दौरान सबसे ज्यादा जोखिम में रहते हैं, इसलिए इनकी विशेष देखभाल और निगरानी जरूरी है। परामर्श में कार्यस्थलों, सार्वजनिक कार्यक्रमों और बाहरी गतिविधियों के लिए खास सावधानियां बताई गई हैं। छायादार आराम स्थल की व्यवस्था, समय समय पर पानी पीने के लिए ब्रेक और लोगों के लक्षणों के बारे में जागरूकता फैलाना शामिल है। रिशु जायसवाल के साथ अक्षय प्रज्ञान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई सुपर किंग्स ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गार स्टर से ओस्लो में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक लगाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पेंशन में सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिनिधिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की। और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंत समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, this is Akashvani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds talks with his Norwegian counterpart Jonas Gahr Støre in Oslo. Agreed to elevate bilateral ties in green strategic partnership focusing on clean energy and blue economy. Prime Minister Modi awarded Grand Cross of the Royal Norwegian Order of Merit by King Harald V. Government targets $1 trillion exports this year. Union Minister Jitendra Singh holds talks with US industry delegation on nuclear energy and private

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

शफ़ाकत अमानत अली के स्वर में अभी आप सुन रहे थे फिल्म डोर का ये गीत। इस गीत के साथ ही श्रोताओं, फिल्म संगीत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी जैसलमेर है, FM बैंड 101.8 MHz पर। आइए श्रोताओं, सुनते हैं राजस्थानी लोक संगीत।

सीमा मिश्रा के गाए इस लोकगीत के साथ ही श्रोताओं राजस्थानी लोक संगीत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी जैसलमेर है, FM बैंड 101.8 MHz पर। आइए श्रोताओं सुनते हैं नाटक। आज हम आपको सुनवा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद का कफन नाटक।

मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन दौड़ते हो।

0: हुआ जाकर देख तो क्या दशा है उसकी। चुड़ैल का प्रसाद होगा और क्या, यहाँ तो झाड़ भूख के लिए भी ओझा एक रुपया मांगता है।
1: कहाँ से आए एक रुपया? पप्पू मर जाए तो आराम से सोए।
0: अरे आराम भी यू कहाँ मिलने का बिटवा। करो बालू था, तू एक बार देख तो आ बिटवा। अनु मैं देख लूंगा, आखिर बुधिया तेरी बीवी है। बहुत पूरी तरह से तड़प रही है बेचारी। अरे बाबू जा बेटा जा, एक बार देख तो आ।
1: नहीं बापू, मुझे वहां जाते डर लगता है बापू। फिर बापू भूख भी तो लगी है मुझे।
0: अरे डर किस बात का, मैं तो यहाँ हूं ही।
1: इसी बात का तो डर है, लौटने तक एक भी आलू बचेगा या नहीं मेरे लिए।
0: अरे क्या सोच रहा है?
1: तो तुम ही जाकर देखो ना बापू।
0: मैं मुझसे ल जाएगी नहीं? अरे जिसका कभी मुंह नहीं देखा आज उसका उघड़ा हुआ बदन देखो।
1: बापू तुम्हें,
0: अरे उसे तन की सुध भी तो नहीं होगी, मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव बिना पटक सकेगी ना। तू ही जा।
1: मैं सोचता हूँ बापू, बापू कोई बाल बच्चा हो गए तो क्या होगा? सौंठ हुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है घर में।
0: अरे सब कुछ आ जाएगा, भगवान दे तो जो लोग अभी तक पैसा नहीं दे रहे वो कल ही सुबह बुलाकर रुपया देंगे। अरे मेरे 9 लड़के हुए, घर में कभी कुछ नहीं था, मगर भगवान ने किसी तरह बेड़ा पार ही लगाया। तू जाकर देख तो आ बिटुआ एक बार।
1: नहीं नहीं बापू, मुझे तो डर लगता है बापू।
0: अरे मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं था।
2: मां,

0: चमारों का कुनबा भी एक ही है, सारे गांव में थू थू हो रही है।
1: इनको किस दिन परवा रही है गांव की?
2: अरे ये घिसू, एक दिन काम करेगा तो 3 दिन आराम।
0: माधव भी तो बेटा उसी का है, आधा घंटे काम करता है तो घंटे भर चिलम पीता है।
3: भाई इसीलिए तो बाप बेटों को कोई काम पर मजबूरी में ही लगाता है। सब जानते हैं, दोनों मिलकर एक आदमी का काम भी पूरा नहीं करते।
0: घर में मुट्ठी भी अनाज हो तो उनके लिए काम करने की कसम है।
1: 2-3 दिन फाका मस्ती के बाद घीसू लकड़ियां तोड़ लाता है और माधो जाकर के बाजार में बेच आता है उनको।
2: अरे भाई जब तक उसके पास पैसे रहते हैं दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते हैं।
3: और फिर फाके की नौबत आई कि लकड़ियां तोड़ते या मजदूरी तलाशते नजर आते हैं।
1: मैं तो कहता हूँ कि मेहनती आदमी के लिए काम 50। किसानों का गांव है, काम की कोई कमी है क्या यहाँ?
3: अरे इन दोनों को तो साधु होना था, संतोष और धैर्य के लिए इनको नियम संयम की जरूरत नहीं पड़ती, और आलस तो इनके शरीर की प्रकृति में है।
0: माधव की शादी पिछले साल हुई है, तभी से बुधिया खानदान को संभालने की कोशिश कर रही है।
2: अरे बहन, वही पिसाई करके या घास छील के इन दोनों का दो जग भरती है।
3: मगर जब से वो आई है दोनों और भी आलसी हो गए हैं।
0: अरे बुधिया कमा कर पाल रही है मगर अब उसका ध्यान कौन रखेगा?
2: अरे क्यों, क्या हुआ भाई?
0: अरे

0: बड़े दिनों से है, आजकल कराह की पीड़ा से मर रही है और ये दोनों दुष्ट उसके मरने का इंतजार कर रहे हैं।
1: हाँ, सोचते होंगे मर जाए तो आराम से सोए।

0: आलू बहुत गर्म है, भूख बहुत लगी है ना, कल से पेट में कुछ गया ही नहीं है। आलू ठंडा करके खाने का धीरज कहाँ से लाए हैं?
1: सच, इतना सबर नहीं कि ठंडा हो जाने दे। अरे सीके आलू ऊपर से तो ज्यादा गर्म नहीं लगते,
0: मगर दांतों के तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा, जुबान, हलक, तालू, सब को जला देता है।
1: अरे दांत गड़ाने से ज्यादा खैरियत इसी में है बिटुआ, कि सीधा पेट में उतार ले।
0: ये ठीक है बापू, और पेट में अपने आप ठंडा होगा और पेट की आग भी ठंडी होगी।
1: अरे धीरे धीरे आंखों से आंसू निकलने लगे हैं तेरे।
0: तृप्ति मिल रही है बापू?
1: अरे तृप्ति तो जिंदगी में एक ही बार मिली बिटवा, 20 साल पहले।
0: फिर वही बापू, ठाकुर की बारात का भोज याद करने लगे?
1: याद करने लायक बात है माधव, आज तक याद ताजा है।
0: कितनी बार कह चुके हो।
1: अरे वो भोज नहीं भूलता बिटुआ, तब से फिर उस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको भरपेट पूरियां खिलाई, सबको, छोटे बड़े सब ने पूरियां खाई, और बिटुआ वो भी असली घी की। चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक एक रसेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई। बिटुआ
0: बड़ा मजा आया होगा बापू, है ना?
1: अरे अब क्या बताऊं बिटुआ, उस भोज में क्या स्वाद मिला, कोई रोक टोक नहीं थी, जो चीज मांगो और जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी से पानी नहीं पिया गया।
0: अच्छा बापू, जोरदार खातिर हुई होगी ना?
1: परोसने वाले पत्तल में गरम गरम गोल कचौरियां डाल देते थे।
0: अच्छा,
1: मना करते, अरे भाई कि नहीं चाहिए नहीं चाहिए, पत्तल पर हाथ रोके हुए मगर ना, वो है कि बस दिए जाते दिए जाते। और जब मुंह धो लिया बिटुआ तो पान इलायची भी मिली।
0: बापू, पान इलायची मिली?
1: लेकिन मुझे पान लेने की सुध कहा थी, खड़ा ना हुआ जाता था, चटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया। ऐसा दिल दरिया था वो ठाकुर।
0: भर पेट घी की पूरियां और मिठाई। बापू, अब हमें कोई ऐसा भोज नहीं खिलाता ना?
1: हे अब कोई क्या खिलाएगा बिटुआ, वो जमाना ही दूसरा था, अब तो सबको किफायत सूझती, शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रिया कर्म में मत खर्च करो। अरे पूछो इनसे, गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे? बटोरने में तो कमी नहीं, खर्च में किफायत सूझती।
0: बापू बापू, तुमने वो 20 पूरियां तो खाई होगी ना?
1: 20? अरे 20 से ज्यादा खाई दिया।
0: अच्छा बापू, मैं होता तो 50 खा जाता।
1: अरे 50 से कम मैंने भी नहीं खाई होगी बेटा, अच्छा खासा पट्टा था। तू तो मेरा आधा भी नहीं है।
0: आलू तो अब खत्म हो गए लगते हैं, अब तो पानी पीकर सो जाए।
1: अरे अरे बिटुआ ठीक से देख ले, हाथ संभाल के बिटुआ, अभी ये ये इस लकड़ी से कर, नहीं है? अच्छा, अरे धोती ओढ़ कर पांव पेट में डालकर सोने से पहले एक बार देख तो आ बुधिया को।
0: थोड़ी देर में नींद आ जाएगी बापू, अब तो सुबह संभालेंगे।

0: बापू बापू बुढ़िया ठंडी हो गई, मुंह पर मक्खियां बिन बिना रही है बापू, आंखें पथरा कर नजर ऊपर टंगी हुई है, सारी देह धूल से लिपटी है बापू। बापू मुझे लगता है बच्चा पेट में मर गया।
1: क्या?
0: हाँ
1: जरा देखो तो, मर गई बुधिया, पर तू यहाँ क्या खड़ा है? तेरी बीवी मरी है, दहाड़ मार कर रो, लोगों को पता तो चले, रो। चल अब धूलीदार के चलते हैं। अरे बर्बाद हो गया,
2: अरे बर्बाद हो गया,
1: कहीं का नहीं रहा।
2: मेरे पास तो कपल और लकड़ी के पैसे भी नहीं
3: है। अच्छा, बुधिया मर गई बेचारी।
4: अरे ठंडी रात भर दर्द से कराती रही, ऐसा ही बाप ऐसे उसके बेटे इतना दिन भर तड़पती रही,
3: आखिर मर ही गई बेचारी बुधिया। अरे मर कर भी गति कहाँ,
5: अब हुआ सो हुआ घिसू, बहू के क्रिया कर्म की तैयारी करो भैया।
1: क्या है मेरे पास? एक पैसा नहीं है घर में,
2: इस घर में और पैसा।
3: अरे चील के घोंसले में मांस।
6: तो अब क्या करोगे भैया?
1: जमींदार से फरियाद।
2: चल चल चल बापू चल।

0: सरकार बड़ी आफत आ गई
1: सरकार,
0: वहां भी हमारे भाई बाप है सरकार।
2: क्या है बे घिसुआ, रोता क्यों है? आजकल तो दिखाई नहीं देता, लगता है गांव में रहना नहीं चाहते।
0: सरकार तबाह हो गए, सरकार बर्बाद हो गए, ये माधव की घर वाली रात की गुजर गई सरकार। रात भर तड़पती रही सरकार, और हम दोनों रात भर उसके सिराने बैठे रहे सरकार। चुप हो जाओ बेटा,
1: दारू जो कुछ हो सका सब कुछ किया सरकार, सब कुछ किया
3: सरकार, मगर वो
1: मैं दगा देंगे सरकार, दगा देंगे।
0: अब कोई एक रोटी देने वाला भी नहीं रहा, वाले एक रोटी भी नहीं दे। आपका गुलाम हूँ सरकार, आपके सिवा कौन उसके मिट्टी पार लगाएगा वाली? पार लगाएगा।
2: तुम पर दया करना, कंबल पर रंग चढ़ाना है। जी में आता है कि धक्के मार कर बाहर करवा दूं, यूं तो बुलाने से भी नहीं आते। आज गर्ज पड़ी है तो आकर खुशामद कर रहा है, हराम खोर कहीं का बदमाश। ये लो 2 रुपए।
0: बड़ी बड़ी दया की सरकार, बड़ी दया।

0: ये 2 रुपए और ये 3 रुपए, 8 आने 15 और ये 16, 4 रुपए और 2, 4, 8 और 14 और ये 5 रुपए।
1: 5 रुपए हो गए बापू?
0: अरे जब जमींदार ने 2 रुपए दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार का साहस कैसे होता।
1: अनाज और लकड़ी भी दी है दयाल लोगों ने।
0: लकड़ी तो बहुत, अब कफन चाहिए। चलो चलो माधव, कोई हल्का सा कफन ले ले।
1: हाँ और क्या, लाश उड़ते उड़ते रात हो जाएगी, रात को कफन कौन देखता है बापू।
0: अरे कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढकने को चीथड़ा भी ना मिले उसे मरने पर नया कफन चाहिए।
1: हाँ बापू, और फिर कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है।
0: और क्या रखा रहता है माधव, ये ही 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते उसका।
1: हाँ दवा दारू।
0: चलो चलो चलो, ना कफन के लिए पहले कपड़ा दे।
1: हाँ चलो चलो बापू चलो। कहाँ चाहिए जो भाई तुम्हें? कफन के लिए कपड़ा कैसा चलेगा, रेशमी सूती कैसा कपड़ा?
0: नहीं नहीं कोई सस्ता।
1: हाँ तो फिर ये देख लो भाई, तुम 2 रुपए गच्छे तो कम का है मतलब।
0: तो 2 रुपए नहीं नहीं इससे भी सस्ता।
1: इससे सस्ता तो भाई यो कपड़ो देखो, अच्छा दाम तुम ही लगा दो देखो।
0: दाम माधव।
1: हाँ बापू।
0: आठाने कस बोल दो।
1: आठाने आठाने आठाने कस आठाने गज। क्या बात करो सो भाई, कभी कपड़ा खरीदा है? चलो निकलो बाहर दुकान से।
0: चलो चलो
1: आठाने गज आगे कपड़ा खरीदना।
0: माधव आप हो गई, कपड़े बहुत महंगे।
1: 5 रुपए में से क्या बचेगा बापू अगर कफन खरीदा तो?
0: ये इधर किधर निकल आया पर? शराब का ठेका, शराब के ठेके से उठने वाली बहकी बहकी आवाजें।
1: बापू हमसे ज्यादा पैरों को आदत हो गई है लगता है।
0: तो चलो चलो चलो साजी, जरा एक बोतल हमें भी देना।

0: कफन लगाने से क्या मिलता है बिटुआ बता। आखिर जल ही तो जाता, कुछ बहू के साथ तो ना जाता।
1: दुनिया का दस्तूर है बापू, लोग ब्राह्मणों को हजारों रुपए क्यों देते हैं? कौन देखता है बाबू परलोक में मिलता भी है कि नहीं।
0: अरे माधव, आधी बोतल खत्म हो गई है, अब खाना भी साथ ही साथ कर लिया। जा सामने की दुकान से दो सेब पूरी आ लिया और साथ में वो चटनी अचार और सब्जी वगैरह सब लेके आ जल्दी।
1: हाँ बापू अभी गया अभी लाया, भूख भी तगड़ी लगी है बापू, ये गया ये लाया।
0: बात ठगनी हम जानी।
1: बाबू ये लो बाबू, दो पत्तल पूरे 1.5 रुपया लगा।
0: अच्छा
1: बाबू बस कुछ पैसे ही बचे हैं।
0: अच्छा तू ये ले पहले।
1: अरे
0: फिक्र मत कर बिटुआ। माया मठगनी हम जानी। अरे बिटुआ हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है? हो रही है ना?
1: हाँ बाबू हो रही है।
0: अरे तो क्या उससे पुण्य ना होगा?
1: बाबू जरूर होगा, जरूर होगा बाबू।
0: अरे भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं प्रभु, उसे बैकुंठ ले जाना।
1: क्यों बापू, हम लोग भी तो एक न एक दिन वहां जाएंगे।
0: अरे छोड़ परलोक की, इस लोक का तो आनंद ले।
1: जो वहां हम लोग से वो भैया पूछिए कि तुमने हमें कफन क्यों नहीं दिया बाबू, बाबू तो क्या कहेंगे बाबू?
0: अरे कहेंगे तुम्हारा सिर
1: बाबू, मगर वो पूछेगी तो जरूर ना।
0: तू कैसे जानता है कि उसे कफन नहीं मिलेगा? तू मुझे ऐसा गधा समझता है? अरे 60 साल क्या दुनिया में खास खोदता रहो, उसको कफन मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा।
1: कौन देगा बाबू, रुपए तो तुमने चट कर दिए, वो तो मुझसे पूछेगी बाबू, मुझसे पूछेगी। उसकी मांग में तो सिंदूर मैंने भरा था बाबू।
0: माधव मैं कहता हूं उसे कफन मिले, तू मानता क्यों नहीं है?
1: कौन देगा बाबू, बताते क्यों नहीं?
0: अरे वही लोग देंगे जिन्होंने की अब की दिया। हाँ आपकी रुपए हमारे हाथ।

0: ahí ya, vas.
1: बच्चे हुई पूरियां उस भिखारी को दे दू। बेचारा कितनी देर से घूर रहा है। बाबू एक बार वो देने का आनंद भी लिया जाए जिंदगी में।
2: हाँ हाँ दे दे दे दे। ए, सुन सुन इधर आ। अबे इधर आ।
1: इधर
2: ये ले जा,
1: ले
2: सब ले जा और खूब खा और आशीर्वाद दे। अब जिसकी कवाई है वो तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंचेगा। रोए रोए से आशीर्वाद दे, बड़े गाढ़े कवाई के पैसे हैं। जा
1: बाबू बाबू वो बैकुंठ में जाएगी। बाबू बाबू वो बैकुंठ में रानी बनेगी बाबू।
2: हाँ बेटा, हाँ बैकुंठ में जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को कभी दबाया नहीं, और मरते मरते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा भी पूरी कर गई। वो बैकुंठ नहीं जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे जो जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं, मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। हो जाएगी बैकुंठ, वो जरूर जाएगी बेटा।
1: मगर बापू बापू बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा है बापू। कितना दुख झेल कर मरी है बापू, कितना दुख झेल कर।
2: अरे अरे बिटुआ, अरे रोता क्यों है बेटा?
1: बापू
2: खुश हो पागल, खुश हो कि वो माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। अरे बड़ी भाग्यवान थी अपनी बहू बेटा, जो जो इतनी जल्दी मोह माया के बंधन तोड़ दिए। चुप चुप हो जा बेटा, ना ना रोते नहीं, आ मेरे पास आ जा माता। ना बेटा ना ना,
1: सच सच बापू।
2: हाँ बेटा अब चुप हो जा, ठीक है? चल गलत

0: नमस्कार दोस्तों, आज
1: अभी आप सुन रहे थे नाटक कफन। ये आकाशवाणी जैसलमेर है, FM बैंड 101.8 MHz पर। आइए श्रोताओं, सुनते हैं फिल्म संगीत।

0: been on.
1: कविता कृष्णमूर्ति और उदित नारायण के गाए फिल्म देवदास के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी जैसलमेर है, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे के पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है। आज ऑस्ट्रिया में प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जलवायु लचीलापन, समुद्री अर्थव्यवस्था से लेकर शिपिंग प्रति क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
3: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण मैं यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूँ तो मैं इस सॉलिडरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
2: हाल ही में लागू व्यापार और आर्थिक साझेदारी से परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आज ठोस कदम उठाए गए, विशेष रूप से उच्च तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके। द्विपक्षीय बैठक में एक त्रिकोणीय सहयोग समझौते सहित कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से भारत के डिजिटल सहयोग अवसंरचना का उपयोग करते हुए वैश्विक दक्षिण के देशों को मानव विकास समाधान प्रदान करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में संघर्षों से घिरे विश्व में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हैराल्ड पांचवें ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

वर्षों में 2 ट्रिलियन डॉलर के निर्यात का लक्ष्य रखा है। श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इस वर्ष निर्यात 863 अरब डॉलर तक पहुंच गया। ये पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 5% अधिक है। उन्होंने कहा कि वस्तुओं और सेवाओं दोनों के निर्यात में वृद्धि हुई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के उद्योगों, व्यापार समुदाय और लोगों में जो जोश है उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। सरकार ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए रसायन और उर्वरक मंत्रालय की संयुक्त सचिव अपर्णा एस शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन के लिए उर्वरक की उपलब्धता सभी राज्यों में 50% से अधिक है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से जुड़े आरोपों की जांच कर रही जांच समिति ने आज अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को संसद भवन में सौंप दी। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1967 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने पिछले वर्ष 12 अगस्त को इस समिति का गठन किया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के साथ अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंद्र अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आज इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विश्वजीत बसु करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 181 रनों का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक सनराइजर्स हैदराबाद ने 15वें ओवर में 2 विकेट पर 131 रन बना लिए थे। चेन्नई की ओर से कार्तिक शर्मा ने 44 रनों की पारी खेली। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।